ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई 2026 सुबह के 5:53 और 49 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान

0: दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत

0: में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
3: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय FR मीडिया एकेडमी।
4: जी हाँ, FM रेनबो पर फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जो इंसान मुश्किल वक्त में भी धीरज के साथ अपने मन और जुबां पर काबू रखता है उसका प्रतिफल उसको जरूर मिलता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम मनुष्य कल की चिंता करके स्वयं अपने लिए कष्ट उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है।

जी हाँ, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जैसे आग में तपकर सोने में निखार आता है, वैसे ही मुश्किलें इंसान को मजबूत और आत्मविश्वास से भर देती हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, ईश्वर का दामन थामे रहने से चेहरे पर रौनक बनी रहती है और मुस्कुराहट हृदय को प्रफुल्लित करती रहती है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242।

तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप रेणु भट्ट के साथ। सुप्रभात में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक और नए दिन की शुरुआत और ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने, ढेर सारे अवसर हमारे सामने। किस चीज को कितना हमें लेना है ये भी हमारे हाथ में, और किस चीज को मना करना है, इग्नोर करना है, छोड़ देना है ये भी हमारे हाथ में। तो जो चीज़ बहुत भारी हो गई हो ना, दिल पे बोझ बहुत ज्यादा हो गया हो या दिमाग पर बोझ ज्यादा हो गया हो, उन चीजों को छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा है। बातें करेंगे लेकिन इस गीत के बाद।

पीछे पीछे चलती है मेहनत, सफलता, कामयाबी। जब हम मेहनत करते हैं अच्छे से, तो मेहनत तो आपके साथ साथ चलती है और उसके पीछे सफलता चलती है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमेशा साथ रहता है। अगर इसमें से एक भी चीज़ डामाडोल होती ना, तो कॉम्बिनेशन साथ में नहीं रहता। अगर कठिन समय आने पर हम अपने प्रयास और मेहनत को छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, अब हमें नहीं मिलने वाली है सफलता, या एक दो अटेम्प्ट के बाद नहीं मिल रही है, तो लेट इट बी, अब छोड़ देते हैं, ऐसा जो सोचते हैं, उनके पास तो सफलता बिल्कुल नहीं आती है। तो आपको अगर कोई अपनी एम है, आपका कोई लक्ष्य है, कोई सपना आपने अपनी आँखों में पाला हुआ है और चाहते हैं कि उसे आप पूरा होते हुए देखें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी तरफ आप अपने कदम बढ़ाते रहें। प्रयास हमेशा होते रहने चाहिए, चाहे छोटे ही हों। छोटे प्रयास भी अपनी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भट्ट सुप्रभात में। कोई बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं तो आप बिंदास हमें मेल कर सकते हैं। आपको मेल करना है feedback@rainbow.com पर। फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से आपसे और ऑनलाइन आप हमसे जुड़े हुए, हम चाहते हैं आप यूं ही हमसे जुड़े रहें 24/7 साल के 365 दिन, क्योंकि आपकी हमारी दोस्ती बहुत खास है, बहुत अनमोल है।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा

तो सिर्फ मेहनत तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ और भी चीज़ ज़रूरी होती है, वो ये है कि अपने आप को तराशते रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सुन रहे सुप्रभात। तो हुआ यूं कि एक बार बादलों ने आपस में शर्त लगाई और ऐलान किया कि अगले 10 सालों तक वो धरती पर पानी नहीं बरसाएंगे। अब ये बात सुनकर एक गाँव के सभी किसान बहुत ज़्यादा निराश हो गए और उन्होंने खेती का काम बंद करके अपने हल और बैल जो है उन्होंने रख दिए और हल को भी खूंटी पे टांग दिया। सिर्फ एक ही ऐसा किसान था पूरे गांव में जो रोज़ अपने नियम के अनुसार उठता था और खेतों को हल जोतने जाता था। उसके साथ ही जो किसान थे वो सभी उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि जब बादलों ने पानी ना बरसाने की कसम खा ली है तो तुम इतनी धूप में इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हो। ऐसे में वो किसान मुस्कुरा कर जवाब देता है कि मैं जानता हूं कि अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि 10 साल बाद मैं खेत जोतना या हल चलाना भूल ना जाऊं। मेरी कला और अभ्यास जिंदा रहनी चाहिए हमेशा। अब ये बात बादलों तक भी पहुंची। बादलों ने सोचा कि अगर हम 10 साल तक नहीं बरसेंगे तो कहीं हम बरसना ना भूल जाएं। उस किसान की बात की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपनी कला और मेहनत को याद करते हुए बादल जो है घबरा गए और तुरंत जोरदार बारिश वो कर देते हैं। और ऐसे में उस मेहनती किसान के खेत जो है वो लहला उठते हैं, बाकी जो किसान होते हैं वो बस ऐसे ही एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। तो अपनी मेहनत पर हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने मेहनत पर गर्व भी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, पर उसे कंटिन्यू हमें कैरी भी करना चाहिए। कहते हैं ना कि कोई भी आपकी स्किल होती है, कोई मेहनत होती है, वो तपस्या होती है, उसे आपको रोज़ करना होता है। कोई भी सिंगर अगर आप ले लेंगे तो वो रोज़ अपने गले के लिए रियाज करता है। तो अपनी मेहनत को कोई भी व्यक्ति भूल ना जाए, इसीलिए उसे तराशते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कठिन समय में जितने भी प्रयास और मेहनत की जाती है वो याद रखें कि कभी कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं, और वो आपको समय पड़ने पर अपना रिजल्ट जरूर देते हैं।

चलिए अब आपको बता देते हैं वो सभी प्रोग्राम्स जो आप दिन भर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर भावना नायर के साथ। 8:00 गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में आपसे मिलने आऊंगी मैं। 9:00 के समय है दिल के तराने गाने नए पुराने का भावना ही रहेंगे आपके साथ। तो मानसी रंजन आपसे मिलने आएंगी मैचलेस म्यूजिक आर लेकर 10:05 पर। 11:05 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स यानी कि बॉलीवुड की सभी ताजा तरीन हलचल संतोष राव के साथ। और प्लेट कूल में मानसी रहेंगे आपके साथ 12:05 पर। मेरा वाला सॉन्ग लेकर आएंगे संतोष राव 1:05 पर। कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज उस प्रोग्राम में जरूर शेयर करें। 2:00 के समय है आशियाना का, शालिनी सिंह रहेंगे आपके साथ। और आज का हमारा विषय है जनगणना 2027। हमारे गेस्ट रहने वाले हैं चैतन्य प्रसाद, आप आईएएस हैं, डीएम एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट से। मिस रंजना देसवाल, आईएएस डीएम एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। डॉक्टर एजीबी, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन दिल्ली। तो ये हमारे एक्सपर्ट्स रहने वाले हैं। और 3:00 के समय है रेडियो डॉक्टर का, और आज हम बात करने वाले हैं हेड इंजरी कॉजेज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पे। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह न्यूरो सर्जन रहेंगे हमारे एक्सपर्ट। आप जरूर अपनी क्वेरीज इस प्रोग्राम में शेयर करें। 4:05 पर अल्फा जेन लेकर आएंगे शालिनी सिंह, और सुषमा शर्मा आपके साथ रहेंगी सिटी लाइट्स में 5:05 पर। और मुक्ति सैनी आपके साथ रहेंगी मैसेज मसाला मिक्स में 6:05 का समय है। आप अपनी बातें, अपनी चीजें जो भी शेयर करना चाहते हैं आप जरूर करें। और लिपिका दास आपके साथ रहेंगी वेस्टर्न म्यूजिक में 7:05 पर। 8:00 म्यूजिक मस्ती लेकर आएंगी मुक्ति सैनी, और विकास आपके साथ रहेंगे 9:00 आपकी याद आती रही। विकास ही आपके साथ रहेंगे रंगे महफिल में 11:05 पर। तो ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जो आप दिन भर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। हम चाहते हैं आप ये सभी प्रोग्राम सुने और अपनी सारी बातें, अपने फीडबैक्स हमसे जरूर शेयर करें।

ऑलराइट, अब मेरे जाने का समय हो चला है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि मैं ठीक एक घंटे बाद दोबारा आपसे मिलने आऊंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में, ढेर सारी बातें लेके, ढेर सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी मेरे जाने का समय है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें हमारे ढेर सारे प्रोग्राम्स। कुछ ही देर में आपके लिए समाचार होंगे, समाचारों के बाद आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर भावना के साथ।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: વાણી આકાશવાણી
1: રોજ સુબહ સવેરે 7 થી 9 કી મુલાકાત, થોડી ગપશપ, થોડી કામ કી બાત, રેનબો કી સોગાત, હર રોજ જુડીએ હમારે સાથ. ગુડ મોર્નિંગ ડેલી NCR, ઓલવેઝ વેર એવર યુ આર, 102.6 આપકે લીએ.
2: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR. फ्राइडे आ गया मेरे बॉस, वीकेंड का ट्रेलर शुरू हो चुका है, फुल मूवी अभी थोड़ी देर में मेरे दोस्त. मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन जहां सबसे अच्छी मॉर्निंग यही होती है, दिल से दिल तक बातें होती है. और आज की सुबह उफ गर्मी भी करंट देने वाली लग रही है. रोड्स ऑलरेडी अभी थोड़ी देर में बिजी हो जाएंगी और ऑफिस में बस समहाउ ना आज निकल जाए, बस आज, बस आज, बस आज वाली फीलिंग जो है ना वो वीकेंड को और पास लेकर आ जाती है. लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि अगले एक घंटे हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत सारे फ्राइडे की फुल वाइबिंग सॉन्ग्स, इन्फोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स अपडेट्स, दिल्ली की हैपनिंग खबरें और हीट वेव से बचने के बहुत ही स्मार्ट टिप्स. तो सुनते रहिए 102.6 FM. गर्मी आपको फ्राई जरूर कर रही होगी, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, मूड को हम करेंगे फ्राइडे फाइड, क्योंकि ये है फैंटास्टिक फ्राइडे. और जब फैंटास्टिक फ्राइडे होता है तो गाने भी कुछ ऐसे ही बजते हैं. डू यू नो मेरे दोस्त, बहुत प्यार करते हैं हम आपको.

तो अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कितना प्यार करते हैं, एंड आई नो यू नो हाउ मच वी लव यू. लेकिन ये जो गर्मी है ना, बड़ा सता रही है. ये गर्मी हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है और कह रही है कि देखती हूँ और बढ़ती हूँ, देखती हूँ आप कितना सहन कर सकते हो. एंड यही टॉलरेशन तो हमको दिखानी है. लेकिन ये जो सुबह सुबह आप धूप ने अटेंडेंस लगाती है ना, टेम्परेचर स्टेडली राइज हो रहा है और हीट वेव्स वाइब्स भी कंटिन्यू है. तो इस फ्राइडे में फ्राई करने वाली जो गर्मी है उसमें जो टेम्परेचर आपको बताऊं 42 डिग्री सेल्सियस अभी पहुंच चुका है. ये सुबह सुबह 7:10 का समय है और IMD ने कहा है अगले 5 दिन कुछ ऐसे ही गर्मी डबल अटैक करने वाली है. ये जो हीट वेव लू के बीच आपको अपना ख्याल रखना है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं. क्योंकि 5 दिन के बाद IMD ने कहा है कि हाँ, प्री मॉनसून गतिविधियां जो है वो शुरू हो गई है और झमाझम बारिश के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि कई स्टेट्स में बारिश हो सकती है लेकिन अगले 5 दिन के बाद. तो आपको अपना ध्यान किसे रखना है कि जब भी बाहर निकले कुछ ना कुछ अपने आप को कवर करके निकले. कॉटन के क्लोथ्स पहने, लाइट क्लोथ्स पहने, लूज क्लोथ्स पहने. अपने आप को हाइड्रेट रखना इस टाइम पर बहुत जरूरी है. और आजकल तो आप देखते हैं इंटरनेट पर बहुत सोशल मीडिया पर आपको हाइड्रेटेड ड्रिंक्स मिल जाती है और कुछ नहीं मिलता, तो पानी तो पीते ही रहिए, लगातार पानी पीते रहिए. और साथ ही अपने साथ कुछ ऐसा भी रखें जो आपको हाइड्रेट रखे ऐसे टाइम पर. अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है फिर वो ORS का घोल हो सकता है या कुछ भी आप ऐसी चीज रख सकते हैं, ग्लूकोज रख सकते हैं. और अननेसेसरी ना आफ्टरनून एडवेंचर्स को ना भी थोड़ा स्टॉप कर दीजिए हैं. क्योंकि मुझे पता है दिल्ली वालों, आप बाहर निकले बगैर रह नहीं सकते, लेकिन इस धूप में कैसे निकलेंगे, है ना. तो अपना ख्याल रखना तो आपको ही जरूरी है. और कौन रखेगा, आपका अपना ख्याल आप ही के हाथों में है. तो ये हीट वेव लू से बचने के लिए घड़े का पानी बहुत बढ़िया होता है. घड़े का पानी पीकर देखिए, ऐसे मीठा मीठा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, फ्रिज को भी आप भूल जाएंगे. और साइंटिफिकली भी अर्दन पॉट यानी कि घड़े का पानी अपने आप में कहा जाता है कि इस गर्मियों के लिए रामबाण है. तो ये बहुत सारी छोटी छोटी जो टिप्स दी है ना, उसको आप अपना सकते हैं और अपने जीवन में ला सकते हैं. और ये जो हीट वेव लू है कहीं आपके आसपास भी मंडराएगी नहीं. गाने सुनते रहिए 102.6 FM. गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR. मैं हूँ आपके साथ आपकी प्यारी भावना.

0: और जाए न दिन ये प्यार के, क्योंकि हमारा और आपका साथ बना है और ये साथ ना आकाशवाणी के द्वारा बना हुआ है, क्योंकि आकाशवाणी सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि भारत की धड़कनों का वो सफर है, वो यात्रा है जो पिछले 90 सालों से हर जेनरेशन को जोड़ता आया है, हर जेनरेशन को अपने आप में बांधता आया है। और यही कुछ आकाशवाणी की खास बात है कि आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, आपका प्यार लगातार हमें मिलता रहा है। विलेजेस से मेट्रो तक, न्यूज से म्यूजिक तक, इन्फॉर्मेशन से इमोशंस तक, आकाशवाणी ने हर दौर में देश की आवाज़ बनकर लोगों के दिलों तक अपनी पहचान बनाई है और इसी लेगेसी का हिस्सा है आपका अपना 102.6 FM रेनबो, दिल से दिल तक।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के

100 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात होगी सर्वभाषा कवि सम्मेलन के बारे में। 25 जनवरी 1956 को आकाशवाणी ने नेशनल सिंपोजियम ऑफ पोएट्स की शुरुआत की, जिसे सर्वभाषा कवि सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस गरिमामय पहल की कल्पना तत्कालीन महानिदेशक और प्रसिद्ध साहित्यकार जेसी माथुर ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की भाषाई विविधता को साहित्य के माध्यम से एक सूत्र में पिरोना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। इस मंच पर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, जिनका हिंदी अनुवाद भी प्रसारित किया जाता है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा आयोजन है जहां इतनी अधिक भाषाओं के कवि एक साथ जुड़ते हैं। इसका प्रसारण प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाता है। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक।

0: रेनबो 102.6 पर।
1: और गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो यानी कि बहुत सारा अगर हीट वेव आता है, लू आता है, तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें आती हैं जो बहुत सारा प्यार लेकर आती हैं। नाम सुनते ही कितनी यादें ताज़ा हो जाती है। गर्मी की छुट्टियाँ, वो सुबह देर तक सोना, मम्मी का बार बार उठाना और फिर सीधे नानी के घर या दादी के आंगन पहुँच जाना, है ना? कुछ ऐसा ही बचपन आपने मैंने बिताया है। किसी के लिए आम के पेड़ वाली छुट्टियाँ, तो किसी के लिए छत पर पानी डालकर ठंडी की गई चारपाई, कूलर की आवाज़, रूअफ़ज़ा के गिलास और कज़न्स के साथ ना वो एंडलेस बातें, याद है वो सब कुछ? यही तो कुछ गर्मियों की छुट्टियां होती थी। और आज जब गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है उसमें। नानी हाथ खोलकर, बाहें खोलकर खड़ी होती है, बच्चों को अपनी बाहों में लेकर पूछती है, बेटा क्या खाओगे, बेटिया क्या खाओगे और क्या चाहिए? और वो अनगिनत गिफ्ट, नानी का और खाना लाओ, और खाना लाओ वाला, और दादी की वो कहानियाँ, और वो बिना किसी टेंशन वाली ज़िंदगी। ओ नॉस्टैल्जिक, वेरी नॉस्टैल्जिक। सच कहें तो हमारी जनरेशन की सबसे ब्यूटीफुल लग्जरी शायद वही समर वेकेशंस है, वही गर्मियों की छुट्टियाँ हैं जो ये याद दिलाती थी कि नानी बहुत सारा प्यार करेगी, नानी बहुत कुछ खिलाएगी। और सच कहूँ ना, आज भले ही छुट्टियाँ ऑनलाइन क्लासेस और मोबाइल स्क्रीन्स के बीच निकल जाती हूँ, लेकिन उस दौर की सिंप्लिसिटी और उस दौर का जो वो सादगी थी, आज भी दिल को मुस्कुरा देती, आज भी वो प्यारी सी स्माइल ले आती है और आज भी वो बहुत ही मिठास वाले दिन याद आ जाते हैं। आज भी वो दिन सच्चे हो सकते हैं। आप जाइए, अपनों के पास जाइए, ये गर्मी की छुट्टियां तो अपनों के पास बुलाती हैं। ये गर्मी की छुट्टियां हीट वेव ज़रूर लेकर आती हैं, लेकिन जब वो ठंडक ठंडक पड़ती है ना नानी के घर या फिर दादी के आंगन में, ऐसी ठंडक कहीं और मिल ही नहीं सकती। और शायद इसलिए गर्मी चाहे कितनी भी पड़े ना, नानी का घर हमेशा सबसे ज़्यादा कूलेस्ट प्लेस होती है। Am I right?

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर, कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
7: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
8: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
7: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
9: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
7: ठीक है,
9: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
8: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
7: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
10: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
7: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
8: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
7: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
8: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
7: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
8: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
7: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
8: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया

0: में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो मेरे साथ यानी कि भावना के साथ। आज का दिन 22 मई है, फ्राइडे का दिन है और ये तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है बल्कि हिम्मत, जज्बे और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का भी दिन है। 1984 यानी 1984 में आज ही के दिन बचेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया था और वो बनी भारत की पहली और दुनिया की पांचवीं महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट समिट को कॉन्कर किया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सफर ना पहाड़ चढ़ने का नहीं था, ये उन सोचों के पीछे छोड़ने का सफर था जो कहती थी कि ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, लड़कियां क्या करेंगी। लेकिन बचेंद्री पाल ने वो करके दिखाया जो लड़के भी नहीं आसानी से कर पाते। और उस दौर ना आज जैसी टेक्नोलॉजी थी, ना एडवांस्ड गियर थे, ना सोशल मीडिया प्लॉस था, बस था तो वो एक सपना और उसे पूरा करने का वो जुनून और जज्बा। कहते हैं कि एवरेस्ट पर ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, हर कदम भारी पड़ने लगता है, हवा इतनी तेज कि इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करने लगे। लेकिन सोचिए, उसी जगह एक भारतीय बेटी ने अपने हौसले को सबसे ऊंचा कर ये साबित कर दिया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। और शायद यही वजह है कि बचेंद्री पाल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हर उस इंसान की इंस्पिरेशन है जो लाइफ में किसी भी एवरेस्ट को देख कर ना डर जाते हैं। आज की जेनरेशन के लिए भी उनकी कहानी उतनी ही रेलेवेंट है क्योंकि आज हमारे माउंटेन्स अलग हैं। किसी के लिए करियर प्रेशर है, किसी के लिए कॉम्पिटिशन है, किसी के लिए फेलियर्स तो किसी के लिए सेल्फ डाउट। लेकिन लेसन वही है मेरे दोस्त, माउंटेन्स हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार ना वो अंदर होते हैं, वो पहाड़। और जब हौसला स्ट्रांग हो तो चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, कितने भी कठिन हों, एक दिन आप अपनी जिंदगी को एवरेस्ट पर जरूर खड़े होते देख सकते हैं। तो इस फ्राइडे मॉर्निंग अपने सपनों को बिल्कुल भी छोटा मत समझिए क्योंकि हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जो मुश्किलों को देखकर रुकते नहीं, आगे बढ़ते चले जाते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
7: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
6: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
7: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूं आपके साथ भावना। आप सुन रहे 102.6 FM, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, जहां सबसे अच्छी और ब्यूटीफुल मॉर्निंग यही होती है। और आज दुनिया भर में दो बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेंसेस मनाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और वर्ल्ड प्रीक्लैम्पसिया डे। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी यानी वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि पेड़ पौधों, नदियों, जंगलों, पक्षियों और हर छोटे बड़े जीव की भी है। आज के समय जब मौसम ना लगातार बदल रहा है, लगातार करवट बदल रहा है और कभी धूप, कभी छांव, कभी बाढ़ की स्थिति, कभी सूखे की स्थिति, कभी अत्यंत बारिश और बेमौसमी बारिश, ऐसी हम लगातार कई घटनाएं देख रहे हैं और गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड्स बना रही है, तब बायोडायवर्सिटी को बचाना सिर्फ एक अवेयरनेस नहीं है, एक जागरूकता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है ये आपकी हमारी। और ऑनेस्टली ना, दिल्ली वालों को तो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि इस मौसम में सड़क पर चलते चलते अगर कहीं पेड़ की छांव मिल जाए ना, तो सच में ऐसा लगता है VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। कोशिश कीजिएगा, एक पौधा ज़रूर लगा लीजिएगा, पानी बचाइए और नेचर को थोड़ा सा प्यार वापस दे दीजिए, बिकॉज नेचर डिजर्व्स इट। और साथ ही आज वर्ल्ड प्री क्लैम्सिया डे है, स्वास्थ्य से जुड़ा ये डे है, यानी वो दिन जब प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक सीरियस हेल्थ कंडीशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर और कुछ सिम्टम्स को लोग नॉर्मल समझकर ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर मेडिकल केयर बहुत जरूरी होती है ऐसे टाइम पर। रेगुलर प्रीनेटल चेकअप्स, हेल्दी लाइफस्टाइल और अवेयरनेस माँ और न्यूबॉर्न बेबी दोनों की सेफ्टी के लिए बेहद अहम है। और आज के दिन एक छोटा सा रिमाइंडर भी कि हेल्थ को ना बिल्कुल पोस्टपोन मत कीजिएगा, क्योंकि हेल्दी फैमिली की शुरुआत एक हेल्दी मदर के साथ ही होती है। सुनते जाइए 102.6 FM, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, यहीं बजते हैं आपके फेवरेट सॉन्ग्स।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और आइए अब आपको कुछ खेल की अपडेट भी दे देते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए महत्वपूर्ण मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। साथ ही गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन ने 84 और शुभमन गिल ने 64 की पारियों के दम पर 229 रन बनाए थे। और आपको बता दें, फुटबॉल जगत से ईस्ट बंगाल ने मोहन बगान को हराकर पहली बार इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL का खिताब अपने नाम कर लिया और अपना 22 साल का सूखा जो पड़ा हुआ था ना, जो हार का सामना करना पड़ता, वो अब खत्म हो गया है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो पेरिस में होने वाले फ्रेंच ओपन के ड्रॉ में जानिक सिनर और नोवाक जोकोविच को अलग अलग हाफ में रखा गया है। साथ ही एथलेटिक्स में सचिन यादव और अनिमेश कुजूर जैसे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन हासिल करने की दौड़ में इस समय जुटे हुए हैं। तो ये कुछ खेल की ऐसी खबरें हैं जो आपको रूबरू हम हर रोज कराते हैं ताकि आप खेल की दुनिया से अपडेट रहे, साथ ही अपने जीवन में भी फिटनेस को बरकरार रखे। साथ ही सुनते जाएं 102.6 FM, यही सबसे अच्छी मॉर्निंग हो रही है और आपका और मेरा साथ लगातार चल रहा है।

तो इसी के साथ हम आपके हो गए, आप हमारे हो गए, और यूं ही समय कट गया। और फ्राइडे की स्माइल को ना बड़ा प्यार से हैंडल कीजिएगा, ये स्माइल अपने मुस्कान की जो है ना वो बरकरार रखिएगा, क्योंकि हीट वेव्स को आपको स्मार्टनेस से टैकल करना है। और वीकेंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है मेरे दोस्त, बस बहुत दूर नहीं है, ये फ्राइडे निकला नहीं कि वीकेंड आ गया। आप सुन रहे हैं 102.6 FM, स्टे कूल, स्टे हाइड्रेटेड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे। फ्राइडे आपको बिल्कुल फ्राई नहीं करेगा अगर आप ये स्माइल अपने मुस्कान के साथ पूरे दिन की शुरुआत 102.6 FM के साथ करेंगे, तो यूं ही मुस्कान बरकरार रहेगी। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक घंटे बाद, लेकिन गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का 2.0 वर्जन लेकर आ चुकी है स्टूडियो में मेरी दोस्त रेनू।

दिल कोई भी ले जाए, लेकिन हाँ वो सुरक्षित हाथों में हो, हाथ बहुत सेफ होने चाहिए। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल पर लेके हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके लिए है और आपको पास हम पहुंचाएंगे इस पूरे एक घंटे में। लेकिन उससे पहले एक और म्यूजिकल ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको बस एक काम करना है, आपको बस यूं ही हमारे साथ बने रहना है।

ना ना बिजली नहीं, बल्कि बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटी है जो हमारे यूथ के बीच में आई है उनके लिए आई है, ताकि वो अपना टैलेंट हम सभी के सामने रख सके। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के, स्पेशली दिल्ली के यूथ के लिए, और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के यूथ को हुनर को मौका देने के लिए हौसलों की उड़ान करके एक टैलेंट हंट स्कीम की घोषणा की है, और इसमें 16 से 35 साल के जो युवा हैं वो ही हिस्सा ले सकते हैं। और एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें दिल्ली के युवाओं की प्रतिभाओं को पहचानने का, निखारने का और नेशनल लेवल पर पहुंचाने का एक सशक्त मंच आपको मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी आपको जरूरत है वो आपके सामने है, पर इसके लिए आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाना होगा आपको 29th of May तक, और आपको

करवाना है, रजिस्ट्रेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है www.delhitalenthunt.com www.delhitalenthunt.com पर आपको जाना है। इस पोर्टल के माध्यम से आपको पंजीकरण करवाना है। जितने भी 16 से 35 वर्ष तक के युवा हैं और जो डांस करते हैं, चाहे आप शास्त्रीय नृत्य करते हों या आप गाते हों, आप जितना भी आपका टैलेंट है, चाहे आप मूर्ति बनाते हों या फिर आप डिजिटल आर्ट या फाइन आर्ट में हो या फिर एक्टिंग करते हो, आप नाटक करते हैं, जो भी विधा है, आप सभी प्रतिभागियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए मंच प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इसमें बस अपने आप को पंजीकरण करवाना है, फिर एक कॉन्टेस्ट होगा, उसके प्रोसेस आगे है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे जितने भी युवा हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसका ज़रूर इसका उपयोग करें और हौसलों की उड़ान इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ऑफ कोर्स ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आपके साथ हूं मैं रेणु भट्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके लिए ढेर सारी बातें लेकर आई हूं मैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आपके मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, आपके मैसेजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कर सकते हैं हमें मेल, हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको हमें मेल करना और बताना है कि कैसे लगते हैं आपको हमारे प्रोग्राम्स और क्या कहना चाहते हैं आप। और हम अपने सभी सुनने वालों को ये भी बता दें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप डीडीए के पुस्तकालय में आपको पढ़ना है, आप जाना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा dda.gov.in पर और अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने का, और अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पर आपको अवसर मिल सकता है। आप ज़रूर आप रजिस्टर करें अपने आप को और शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपना स्लॉट भी आप बुक कर सकते हैं। और अभी फिलहाल आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, हम यही चाहते हैं।

वेल, अगर काबिलियत का पता लगाना हो तो कई बार जाना पड़ता है कॉम्पिटिशन्स में, लड़ना पड़ता है दूसरों से, हाथ पैर से नहीं, मतलब इस तरह से कॉम्पिटिशन में जाना पड़ता है, दूसरे इंडिविजुअल प्लेयर्स से या फिर टीम से आपको भिड़ना पड़ता है और फिर जीत हासिल करनी पड़ती है और फिर रैंकिंग मिलती है, तब पता चलता है कि कौन नंबर वन है कौन नंबर टू है। ऑल दो जो मेहनत करता है वो सभी नंबर वन है। यहाँ पर अपने सभी सुनने वालों से, स्पेशली जितने भी CBSE से जुड़े हुए स्कूल हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है CBSE गेम्स 2026-27 के लिए, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि आप 6 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये डेट बढ़ाई गई है। तो जितने भी CBSE से जुड़े हुए स्कूल्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्कूल जो बहुत अच्छा करते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन किसी वजह से आप इन गेम्स के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाए हैं, तो इट्स अ गुड न्यूज़। आप ज़रूर अपने आप को पंजीकरण करवाएं अपना और अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का एक मौका दें। जब वो कोई अच्छा स्टूडेंट होता है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं ना, तो बहुत बहुत कुछ सीख कर आते हैं, चाहे आप जीतें या हारें, लेकिन वो एक्सपीरियंस और वो जो एक्सपोजर बच्चे को मिलता है या एक खिलाड़ी को मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। तो CBSE गेम्स 2026-27 के लिए आप ज़रूर पंजीकरण करवाएं और इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। और 6 जून की डेट को याद रखें, ये लास्ट डेट है। और ये भी याद रखें कि आप हमसे जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप रेणु भट्ट के साथ।

0: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाए और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 28 से 31 मई के बीच ये शिखर सम्मेलन दिल्ली के अलग अलग जगहों पर होने वाला है और इसके लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और यहां पर दिल्ली को सजाया जाएगा। जो नई दिल्ली क्षेत्र आते हैं, जो जैसे प्रमुख बाजार है, जो एंट्रेंस हैं, जो प्रमुख स्थल हैं, वहां पर उसका सौंदर्यकरण किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी और ताकि जितने भी डेलीगेट्स हमारे आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अलग अलग देशों से हमारे देश में डेलीगेट्स आएंगे, तो उनके लिए सारी चीज़ें अच्छे से हो और अच्छा दिखें, ये सब चीज़ें की जाएगी। और समिट की जो थीम है वो फूलों से उसका बोर्ड तैयार किया जाएगा। अगर आप एनडीएमसी क्षेत्र में आते होंगे, कुछ बड़े इवेंट जब होते हैं तो आप देखते हैं और पाते हैं कि फूलों से सजावट की जाती है, बहुत बहुत सुंदर लगता है जब हम ऐसी कोई चीज़ देखते हैं। तो आप हम अपने एंड पे ये कर सकते हैं कि जब ऐसा कोई इवेंट हमारे शहर में होता है तो हम अपने स्तर पर, अपने पर्सनल लेवल पर, हम जितने अच्छे तरीके से प्रयास कर सकते हैं चीज़ों को संभालने का, सुधारने का, ट्रैफिक ना लगाने का, ये सब तो हम कर सकते हैं, तो ये हमें करना चाहिए। हाँ या ना?

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। और हम अब अपने उन स्टूडेंट को, लिसनर्स को बता दें जो कि DU के में एडमिशन लेना चाहते हैं MTech में। और DU जो है यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय गेट के माध्यम से MTech माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश देगा, और अगर सीटें बची तब CUET PG के माध्यम से दाखिला दिया जाएगा। और इसके लिए आप जा सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर जा करके आपको पूरी चीज़ें चेक करनी है अच्छे से। एक अलग से पंजीकरण पोर्टल को शुरू किया गया है, आप वहां पर जाएं, आप वहां पे पोर्टल में आप देखें, चीज़ों को अच्छे से जानें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रजिस्टर करें अपने आप को जहां पे ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देती हूं कि वेबसाइट www.admission.god.ac.in, एक बार फिर से www.admission.uod.ac.in। आप यहां पे जा सकते हैं, इस वेबसाइट को बार बार चेक कर सकते हैं और अपनी जितनी भी आपको लगता है कि चीज़ें हैं आप यहां पे ज़रूर चेक करें। और फिलहाल आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में भारत फिल्म से।

पलब, मेरे जाने का समय हो गया. मैं आप सभी से ले लेती हूँ इजाजत, लेकिन आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है. मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप मेरे जाने के बाद सुन सकते हैं. ठीक 9 बजे आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, भावना के साथ मानसी लेकर आएंगे मास्टर्स म्यूजिकार 10:05 पर, और संतोष राव के साथ आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स 11:05 पर. फिलहाल मैं ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत, आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर. गुड बाय एंड टेक केयर.

0: वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: आप सुन रहे हैं 102.6 FM, दिल के तराने गाने नए पुराने कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आ चुकी हूं भावना। वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग। शुक्र है शुक्रवार है, लेकिन फ्राइडे फ्राइडे जैसी लग रही है, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो रहा है और प्रचंड गर्मी का ये जो दोहरा अटैक पड़ रहा है ना, दिन में भी उतनी गर्मी है, रात में तो ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी चल रही है। तो पंखे, एसी और कूलर का सहारा भी आप लीजिए। घर से बाहर निकलने की जरूरत हो तभी बाहर निकलिए, नहीं तो घर पे अच्छा अच्छा खाना बनाइए। कूल कूल मौसम अगर घर का एटमॉस्फेयर में लग रहा है तो उसको एंजॉय कीजिए। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, उनके साथ वक्त बिताइए। और ये बताऊं ना आपको, दिल के तराने गाने नए पुराने में होता क्या है, नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक होता है। आपके ऑफिस जाने का समय हो रहा होगा, आपको अपनी डेडलाइंस मीट करनी होगी, किसी ना किसी को कोई ना कोई काम हो रहा होगा, या फिर इस समय ब्रेकफास्ट की अच्छी अच्छी खुशबू रसोई से आ रही होगी। और दिल के तराने गाने नए पुराने जब बजेंगे ना, तो एवरग्रीन मेलोडीज भी होगी, साथ ही नए गानों का तड़का भी होगा। आज है 22 मई का दिन, कह रही है कि मई बहुत सता रही है, और ये मई बहुत सता रही है तो जून का इंतजार है। क्या 2 जून की रोटी मिलेगी जून में? मई ने तो गर्मी से सिता दिया, अब जून का क्या होगा मेरे भाई, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहां फ्राइडे है तो वीकेंड भी पास है, मजा आने वाला है आपको और मेरा ये सिलसिला लगातार चलने वाला है। ट्रैफिक से भी आपको बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है इस समय सड़कों पर। म्यूजिक का आनंद लेते रहिए, 102.6 के साथ जुड़े रहिए। कीप लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड टू सम वेरी नाइस सॉन्ग्स। गर्मी है तो क्या हुआ, अपने दिलों की ठंडक बरकरार है मेरे दोस्त।

सिंघम तो आप बन चुके होगे क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर आप निकल चुके होगे, कोई पैदल निकल रहा होगा छाता पकड़ के क्योंकि गर्मी बहुत है, और कोई गाड़ियों में इस समय होगा, फिर चाहे वो दो पहिया वाहन हो, चार पहिया वाहन हो या बस ऑटो के भी में भी हो सकता है। लेकिन इस समय आपको बता दें कि ऑटो और टैक्सी की हड़ताल चल रही है 3 दिनों की, तो आप संभल कर निकले। और दिल्ली ट्रैफिक की बात बताएं, जो अगर सड़कों का हाल बताएं आपको, तो राजघाट पर एक ऑफिशियल कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक आप ITO चौक, दिल्ली गेट, शांतिवन चौक समेत कई मार्गों पर जो यातायात है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है और डाइवर्ट कर दिए गए हैं रूट्स। यात्रियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए अतिरिक्त समय निकालने की जरूरत इस समय पड़ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ और जगहों पर भी इस समय ट्रैफिक अपडेट आ चुका है। आपको बताएं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे सीवर लाइन की पुनर्स्थापन कार्य के चलते नजफगढ़ उत्तम नगर मुख्य मार्ग पर द्वारका मोड़ से उत्तम नगर की ओर जाने वाला जो मार्ग है, मेट्रो पिलर नंबर 722 से लेकर 723 के बीच 20 मई से लेकर अगले 45 डेज तक ये बंद रहेगा। तो इस टाइम पर यातायात प्रभावित हो सकता है और आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रभावित मार्ग पर जाने से बचें और डाइवर्टेड रूट्स को ले। साथ ही आपको बता दें कि अभी की जो अगर ट्रैफिक अपडेट आपको बताएं, क्योंकि दिल्ली NCR में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की 3 दिन की हड़ताल चल रही है, तो राइड कैंसिलेशंस और जो मेजर रूट्स पर कंजेशन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही गुड़गांव से शंकर चौक पर जो लेन है उस पर एक वाइडनिंग वर्क चल रहा है जिससे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर आने जाने वालों के लिए उनको डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पहले ही बहुत कंजेशन रहता है, तो आप वक्त निकालकर पहले बफर टाइम लेकर जरूर निकलें। और जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट है और उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर भी जाकर आप तमाम ये अपडेट्स ले सकते हैं। साथ ही 102.6 FM पर तो आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहती है, साथ ही साथ गानों का सिलसिला यहाँ चलता रहता है, और वो भी आपके अपने फेवरेट सॉन्ग्स।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
0: पता का चाय गजब का स्वाद। आप सुन रहे 102.67 और अब पेश है एक ऐसा गीत जो जिंदगी को ना बड़े ही अनोखे और दिलचस्प अंदाज में देखने को सीख देता है, और सीख ऐसी देता है जो आपको भी भा जाए। भीड़ भरी इस दुनिया में हर कदम संभल कर चलना जरूरी है बॉस, क्योंकि जिंदगी भी ना एक रंगमंच की तरह है जहां हर पल नया दृश्य सामने आता है। ए भाई जरा देख के चलो, फिल्म मेरा नाम जोकर का ये यादगार और सदाबहार गीत मुकेश की आवाज में जीवन का गहरा संदेश बेहद खूबसूरती से पेश करता है। तो आइए राज कपूर के अनोखे अंदाज और इस शानदार गाने के साथ कुछ पल जिंदगी को मुस्कुराकर महसूस करते हैं। सुनते रहिए दिल के तराने, गाने नए पुराने, सिर्फ 102.6 FM के साथ।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: हजार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: और आइए, अब माहौल को थोड़ा और खुशनुमा बनाने का वक्त आ गया है। दोस्ती हो, मस्ती हो या साथ में प्यार भरी बातें, तो जिंदगी अपने आप में खूबसूरत सफर बन जाती है। अरे यारो, प्यार करो। उदित नारायण की चुलबुली और दिल को छू जाने वाली आवाज में सजा ये गीत सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो चलिए, प्यार, दोस्ती और खुशियों के इस रंग को और संगीत में घोलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए दिल के तराने, गाने नए पुराने, सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: वक्त आ गया है थोड़ी और मस्ती करने का, थोड़ा सा रोमांस और ढेर सारे धुनों का झनकार। ऋषि कपूर की चंचल अदाएं और लता मंगेशकर की मधुर आवाज, जब साथ आती है तो गीत अपने आप दिल में उतर जाता है। डफली वाले उतना अच्छा तो नहीं गा पाती, लेकिन धुन आप समझ गए होंगे। फिल्म सरगम का ये सुपरहिट गीत आज भी अपनी एनर्जी, संगीत और प्यार भरे अंदाज के लिए हर पीढ़ी में पसंद किया जाता है। तो चलिए इस शानदार रिदम के साथ थोड़ा आप भी थिरकिए, गुनगुनाइए और मुस्कुराते रहिए। सुनते रहिए 102.6 FM, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

साथ गीतों, यादों और मुस्कुराहट से सजे इस खूबसूरत सफर का वक्त हो चला है थमने का। उम्मीद है कि दिल के तराने गाने नए पुराने का आज का ये एक घंटा आपकी सुबह को और भी सुरीला और खुशनुमा बना गया होगा। पुराने गीतों की मिठास हो, नए नगमों की ताजगी और आपके साथ का प्यार हो तो ये एक घंटा बहुत खूबसूरत बन जाता है। आप मुझसे आपकी अपनी भावना को दीजिए अनुमति। 102.6 FM आप सुनते रहिए क्योंकि यहाँ हर पल हर धुन दिल से जुड़ती है। मैं फिर मिलूंगी नए अंदाज, नए गीतों और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल फ्राइडे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स माय डियर। साइनिंग ऑफ भावना, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट्स मुंबई भी जा चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट्स की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित

कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS चतुर्थ के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजय शक्ति का प्रमाण है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इन टू 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो एंड दिस इज मैचलेस म्यूजिक आवर विद मी मानसी रंजन, टॉकिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ दिल्ली टू द हार्ट्स ऑफ इंडिया। द डेट टुडे इज 22nd मई एंड इट्स अ फ्राइडे। यस, the weekend is slowly knocking our doors, so let's make this Friday morning feel a little lighter, a little nostalgic, and a lot more musical. Let's begin this musical hour with a cheerful classic from 1959, smooth, catchy, and impossible not to hum along with. This is O Carol by Neil Sedaka.

0: वी केसकर, ऑल इंडिया रेडियो इंट्रोड्यूस द आकाशवाणी संगीत सम्मेलन. इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. लेजेंडरी आर्टिस्ट लाइक पंडित रविशंकर एंड उस्ताद बिस्मिल्ला खान बिकेम पार्ट ऑफ दिस म्यूजिकल लेगेसी. एंड ओवर द डिकेड्स द फेस्टिवल ब्यूटिफुली एक्सपैंडेड टू इंक्लूड लाइट म्यूजिक, फोक म्यूजिक एंड इवन वेस्टर्न क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस. And while we continue celebrating melodies that traveled across the generation, let's move towards another unforgettable classic from 1961. This song became one of the defining tracks of soul music and continued to remain deeply loved even today. But before that, let me take a tiny break, and after the break, I'll play Stand By Me by Ben E. King.
1: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से. केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव.
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें.
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है. यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें. विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in.
4: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान. सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: Welcome back to 102.6 MHz FM Rainbow, and this is Matchless Music Hour, the game edition. So before going on a break, I played that song Oh Pretty Woman by Roy Orbison, and Miss Neerja Lal has said that Pretty Woman is from the 2003 film Kal Ho Na Ho. So thank you so much, ma'am. And since we are playing a guessing game, and a lot of you are actually sending me the messages, so thank you so much for doing that. And let's not stop the game. The next track is by The Buggles, and the song has been ruling our hearts since then. This is Video Kill the Radio Star.

0: नाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
3: Welcome back to 102.6 MHz FM Rainbow, and this is Matchless Music Hour. Now coming up is a melody that traveled across the world and became unforgettable across generations. Released in 1970 for the film Love Story, this is Where Do I Begin by Andy Williams. And if this tune reminds you of another Hindi classic, well, you all know where to message. It is 9868 107070.

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Welcome back to 102.6 MHz FM Rainbow, and you are listening to Matchless Music Hour, the hour where we are playing some of the famous English songs that redefine the Hindi music segment. Coming up next is the last Hindi track of this hour, loved and sang by every generation. This song is a cult hit released in 1971, composed by Shankar Jaikishan. The lyrics were penned by Hasrat Jaipuri, and it stars Rajesh Khanna and Hema Malini from the movie Andaz. I'm sure you all must have guessed it right. This is none other than Zindagi Ek Safar Hai Suhana.

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: You are tuned in to 102.6 MHz FM Rainbow and this is Matchless Music Hour, where melodies travel across languages, cultures and generations. Now let's raise the energy a little because disco had officially arrived by the late 70s. Released in 1979, this next track by Moni M became a worldwide dance floor favorite. Fun, dramatic and impossible to ignore. This is Bahama Mama.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एंड जस्ट लाइक दैट आवर म्यूजिकल गेसिंग गेम कम्स टू

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइट्स की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होना है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य को अनेक नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री आज जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे और 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसमें पहले केवल 8 डिब्बे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण

ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोडे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोडर ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वह जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति बीएसएफ की अजेय शक्ति का प्रमाण है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मेहरबान कदरदान पहलवान हो जाइए तैयार बॉलीवुड ट्रेल्स के लिए।
2: बॉलीवुड की चटपटी गपशप, सिनेमा का निराला संसार लेकर आ गया आपका दोस्त एसआर। संतोष राव के साथ सुनिए बॉलीवुड ट्रेल्स।
3: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स।

जी हाँ, यह है बॉलीवुड ट्रेल, जिसमें हम बात करते हैं ढेर सारी, जी हाँ ढेर सारी बॉलीवुड से जुड़ी हुई। तो आज भी बहुत ढेर सारी खबरें हम लेकर आए हैं आप सबके लिए, और हाँ एक सवाल भी है जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और जैसे ही ये सजेगा सरताज है ना, तो वो लिसनर्स हो जाएगा बिल्कुल लाइव हमारे साथ। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे घंटे। फिलहाल अभी आपको एक प्यारा सा गीत हम सुनाने जा रहे हैं, आनंद लीजिए इस गीत का, और उसके बाद बताऊंगा आज का बॉलीवुड सरताज जो सवाल है वो, और फिर हम शुरू करेंगे ढेर सारी खबरें। बस इस बात को याद रखिएगा।

अब दोस्तों गलत काम करोगे तो पापा तो बैंड बजाएंगे ही, है ना। वैसे आजकल बैंड ना तो पापा बजा रहे हैं और ना ही मम्मियां, असली बैंड तो सबका बजा रही है। जी हाँ, गर्मियां, और हर तरफ गर्मी ने, है ना, सबको बेहाल कर रखा है। और इसी बेहाली में बॉलीवुड से आ रही है ऐसी खबरें जिसको सुनकर लोग गर्मी से कम इन खबरों से ज्यादा अपने आप को कमरों में बंद कर रहे हैं। क्यों बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको सुना रहा हूं एक प्यारा सा गीत है। गीत नहीं बल्कि गीत का मुखड़ा पहले सुनाऊंगा, और इस मुखड़े को सुनकर आपको बताना है कि ये गीत बड़े पर्दे पर, मतलब फिल्म में, किस फिल्म अभिनेता पर फिल्माया गया है। जी हाँ, आज का है ये बॉलीवुड सरताज। जो गीत का मुखड़ा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा और हाँ जल्दी से जवाब दीजिएगा, और जो क्योंकि सबसे पहले जो सही जवाब देगा वही बन जाएगा बॉलीवुड सरताज। तो सुनिए ये गीत का मुखड़ा और बताइए ये गीत किस फिल्म अभिनेता पर फिल्माया गया है।

व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बताना है। जी हाँ, 9868107070। और हम आपके लिए थोड़ा सा आसान और कर देते हैं, हम किसी से नहीं, एक फिल्म आई थी 1977 में, ये एक भारतीय मसाला फिल्म थी, जी हाँ, जिसका निर्माण और निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था और इसमें ऋषि कपूर, तारिक, काजल, किरण और अमजद खान ने अभिनय किया था और जीना तमान ने एक विशेष भूमिका निभाई थी। अब इतना हिंट दे दिया मैंने, तो आप जल्दी से बताइए किस फिल्म अभिनेता पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है बड़े पर्दे पर। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप।

0: दोस्तों मैंने आपको ये पूरा गीत सुना दिया, सिर्फ यही 2 मिनट का ये गीत है, और कि चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम लौट कर आना यहीं तुम। और देखिए कहते हैं ना कि दिल से पुकारो तो कायनात भी आपकी सुनती है और फल मिल ही जाता है। और देखिए 1977 में फिल्म में एक अभिनेता एक गुजारिश कर रहे थे कि लौट कर आना मेरी चांदनी। जी हाँ, और देखिए इनकी ये दुआ कबूल हो गई 2026 में। जी हाँ, 2026 में, कल यानी 21 मई 2026 में जब चांद मेरा दिल फिल्म रिलीज हुई सिनेमा हॉल में। खैर इस फिल्म के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जैसे सुनकर आप भी कहेंगे कि गर्मी का असर क्या इतना हो गया बॉलीवुड से जुड़े लोगों को कि जो फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी उसका मलयालम वर्जन कल रिलीज कर दिया गया। जी हाँ, हिंदी में जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसका मलयालम जो वर्जन है वो रिलीज कर दिया गया। नहीं समझे आप, चलिए ये सुनिए, शायद फिर आपकी समझ में आ जाए।
1: दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है। इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है, हर किसी का सही अलग है। मेरा सच, मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूं, चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, एक दीवार बनकर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: दोस्तों अजय देवगन की बातें सुनकर समझ में आ गया कि ये बात कर रहे हैं दृश्यम 3 की, और वो दृश्यम 3 की यार 2 तो आपने देखी होगी, जबरदस्त फिल्म। लेकिन दृश्यम 3 का जिसका मलयालम वर्जन कल रिलीज किया गया है, वैसे रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, मगर समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कहानी तो लोगों के सामने आ गई ना, चाहे वो मलयालम लैंग्वेज में आए या तमिल में आए, तेलुगु में आए, कन्नड़ में आए, मराठी में आए या फिर हिंदी में आए, है ना। अमूमन क्या होता है, सभी भाषाओं के वर्जन होते ना एक साथ रिलीज होते हैं, लेकिन यहां भी एक खेला खेला गया है, और वो तभी समझ में आएगा जब दृश्यम 3 फिल्म अजय देवगन की 2 अक्टूबर पर रिलीज होगी। जी हां, 2 अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। खैर इंतजार करिए और आनंद लीजिए।

गीत का आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, क्योंकि हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक

0: आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, ये गीत आपने सुना, ये जवानी ये दीवानी, जिसमें रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण हैं। और कहानी की बात करें तो कबीर और नैना ट्रिप पर मिलते हैं, और इससे पहले कि नैना प्यार का इजहार करे, कबीर करियर बनाने के लिए भारत छोड़ देता है। ये वर्षों बाद मिलते हैं, लेकिन कबीर अब भी रिश्तों से ज्यादा सपनों को महत्व देता है। अब इस कहानी को छोड़िए और इस बात को गौर से सुनिए जो अब मैं कहने जा रहा हूं। है जवानी तो इश्क होना है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। अब वो बात अलग है कि आपका इश्क परवान चढ़े ना चढ़े। और ऐसा लगता है कि डेविड धवन जी ने नींबू पानी पीते पीते मौके की नजाकत को समझ लिया और निर्णय ले लिया कि आज होने वाली उनकी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है रिलीज नहीं होगी, और इसे रिशेड्यूल करके 5 जून को रिलीज करने का फैसला किया गया है। अब वरुण धवन और पूजा हेगड़े को भी थोड़ा इंतजार करना होगा, है ना, हम सबके साथ साथ। वैसे इस इंतजार में अगर वरुण धवन कुछ मुस्कुराते हैं, गुनगुनाते हैं, तो ये बात अलग बात है। लेकिन हम बात अब करते हैं फिल्म तीसरी बेगम फिल्म की। आइए आपको पहले डायलॉग सुना देते हैं, 1 मिनट का डायलॉग, और उसके बाद हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे और आपको ले चलेंगे इस फिल्म के निर्देशक प्रोड्यूसर केसी बुकाड़िया जी से बात करने, बिल्कुल लाइव आकाशवाणी FM रेनबो पर। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए।
1: शबाना जी हमारी पहली बेगम, और ये है तबस्सुम जी हमारी मंजली बेगम, और ये है नगमा हमारी नई बेगम।
2: इस घर के मर्द 2-3 शादियां तो करते ही हैं, इनको औरत नहीं बच्चे पैदा कर

0: सास अपने खानदान की बहू को एक कहर भर के साथ सोने के लिए मजबूर करती है।
1: नहीं बप्पन से तेरा तलाक करवा लिया और चांद से तेरा निकटा तो मेरा नाम फातिमा बेगम नहीं है।
0: हमारे अंदर राजपूत का खून दौड़ता है, अगर हम वार सहना जानते हैं तो वार करना भी जानते हैं।
2: दोस्तों फिल्म के डायलॉग सुनकर समझ में तो आ गया होगा कि ये फिल्म तीसरी बेगम एक भावनात्मक और सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो धोखाधड़ी वाली शादी के जाल में फंसी महिलाओं के संघर्ष, महिलाओं के खिलाफ घरेलू उत्पीड़न और न्याय की लड़ाई पर आधारित है। और ये फिल्म समाज के दकियानूसी रिवाजों और एक महिला द्वारा अपनी गरिमा व सम्मान वापस पाने की कहानी को बयां करती है। अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि फिल्म का मुख्य किरदार है पूजा दीक्षित है, जो एक धोखे भरी शादी में फंस जाती है और उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है। उसका पति बब्बन एक टॉक्सिक मतलब हानिकारक माहौल वाला व्यक्ति है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब गहरे सदमे और अपमान के कारण पूजा के पिता, जो एक सम्मानित स्कूल प्रिंसिपल थे, उनको दौरा पड़ जाता है दिल का और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बब्बन के सौतेले भाई यूसुफ, जो पूजा के पिता के छात्र रहे, कुछ अन्य महिलाएं मिलकर पूजा को इस दमनकारी दुनिया से बाहर निकालने और न्याय दिलाने की लड़ाई करती हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं केसी बुकाड़िया जी, एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने हमेशा समाज को एक नई दिशा दिखाई है अपनी फिल्मों के जरिए। तो आइए केसी बुकाड़िया जी की फिल्म हमसे बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, तीसरी बेगम, जो आज ही रिलीज हुई है और थिएटर में पहुंच चुकी है। हेलो।
3: हाँ सर, आदर प्रणाम, केसी बुकाड़िया बोल रहा हूँ।
2: सर नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।
3: आपकी मेहरबानी सर, आप याद करते हैं और मेरी आवाज को जनता तक पहुंचाते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत मेहरबान है आप मुझ पे और मैं सब सुनने वालों को सादर प्रणाम। केसी बुकाड़िया का हमेशा अच्छी फिल्में बनाई है और आपने देखा सराया, चाहे प्यार चुकता नहीं से लेके और सिग्नेचर तक का सफर 60-65 फिल्में बनाई है और अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश की है, पारिवारिक और ऐसी फिल्में जो कुछ न कुछ संदेश मैसेज जावे पब्लिक तक, उसी भावनाओं के साथ अभी लेके आया हूं मैं एक तीसरी बेगम, जो जरूर सुनने में लगता है, टाइटल से सुनने में लगता है कि कुछ कंट्रोवर्सी होगी।

0: तीन बीवी हैं, पहले बीवी मुस्लिम, सेकंड राजपूत, थर्ड ब्राह्मण।
1: अच्छा।
0: वहां से मैं एज ए राइटर हूँ, मैं इंस्पायर हुआ, इंस्पायर होके अच्छी फिल्म बनाई। बट हमने सर ऐसा दिखाया फिल्म में कि हिंदू लड़कियों ने भी लाचारी नहीं दिखाई है। उसको बोलती है वो मेरे रगों में राजपूत का खून है, जो अभी आपने सुना कि मैं चुप रहना भी जानती हूँ और चुप कराना भी जानती हूँ उसमें। लेकिन उसमें सर उसको मदद की मुस्लिम बीवी नंबर वन ने, उसने बगावत की अपने परिवार के साथ, और फिर उसके साथ जो वापस आए उसको किस तरह मुसीबत आई, उसको झेलनी पड़ी होगी। फिर दोनों लड़कियां ने डिसाइड किया, और उसको जब बाद में या उसमें तकलीफ होती है, टॉर्चर होता है, वो हस्बैंड छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर वो बोलती है कि
1: हेलो।
0: हाँ सर
1: जी,
0: हाँ। तो वो सब करके अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत एक्शन है, कॉमर्शियल वैल्यू है, गाने बहुत अच्छे हैं, और मैं सुनने वालों को बोलता हूँ आपने हमेशा केसी बोकड़े को प्यार दिया, इसी तरह मुझ पे भरोसा करिए, और देखने के बाद आपको लगेगा, हर फैमिली वालों को लगेगा कि अपनी लड़कियों को दिखाना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि केसी बुकाडिया जी की फिल्म है तो सामाजिक है, पारिवारिक है, और संदेश देती हुई फिल्म है, तो अक्सर देखते हैं। कई फिल्में आपने, जैसे कि आपने जिक्र भी किया था, प्यार झुकता नहीं, हम तुम्हारे हैं सनम, सुपर डुपर हिट रही है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये फिल्म जो तीसरी बेगम आपने बनाई है, क्योंकि आपने ही लिखी है, आपने ही डायरेक्ट किया, आपने ही प्रोड्यूस किया है, तो एक बात जानना चाहेंगे, पूरी फिल्म बनने में कितना समय लगा था?
0: नहीं, बनने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगा सर, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम आई सर, मेरे को सेंसर में, मैं जब दिल्ली सेंसर को दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया सर, के बोला आप बम्बई रिवाइजिंग में चले जाओ, हम यहाँ क्या काटेंगे, क्या करेंगे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो मैं वहां से फिर बम्बई रिवाइजिंग में डाला मैंने, बहुत मैंने कोशिश की। उसमें थोड़ा अड़चन उनको, भाई ब्राह्मण की लड़की है, और उसको जब पता लग जाता है कि मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, और उसने अपने हस्बैंड से कहा तुम शादीशुदा हो, बोले हाँ, बोले तुमने बताया नहीं, बोले तुमने पूछा ही नहीं। अरे तो इतना बड़ा यार काम तुमको बताना तो चाहिए। तो लड़की ने डिसाइड कर लिया कि मैंने यहाँ नहीं रहना है। तो मैं जरा सा आपसे एक मिनट, मैं आपको बताऊं सेंसर की प्रॉब्लम क्या थी, वो बता रहा हूँ। तो जरा उसने ब्राह्मण की लड़की को, वो उसको ट्रेन करते हैं मुस्लिम के रीति रिवाज बताने के लिए, पढ़ाने के लिए आती है वो उनकी टीचर, वो बताते हैं तुम, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, बोले पूजा दीक्षित, बोले नहीं नगमा नाम है तुम्हारा, बोला नहीं बचपन से कार्ड में भी मेरा यही नाम है, फिर बोला हम सब का मालिक कौन है, वो चुप रही, बोले नहीं, तो उसको मारते हैं, पूछ रही है उसकी सास, बोलती हम सब का मालिक कौन है, उसने कहा जय सिया राम, तो बोलते नहीं अल्लाह खुदा नाम मालिक है, बोले नहीं बचपन से हमने एक ही नाम सुना जय सिया राम। तो उसके बाद इस तरह से वो राम जी का, हमारे मैं भगत भी हूँ, हम सब पूरा हिंदुस्तान भी अभी राम, भगवान राम की लहर चल रही है, तो उसको हमने से जो पिक्चर में उसका सारा लिया, लड़की भगवान राम को मानती है राम जी को, तो वो उनसे उनको एतराज था, और एंड में फिर वो सेंसर वाले बोले ये भगवान राम जी हटाओ, मैं बोला सर ये तो नहीं हटेगा चाहे मेरी पिक्चर रिलीज हो गए नहीं हो।
1: अच्छा सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, केसी बुकाडिया जी की कभी किसी फिल्म में इतना दुविधा नहीं हुई सेंसर बोर्ड को, इसी फिल्म में ज्यादा हो गई, जो आपने एक हकीकत वाली फिल्म को एक अंजाम दिया इसके लिए, तो एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे सर, फिल्म शूटिंग के वक्त भी क्या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ?
0: नहीं कुछ नहीं सर, मुझे मालूम, मैं अपनी कन्विक्शन से फिल्म बनाया, मैंने लगा कि नहीं पिक्चर, देखिए शिकायत करना, किसी को बुरा बताना तो बहुत इजी है हर इंसान के लिए, उसका सॉल्यूशन क्या है, अच्छा ही से सॉल्यूशन तो प्यार मोहब्बत से ही होगा, तो हमने उस बात को सॉल्यूशन दिखाया कि यार घर में टॉर्चर हो गया, चलो गलती हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो लड़कियों ने सर बगावत की, और उसको बोला कि भाई तुम इस तरह से छोड़ दो, वरना जो भी एक्शन हुआ, कमर्शियल वैल्यू थी पिक्चर में, एक्शन के बाद तो लड़के को लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तो उसने बोला मैं तुमको तलाक देता हूँ, मुझे मारोगे तुम विधवा हो जाओगी, तलाक तलाक तलाक तलाक तलाक दोनों को, तो बोले यार कितना आसानी से बोल के तुम लोग छुटकारा पा रहे हो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद करके। और फिर उसको लगा, उसने कहा मेरी वाइफ ने, सुन रहे हैं सर?
1: जी जी मैं सुन रहा हूँ सर।
0: ओके, मेरी वाइफ ने तुमको, उसने सबाना ने तुम्हारी बहुत मदद की है, उसका वास्ता, वो बच्चे नहीं बोली, हीरोइन ने नहीं मानी, फिर बोले जय सिया राम बोलना शुरू कर दिया, तो उसने सर लड़कियों ने भगवान जय सिया राम पे छोड़ दिया। तो फिर पिक्चर गई सर कोर्ट में, हाई कोर्ट बम्बई में, फिर वहां जज के

0: हमने जज साहब ने पिक्चर देखी और देखने के बाद वो सर फिर उन्होंने बोला कि ये बुखड़े साहब बाकी सब जय सिया राम अलाउ है, ये लास्ट में आप मुसलमान जो जय सिया राम बोलता है उसके लिए चेंज कर दो। तो फिर बोला कि भाई तुम्हें तुम्हारा भगवान का वास्ता है, तो भगवान और जय सिया राम तो एक ही रूप है। फिर मैं भी मान लिया और आपस में सेटल करके 22 तारीख को पर्दा लग रही है।
1: ये फिल्म आ चुकी है आज थिएटर में। अच्छा अच्छा सर, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपसे प्यार करता है, आपने बेहतरीन फिल्में दी हैं और लोग आपसे बहुत बहुत उम्मीद भी रखते हैं। इस फिल्म में जो कलाकार हैं मुक्ता और एक और हैं आपके बेहतरीन, तो उनसे जब आपने इनका जो कास्टिंग किया था, तो उस वक्त किस नजरिए के साथ रखकर आपने इन लोगों की कास्टिंग की थी?
0: देखो सर, मेरे के हिसाब से पहले तो जो लड़की है ना सर, अगर मैं कोई बड़ी लड़की है बड़े नामचीन ले हूं, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं था, बिकॉज वो तो कुछ है ज्यादा। मैं तेज तराट लड़की लूंगा तो पब्लिक को आर्टिफिशियल लगता है कि ये फंसी क्यों। इसीलिए हमने जो ब्राह्मण की लड़की बिल्कुल नहीं ली है, और उसके साथ ये कायनात अरोड़ा और मुग्धा गोडसे, ये सब वो मुग्धा गोडसे शादीशुदा है, कायनात अरोड़ा भी पिक्चर में शादीशुदा है, तो उसके लिए मेरे को मैच्योर लड़कियां चाहिए थी।
1: okay.
0: उस लिया, और नई लड़की में मैंने बिल्कुल वो जो ब्राह्मण की बेटी है उसमें नई लड़की लिया, और मेन सब्जेक्ट ऐसा डायलॉग है मैंने डायरेक्ट किया, मेरा कैसी बुखड़िया बीएमबी का थप्पा लगा हुआ, तो कोशिश की एक भाई अच्छी पिक्चर। दोनों गाने बहुत अच्छे हैं सर, एक ही पल में दुनिया मेरी उजड़ गई, जाने क्यों मुट्ठी से उंगली फिसल गई, और एक दूसरी गंगा मैया तेरी बिटिया जग से आ रही। चूंकि स्टोरी बनारस की है तो वहाँ गंगा मैया को भी मैंने फिर इन्वॉल्व किया, अगर लड़की को तकलीफ है तो गंगा मैया से ही जाके फरियाद करेगी मैं बहुत परेशान हूँ।
1: चलिए बहुत अच्छा जी, आपने पूरी फिल्म के बारे में जिक्र कर दिया है, हमारे लिसनर्स हैं और जरूर इस फिल्म को देखेंगे, और क्योंकि जहां जुड़ जाता है केसी बुकाडिया जी का नाम तो अवश्य थिएटर की ओर खिंचे चले जाते हैं लोग, इस फिल्म को जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद केसी बुकाडिया जी हमसे बातचीत करने।
0: एक लफ्ज मैं ऐड करूंगा जी, मैं बोलूंगा कि आप इतना अच्छा बोलते हैं और इतना अच्छी तरह से पूछते हैं तो हम लोगों को भी बोलने में मजा आता है, तो मुझसे ज्यादा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमेशा केसी बुकाडिया को सपोर्ट किया और आपका प्रेम बना रहे, और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कभी आपके इस भ्रम को मैं टूटने नहीं दूंगा।
1: बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे फिल्म डायरेक्टर केसी बुकाडिया जी, जो उनकी आज जो फिल्म रिलीज हुई है तीसरी बेगम, उसके बारे में बता रहे थे। कुछ दुविधाएं आई थी और उनके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब निर्माता निर्देशक फिल्म बनाते हैं तो उनकी उम्मीद होती है कि वो थिएटर में लोगों के सामने उस फिल्म को लेकर आए, जब परेशानी आती है तो थोड़ा निराश भी हो जाते हैं। लेकिन केसी बुकाडिया जी एक ऐसे महान निर्देशक और निर्माता हैं जो हमेशा आगे बढ़ते हैं, समाज के लिए कुछ न कुछ संदेश देते हुए फिल्मों को लेकर आते हैं। एक ऐसी ही फिल्म वो लेकर आए थे, प्यार झुकता नहीं। तो आइए इसी फिल्म का गीत सुनते हैं, प्यार झुकता नहीं का, आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। और आइए अब बात करते हैं अगली फिल्म का जो आज रिलीज हुई है, चांद मेरा दिल। ये एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो आज 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। और इस फिल्म का निर्देशक विवेक सोनी द्वारा किया गया है और जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिकाओं में है। इस फिल्म के बारे में और बताने से पहले आइए आपको सुनाते हैं इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स, गौर से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा।
1: सॉरी चांदी, सुन मेरी बात,
2: कैसी लग रही?
1: मेरी लग रही चांदी, सॉरी यार प्लीज, सुन गलती हो गई यार, प्लीज ओपन द डोर यार, प्लीज चांदी सुन, दरवाजा खोल यार।
2: चांदनी बहुत रेगुलर है यार वो, इसलिए पसंद है मुझे।

0: तेरे इतने बड़े फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं? तू रह लेगी मेरे बिना? पर मैं नहीं रह पाऊंगा यार, ऐसा फ्यूचर जिसमें तू ना हो नहीं चाहिए मुझे।
1: मम्मी ये चांदनी है।
2: लो चांदनी।
3: और यहाँ तो स्ट्रेस धुआं भी नहीं हो सकता।
0: किसी का गला खराब हो रहा था मेरी वजह से, तो पूरा ठीक कर देते हैं।
3: मतलब
0: हमेशा के लिए।
3: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
0: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
3: अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना, तो शायद मैं भी तुझे माफ नहीं करती।

तो दोस्तों आपने सुन ली इस फिल्म की कहानी चांद मेरा दिल की, और जो आज रिलीज हुई है। अगर हम इस फिल्म की अगर हम बात करें कुछ और कहानी डिटेल्स में बताने की, तो थोड़ा सा बता देता हूं कि ये फिल्म मुख्य रूप से चांद यानी अनन्या और आरव मतलब लक्ष्य के बीच के जुनूनी और पुराने स्कूल के प्यार की कहानी को दर्शाती है। अब ये फिल्म दर्शकों को कितना लुभाएगी ये आज शाम तक पता चल जाएगा। बहरहाल अभी हम एक कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे सीधे आज के बॉलीवुड सरताज के पास। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये

0: मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जी हाँ दोस्तों, अब हो जाइए तैयार आज के बॉलीवुड सरताज को जानने के लिए। बहरहाल जानना क्या है, आइए उनकी मधुर आवाज ही आपको सुना देता हूँ। हेलो।
1: हाँ सर, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते। अच्छा ये बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: सर मैं राखी बोल रही हूँ, किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर से।
0: क्या बात है, आप वहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम कैसे सुन रही हैं अजमेर में?
1: सर रेडियो के जरिए।
0: रेडियो के जरिए?
1: हाँ सर।
0: क्या बात है। अच्छा जो सवाल हमने आप पूछा था कि किस फिल्म पर फिल्माया गया है, किस फिल्म अभिनेता पर फिल्माया गया है वो गीत, तो किस फिल्म अभिनेता का नाम है बताइए?
1: तो तारिक शाह है सर उनका नाम।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। वैसे ज्यादातर हमारे जो लिसनर्स ने हमें जवाब भेजा है वो भेजा है और उन्होंने कहा है ऋषि कपूर ऋषि कपूर, और सही जवाब है तारिक शाह। क्या करती है राखी जी आप?
1: सर मैं होम मेकर हूँ।
0: अच्छा होम मेकर है। अच्छा कितना समय हो गया आपको वैवाहिक जीवन में, मतलब?
1: सर 15 इयर्स तो हो गया सर।
0: 50 इयर्स?
1: 15।
0: अच्छा 15 इयर्स, 15 साल हो गए हैं। अच्छा वैसे कहाँ की रहने वाली हैं आप?
1: सर किशनगढ़ की हूँ सर मैं।
0: अच्छा ओके, वहीं की हैं। और आप एफएम रेनबो बराबर सुनती रहती हैं?
1: सर बराबर सर, मैं मतलब सर क्या बताऊँ, जब से कॉलेज में थी सर तब से, उससे पहले भी सर मेरा ये सफर आज तक जारी है सर इसके साथ में।
0: क्या बात है,
1: रेडियो के साथ में। तो
0: आप बराबर ये सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। देखिए मौका मिल ही गया आपको आज बॉलीवुड सरताज बनने का, है ना?
1: बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत।
0: चलिए गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, अपना ध्यान रखिएगा और आकाशवाणी एफएम रेनबो सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत मुबारक।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों ये थी राखी किशनगंज अजमेर से जो बनी आज बॉलीवुड सरताज। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, लेकिन 1 बजे आपसे मुखातिब हो जाएगा लेकर मेरा वाला सॉन्ग। 1:20 में शुरू होगा हमारा मेरा वाला सॉन्ग, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए

टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधीय नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परन्तु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और इसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: Welcome back to 102.6 MHz FM Rainbow and you are listening to Play It Cool with me, Mansi Ranjan. Today in this session, we are celebrating the artists who ruled different years and shaped global music from 2000 to 2025. And honestly, music has changed so much during these years. Like we moved from CDs to iPods, like we were downloading songs one day and there was a time, now there is a time, like we are streaming them instantly. But one thing that has never changed is the emotional connection with music. And very few artists have managed to grow with their audience the way Taylor Swift has. From country storytelling to global pop domination, she somehow turned every phase of her life into lyrics.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Welcome back to 102.6 MHz FM Rainbow on the Play It Cool, where we are playing some of the coolest tracks. This next artist ruled global charts in 2017. He gave us songs that are practically played everywhere. Cafes, reels, weddings, long drives, like everywhere. And honestly, even today, they haven't left our playlist. This is Shape of You by Ed Sheeran from his album Divide.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Welcome back to 102.6 MHz FM Rainbow and this is Play It Cool. Now moving into the late 2010s and early 2020s, here's a song that mixed pop melodies with emotional storytelling and instantly connected with listeners across the world. Released in 2023, this is I Like You by Post Malone and Doja Cat.

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
3: You know, what's beautiful about music? Every generation believes that their era had the best songs and honestly, they're right in their own way. Why? Because we humans have this habit of relating every track to a person or a situation and that song just becomes a beautiful memory. And speaking of memories, there's a track that perfectly captures that feeling. It captures hope, nostalgia, and emotion all at once. This track is by the South Korean global superstars. You all must have guessed it right. This is Yet to Come by BTS.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र

0: और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ।
2: मैं मिसेस रंजीत कौर, इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली ब्रांच की एक वॉलंटियर हूँ। आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर विजेता भी हूँ और पिछले 14 वर्षों से इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली ब्रांच से जुड़ी हुई हूँ। हमारा आज का विषय है साइलेंट स्ट्रगल्स, ब्रेकिंग द टैबूज अराउंड वुमेन्स हेल्थ। हमारे आज के इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं पंचशील फाउंडेशंस। मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली ब्रांच की ओर से पंचशील फाउंडेशंस का आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह अक्सर हमारी बातचीत से गायब रहता है, लेकिन लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है, और वे है साइलेंट स्ट्रगल्स, यानी खामोश संघर्ष। ये वो संघर्ष है जो महिलाएं बिना किसी आवाज को उठाए, बिना किसी शिकायत किए हर दिन झेलते हैं। हमारे समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ मुद्दे जैसे मासिक धर्म यानी पीरियड्स, प्रजनन स्वास्थ्य, यौन संबंध, स्तन स्वास्थ्य इत्यादि आज भी शर्म और चुप्पी से ढके हुए हैं, क्योंकि इन विषयों पर खुलकर बात करना सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण गलत माना जाता है। सरल शब्दों में इन विषयों पर चर्चा करना अस्वीकार्य तथा वर्जित है, मतलब ये सोशली अनएक्सेप्टेबल व्यवहार माना जाता है। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपने शरीर के बारे में बात नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं होती। गर्व सहना सामान्य बात है, और धीरे धीरे उनकी एक आदत बन जाती है और वे कुछ लक्षणों को नजरअंदाज करने लगती हैं, और तब तक उस दर्द को चुपचाप सहती रहती हैं जब तक स्थिति बिगड़ ना जाए। उनकी चुप्पी के पीछे छुपे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पीरियड्स में अत्यधिक दर्द होना, पीरियड्स में अत्यधिक रक्त बहाव होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, पीसीओएस, पीसीओडी, स्तनों में गांठ या परिवर्त, हार्मोनल इम्बैलेंस, गर्भावस्था में आई चुनौतियां जैसे मूड स्विंग्स, डिप्रेशन इत्यादि। लेकिन कभी कभी इन सब चीजों के पीछे छिप जाती है एक गंभीर बीमारी, कैंसर, जो जानलेवा भी हो सकती है। इस चुप्पी के पीछे कई सामाजिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत कारण होते हैं, जैसे पुराने रूढ़िवादी विचारों के कारण बात करने वालों को बेशर्म माना जाता है और इन विषयों पर बात करना बिल्कुल वर्जित है। लड़कियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर में, रसोई में नहीं जाने दिया जाता और उन्हें अशुद्ध मानकर अलग बिठाया जाता है, जिससे उनमें हीनता की भावना पैदा होती है। गर्भपात करवाना चाहे मेडिकल जरूरत हो, हमेशा छुपाया जाता है, नहीं तो उन पर चरित्रहीन होने का टैग लग जाता है। बांझपन होने का दोष भी सिर्फ लड़कियों को ही दिया जाता है। मेनोपॉज के टाइम पे पसीना आना, हॉट फ्लैशेस होना बड़ी नॉर्मल सी बात है,

परंतु ये बताती नहीं है क्योंकि उसके बारे में बात करना अलाउड नहीं है। पीरियड्स के दौरान दर्द को सहकर भी ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं, क्योंकि किसी को पता ही ना चले कि पीरियड्स चल रहे हैं। पैड्स को छुपाकर काले कागजों में छिपाकर रखती हैं और उसके बारे में बताना नहीं चाहती। और इस चुप्पी की कीमत क्या होती है? कीमत होती है बीमारी के आखिरी पड़ाव तक आकर इलाज करवाना शुरू करवाना, जबकि तीर कमान से निकल चुका होता है। महिलाओं के आम कैंसर्स में से

और किसी की जान बचाई जा सकती है, परंतु शर्म और डर के कारण ना तो वो खुद चेक करती हैं और ना अपनी माँ बहन डॉक्टर को दिखाती हैं। और पकड़ तब में आता है जब 4 स्टेज कैंसर हो चुका होता है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर की नियमित जांच जैसे पैप्समियर टेस्ट, एचपीवी डीएनए टेस्ट इत्यादि करवाने से शुरुआती चरण में ही वो पकड़ में आ सकता है। फिर भी सामाजिक झिझक और जानकारी की कमी के कारण ये कैंसर महिलाओं में दूसरे नंबर पर आता है। इन संघर्षों का भावनात्मक असर भी होता है। ये संघर्ष सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन के रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं और महिलाएं इस दर्द को भी चुपचाप सह जाती हैं। तो अब तक हमने जाना कि इस चुपचाप संघर्ष के कारण क्या है। नंबर 1, समाज में लज्जा और शर्म की सोच। नंबर 2, सही शिक्षा और जागरूकता की कमी। नंबर 3, फैमिली और समाज की सपोर्ट की कमी। 4, औरतों को और उनकी आवाज को महत्व न मिलना। लेकिन हमें एक सच्चाई समझनी होगी, स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए इस चुप्पी को तोड़ना होगा। महिलाएं स्वस्थ होंगी तो उनके परिवार भी स्वस्थ होंगे। इसलिए इस खामोशी को तोड़ने की शुरुआत जागरूकता से करनी होगी। महिलाओं को के लिए अपने शरीर को समझना, लक्षणों को पहचानना और समय रहते मदद लेना बेहद जरूरी है। उन्हें ये समझना होगा कि पीरियड्स, प्रजनन, मीनोपॉज इत्यादि नेचुरल प्रक्रियाएं हैं और ये कोई शर्म की बात नहीं है। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां माँ और बेटी खुलकर स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकें, नियमित जांच को सामान्य माना जाए ना कि डरावना। इसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। सर्वप्रथम परिवार और मित्रों को उन्हें सपोर्ट देनी होगी। मीडिया को भी जागरूकता फैलाने की भूमिका निभानी होगी। स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन के सही तरीके शामिल करने होंगे। मिथ्स को खत्म करके महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हर बातचीत, हर जागरूकता, हर समर्थन हमें इस चुप्पी को तोड़ने की के एक कदम करीब ले जाता है और लाखों महिलाओं के जीवन प्रदान किया जा सकता है। हमें ये सोच बदलनी होगी कि मजबूत होना चुप रहना नहीं है। मजबूत होना मतलब है चुप्पी तोड़ना, मदद मांगना और एक दूसरे का सहारा बनना। आइए शर्म और टैबू जैसे शब्दों की जगह जागरूकता और देखभाल को अपनाएं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन कैंसर सोसाइटी लोगों में कैंसर्स में जागरूकता तो फैलाने का कार्य करता ही है। कैंसर पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स को इमोशनल सपोर्ट देने और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य भी करता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक कैंसर डिटेक्शन सेंटर भी है जहां सभी लोग अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। आजकल ये सेवा निःशुल्क हो रही है। यहाँ का एड्रेस है 4243 बाबर रोड, बंगाली मार्केट, न्यू दिल्ली। यहाँ का समय प्रति सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक होता है। हर शुक्रवार हमारा एक प्रोग्राम
जूम और यूट्यूब पर।

0: फ्राइडेज विद श्रेनिक भी होता है, उससे जुड़िए, आप बहुत जागरूक होइए। इंडियन कैंसर सोसाइटी की अपनी एक ऐप भी है, राइज अगेंस्ट कैंसर। इसे लोड करें अपने अपने फोन्स में और कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में भी जानें। अंत में मैं इतना कहूंगी, कोई भी महिला खामोश संघर्ष ना करे, खुलकर बोले और स्वास्थ्य में सशक्त बने। आओ मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां खामोशी की जगह संवाद हो, डर की जगह ज्ञान हो और भेदभाव की जगह सहानुभूति हो। थैंक्स।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी हाँ दोस्तों, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक गुरुवार से रविवार आप सुनते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मेरा वाला नहीं, आप वाला सॉन्ग। बहरहाल आप अपनी फरमाइश हमें इसमें भेजते हैं और हम उन फरमाइशों को प्ले करते हैं। जैसे कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं, पहली फरमाइश जिसे भेजी है किसने अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले नंबर बता देता हूं। 9868107070 हमारा जी हाँ व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं, 9868107070। और पहला गीत है तुम बिन फिल्म का तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, और इसकी फरमाइश हमें भेजी है पंकज ने अमरावती महाराष्ट्र से।

जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिल से भी यही निकल रहा है मोहब्बत मोहब्बत, आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं गीतों के माध्यम से, तो आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा नंबर, जिस पर आप अपनी फरमाइश हमें गीत के बोल लिखकर भेज सकते हैं और बता सकते हैं किसको आप ये गीत समर्पित कर रहे हैं। जैसे कि अगला गीत जो समर्पित किया है वो है मनमोहन सिंह ने, यूपी रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गांव से, और ये अपनी बीवी सोनम को एक गीत समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर जी ये गीत बजा दीजिए मेरी बीवी के लिए। तो ये रहा मनमोहन जी आपकी दिल से निकलती हुई आवाज से, वो सदा आपकी पत्नी के लिए, सोनम जी के लिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
9: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
8: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
9: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
10: जी हाँ, अगर आप भी अपनी फरमाइश के गीत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं 9868

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, जो चलता है एक बजे से दो बजे तक। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। और अगली गीत की फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है मनिका प्रधान ने नामची सिक्किम से, और ये सुनना चाहती है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मूवी से तुम आए तो हवाओं में। अगर दोस्तों आप भी इनकी तरह अपनी फरमाइश हमें भेजना चाहते हैं तो 9868107070 पर आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग।

और दोस्तों आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में अब हम फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं किशन वजनानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से इन्होंने भेजी हमें ये फरमाइश और ये गीत है किस फिल्म का, ये मैंने दिल तुझको दिया थोड़ा सा प्यार हुआ है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ दोस्तों, दिल से यही आवाज निकल रही है कंचन की, सोनिया विहार दिल्ली से, जो उनके साथ हैं श्वेता यश भी हैं और ये सुनना चाहती हैं, ये फिल्म है दिल है तुम्हारा का, ये गीत कसम खा के गाओ। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है।

जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो दिल खोल कर बताइए कि कितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, और जब रिश्ते मजबूत होंगे तो आप लोग प्यार से रहेंगे और ईश्वर को भी धन्यवाद देंगे, और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला है ना, जब साथ होता है ना तो बस सारी मुश्किलें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और यही गीत है सिर्फ तुम का, सुनना चाहते हैं, बहुत दूर से रिक्वेस्ट किया है, नॉर्थ ईस्ट आसाम से, नागालैंड बॉर्डर से, सुनील फांगचो ने। तो ये रहा गीत उनकी फरमाइश का, आकाशवाणी FM रेनबो पर। मैं हूं ऐसा और यानी संतोष राव।

0: जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला सबके साथ रहे, यही दुआ हम मांगते हैं। और आज का आखिरी गीत हम प्ले करने जा रहे हैं, और ये इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है रायबरेली से रंजीत मस्ताना ने। तो आप आनंद लीजिए इस गीत का, और इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, क्योंकि बहुत प्यारा प्रोग्राम आने वाला है। शालिनी लेकर आ रही है, तो आप जरूर सुनिएगा।
1: मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छूलूंगी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड वेलकम टू आकाशवाणी रेनबो 102.6। यू आर विथ मी शालिनी और आशियाना। वेल डियर्स, सेंसस 2027 इज द टॉक ऑफ द टाउन, कंट्री एंड आकाशवाणी रेनबो एज वेल। व्हाई? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए अब से कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले हमने इस टॉपिक पर बात करी थी और आज एक बार फिर से कुछ अपडेट्स के साथ एक बार फिर से यहां पर हाजिर हैं। And to guide us on the same, we have three special guests here. सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं, चैतन्य प्रसाद, IAS, DM and Principal Census Officer, District South West. आपका स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ हैं रंजना देसवाल, IAS, DM and Principal Census Officer, District Central. और साथ में हैं रेजी बी, Deputy Director, Directorate of Census Operations, Delhi. आपका इस कड़कती धूप, कड़कती गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल स्वागत है, क्योंकि मुझे लगता है वार्म वेलकम तो काम नहीं करेगा।
2: नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच।
3: नमस्कार
1: जी। तो कहाँ से शुरुआत करें? मुझे लगता है कि एक ब्रीफ से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी इस टॉपिक पर चर्चा की है, तो थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए हमें कि किस तरह ये पूरा प्रोसेस है और कितना टाइम लगने वाला है और कब से इसकी शुरुआत हुई। जो लोग पहले नहीं सुन पाए वो अब सुन पाएंगे जी।
4: जो सेंसस का फर्स्ट फेज है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, सेंसस दो फेज में किया जाता है। जो फर्स्ट फेज है अभी जो चल रहा है एनडीएमसी एरिया में, अभी जो चल रहा है, सेकंड फेज है पूरा देश में एक ही महीने में चलता है, दैट इज द मंथ ऑफ फरवरी 2027 में किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज है जो मकान सूचीकरण का फेज होता है
1: जी।
4: तो मकान सूचीकरण में इम्पोर्टेंट है, हमने 33 क्वेश्चन पूछे जाएगा। बेसिकली सारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाउस, जो हाउस का जो फ्लोर हो गया, वॉल हो गया, ये सारा चीज है इसका रिगार्डिंग है। हाउस होल्ड अमिनिटीज है, हाउस होल्ड असेट्स है, इसका रिगार्डिंग पूछा जाएगा। इसमें ब्रॉड कैटेगरीज है, एससी एसटी और अदर्स है, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएगा।
1: ठीक है।
4: तो अभी हमारा जो एमसीडी एरिया है, जो नई दिल्ली, सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें जो 12 डिस्ट्रिक्टों में अभी एक जो फर्स्ट फेज एचएलओ फेज का काम चली रहे, तो ये काम है 14 जून तक चले जाए, खत्म हो जाएगा। उससे पहले हमको ये सारा जो दिल्ली का 12 डिस्ट्रिक्ट का सभी घरों का मकान सूचीकरण का काम कंप्लीट करना है।
1: ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी अब रंजना जी कि ये सारा फेज जो है, जो फर्स्ट फेज है हमारा, वो सभी स्टेट्स के लिए उसकी ड्यूरेशन सेम है या अलग अलग टाइम है उसके लिए?
3: ये सभी के लिए
1: स्टेट्स और यूटीज की भी बात करें,
3: वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली। तो हमारे यहाँ पे ये 16 मई से लेके 14 जून तक है। अभी एनुमरेटर्स हाउस टू हाउस जा रहे हैं और वो सभी का ये सेंसस डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो
1: है।
3: मेरा तो अनुरोध है पब्लिक से थ्रू योर दिस मीडियम कि सब पार्टिसिपेट करें इसमें। ये बहुत जरूरी है इसको बताना कि पॉलिसी मेकिंग के लिए ये सबसे एक आवश्यक टूल है हमारे लिए। सो एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट इन इट होल हार्टेडली। जो एन्यूमरेटर्स हैं दे आर ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सो आईडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ही इज ऑल्सो डूइंग एडिशनल ड्यूटी। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, अपना पूरा दिन गवर्नमेंट ड्यूटी करके उसके बाद आता है आपके घर में। सो वी आर गेटिंग कंप्लेन्ट्स दैट पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग। सो आई रिक्वेस्ट अगेन, सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि सब इसमें पार्टिसिपेट करें
1: जी।
3: और इसकी आवश्यकता का तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन टाइम एंड अगेन टोल्ड टू पीपल कि क्यों हम ये सब कर रहे हैं। सारी जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं, आपको

0: सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए,
1: जी
0: वो सब इसी के थ्रू होता है.
1: देन
0: वी कम टू दिस डेटा.
1: जी जी जी. और थोड़ी सी डांट लगाइए, बिल्कुल बहुत जरूरी है. मुझे लगता है कभी कभी डांटना भी हमारे लिए फायदेमंद होता है. जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: जो पब्लिक का कोऑपरेशन है बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज ये पब्लिक का कोऑपरेशन का बिना ये काम पूरी नहीं हो पाएगा. तो जो हमारा ये कहना है, जो दिल्ली में भी कई जगह से हमारे को ये खबर मिला हुआ है, कई जो मकान मालिक है अपना टेनेंट का गिनती करना जो आवश्यक नहीं समझ रहे, तो लेकिन सेंसस का जो डेफिनेशन है, सेंसस का जो प्रक्रिया है, उसी हिसाब से जो टेनेंट्स है उसको अगर सामान्य तरफ से दिल्ली में रहने वाले टेनेंट्स है उनको अवश्य उनको इसमें सेंसस में गिनती करवाना जरूरी है.
1: जी,
2: तो कई स्टेट में भी जो कई स्टेट से जो माइग्रेंट वर्कर्स है दे एक्चुअली वो लोग भी ये समझ रहे हैं हम अपना स्टेट में अपना गिनती करवाने के प्रयास कर रहे हैं, बट जो हमारा जो सेंसस का जो जो डेफिनेशन के हिसाब से जो जिस स्थल पे वो रहता है सामान्य रूप से रहता है उस जगह पे उनका गिनती करना जरूरी होता है. सो ये सारा चीज है जो अगर टेनेंट्स जो मकान मालिक हो गया या किरायेदार हो गया, ये दोनों अपना तरफ से इसको अच्छी तरह समझ के पूरी तरह से कोऑपरेशन देने का सहयोग करने का अनुरोध करूं.
1: जी, मेरे पास इससे रिलेटेड और भी सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिसनर्स से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके कोई सवाल है सेंसस 2027 को लेकर तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं. 9868107070 है नंबर, 9868107070. कार्यक्रम चल रहा है आशियाना और हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 की. जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी रंजना जी कि ये सारा जो प्रोसेस है, लोगों को लगता है कि ठीक है अगर झूठी इन्फॉर्मेशन दे देंगे या कुछ भी चलेगा, नहीं देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ऐसा है? उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है ताकि लोग झूठ ना बोल पाए, गलत इन्फॉर्मेशन ना दे पाए?
0: सबको एक सत्य बोलना चाहिए.
1: जी.
0: ये तो सभी शुरू से सिखाया जाता है. तो इसमें तो यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, सो देर आर पेनल्टीज अंडर द एक्ट. अगर सेक्शन 8 में आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारे एन्यूमरेटर्स को देना कंपलसरी है,
1: राइट,
0: और सेक्शन 11 में इसका सेक्शन 11 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 में ये प्रावधान है कि अगर आप गलत जानकारी देंगे और तो हम उसमें आपको पनिशमेंट कर सकते हैं, 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, एंड इन एज अ फर्स्ट पनिशमेंट 1000 रुपीज इमीडिएटली फाइन करेंगे.
1: जी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी रेजी जी कि ये सारे जो टाइमिंग है पोर्टल की, पोर्टल सबमिशन फॉर्म सबमिशन की जो टाइमिंग है वो सुबह से लेकर शाम तक रात तक कितने बजे तक है और क्या प्रोसीजर है सीक्वेंस में, अगर थोड़ा सा आप हमें समझा पाए तो?
2: देखिए, इसमें पोर्टल में जो हमारा पूरा डिजिटल सेंसस हो रहा है, पूरा दिल्ली में भी हम डिजिटल तरीके से ही सेंसस करवा रहे हैं, तो उसमें जो एन्यूमरेटर है अपना मोबाइल ऐप के सहारे पे अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद जो वो जो अपना अगर इंटरनेट का अवेलेबिलिटी के हिसाब से हर 5 घर 5 घर 10 घर के बाद वो सिंक कर सकता है. जैसे सिंक करेगा हमारा डाटा सर्वर पे सीधा चला जाएगा.
1: जी.
2: तो सिंक करने का आवश्यकता ये भी है, अगर मोबाइल में बाद में कुछ तकनीकी खराब हो गया या लॉस्ट हो गया तो हमारा डाटा सर्वर में सेव रहेगा.
1: जी.
2: तो इसलिए सभी एन्यूमरेटर है को उनको डायरेक्शन दिया गया है जो एवरी 5 घर 10 घर है उसके बाद सिंक करते रहेंगे एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी.
1: बिल्कुल.
2: तो इसमें कोई भी टाइम में वो सिंक कर सकते हैं, 24 आवर्स के लिए सर्वर रनिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी वो सिंक कर सकते हैं अपना.
1: ठीक है चैतन्य जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी कि बात यहाँ पर इंटरनेट और डिजिटल हो रही है सारी बातें, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए इंटरनेट, ये जो पोर्टल है सारा, ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है क्या?
3: मैम, ये ना एक ऐप है, ऐप में एक्चुअली फर्स्टली व्हेन एवर द एन्यूमरेटर्स दे गो होम, माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज फॉर ऑल द पीपल, सी इट्स वेरी सनी डे,
1: बहुत ज्यादा गर्मी
3: है, एंड लू चल रहा है, फर्स्टली टू वेलकम देम बिकॉज वी नीड टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स दैट दे आर डूइंग. जिन लोग सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिया वो बस सेल्फ एन्यूमरेशन की आईडी देने पे हो जाएगी मैम, वो आईडी में बाद में एन्यूमरेटर अपने लॉगिन से वो आईडी डाल के वो चेक करेंगे. पहले फेज में हमारा सिर्फ हाउस लिस्टिंग का ही काम चल रहा है,
1: ठीक है,
3: मतलब घर का मतलब बेसिक कंडीशन कैसा है, मतलब हमारा हाउ इज द सीवरेज सिस्टम, पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कैसा है, छत कैसा है, वेदर इट इज थ्रैश्ड और दीज थिंग्स ना,

0: सो ये ऐप से ही काम चलेगा, पांच पांच बार, एज डॉक्टर रेजी हैज इन्फॉर्म्ड, पांच बार, आई मीन लाइक ना, अगर हर पांच घर में वी आर एंकरेजिंग द एन्यूमरेटर्स टू सिंक द डेटा, जब सिंक कर रहे हैं उस वक्त इंटरनेट की जरूरत होगी, सो दैट दैट विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल,
1: नॉट ऑल द टाइम,
0: नॉट ऑल द टाइम.
1: राइट. रंजना जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जो एचएलओ मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, वो मोबाइल में जैसा काम करती है, सेम डेस्कटॉप में भी एप्लीकेशन ये वैसा ही काम करती है हमारी ऐप?
2: ऐप तो दोनों जगह काम करेगी,
1: दोनों जगह सेम काम
2: yes,
1: करेगी.
2: इट्स अ टेक्नोलॉजिकल ऐप, बट सिंस एन्यूमरेटर्स आर मूविंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो इसीलिए ये मोबाइल ऐप बनाई. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग अ डिजिटल सेंसस.
1: राइट.
2: एवरीथिंग इज रियल टाइम एंड इट्स बीइंग स्टोर्ड एंड कलेक्टेड डिजिटली, सो द इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल रेडिली.
1: And what about people who are not comfortable with this thing, internet or digital thing?
2: See, self-enumeration drive एक चलाया था पहले, एक महीना पहले, जिसमें बहुत सारे लोगों ने very encouraging figures, लोगों ने अपना डेटा उसमें फीड कर दिया ऐप में.
1: राइट.
2: उससे हमें क्या सुविधा हुई कि हम जब एन्यूमरेटर जा रहा है वहां पे, वो अपना कोड बताएंगे, इसमें जो सेल्फ एन्यूमरेशन कोड उनको मिला अपना डेटा भरने के बाद में, जिस जिसने भर दिया
1: जी,
2: तो उससे वो इन्फॉर्मेशन उसको क्रॉस चेक करेंगे और वो जल्दी हो जाएगा काम.
1: ठीक है.
2: अदरवाइज जिसने नहीं भर पाए हैं वो एन्यूमरेटर्स अब अपना काम कर ही रहे हैं.
1: जी. रेजी जी, अगर मान लीजिए ये फॉर्म फिल करने के बाद जो उनको आईडी मिलती है, जिसे आप SEID कहते हैं, वो किस तरह से मिलती है? दो तरह से मिलती है मुझे लगता है, शायद एक मैसेज के थ्रू मिलती है, किस तरह से?
3: ईमेल के थ्रू मिलता है, एक मैसेज के थ्रू मिलता है.
1: राइट.
3: तो इवन उनका जो एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग द टाइम, वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाता है उनका, वो फोटो ले सकता है. तो इसके अलावा तो वो लोग दो तरीके से मिल जाएगा, एक ईमेल पे मिल जाएगा, एक SMS के तरीके से मिल जाएगा.
1: ठीक है. और मान लीजिए अगर मिस कर दिया है किसी ने किसी वजह,
3: तो मिस कर दिया तो भी उन्होंने दोबारा पोर्टल में जाके अपना मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करके लॉग इन करेगा तो उससे SEID मिल जाएगा.
1: ऑलराइट. कमिंग टू यू, आप बताइए चैतन्य जी कि ये मोबाइल जो इन्यूमरेशन है हमारा, सेल्फ इन्यूमरेशन के बाद वहां जब पहुंचते हैं हमारे एन्यूमरेटर्स, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वहां पर विजिट करते हैं घर पर, तो फिर क्या प्रोसेस होता है उसके बाद, क्योंकि वो सारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है?
0: मैम, सबसे पहले घर पहुंचने के बाद एन्यूमरेटर ये पूछते हैं कि आपके सेल्फ एन्यूमरेशन हुआ नहीं हुआ.
1: ठीक है.
0: अगर हो, अगर कोई भी मतलब घर में परिवारजन सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिए, उनके आईडी प्रोवाइड करने पे मतलब वो बस नोट डाउन करके चले जाएंगे एंड बाद में डिटेल्स वेरीफाई कराया जाएगी. एक सवाल हमसे भी ये पूछा गया कि सर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन दिल्ली, सो अगर जिस टाइम हमारा मान लीजिए सेल्फ एन्यूमरेशन हो गई और जिस वक्त एन्यूमरेटर घर पहुंचे, घर लॉक्ड मिले, तब कैसे करना है? देन वी हैव गिवन अ सजेशन, मैम आप पुराने सी इन द 90s हाउ इट हैपेंस, अगर जब भी कोई वैक्सीनेशन के लिए कुछ आते हैं विद पेंसिल दे यूज्ड टू राइट इट ऑन द डोर एंड दे यूज्ड टू गो. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग रादर वाज, जो लोग सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिए, एक छोटा सा ना दरवाजे पे चिपका के चले जाइए, ताकि अगर जब भी एन्यूमरेटर आएंगे हम उनका मदद कर सकते हैं. नहीं तो वरना ये लॉक्ड की तरह दिखा के एन्यूमरेटर को फिर से यही गर्मी में वापस विजिट करना पड़ेगा, विच कैन बी अवॉइडेड.
1: ठीक है. और अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी रंजना जी, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिसनर से बताना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं सेंसस 2027 को लेकर, तो आशियाना जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप हमसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं मैसेज के थ्रू 9868107070 पे. आप हमें मैसेज करिए और बताइए आपका जो भी सवाल हो. चलिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो CMMS, जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है सेंसस का, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, वो किस तरह से काम करता है?
2: ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस के साइट में मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है. तो इसमें जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एन्यूमरेटर्स का, एन्यूमरेटर्स जो जा के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जो सेल्फ एन्यूमरेशन का डेटा है, वो सारा इसमें अवेलेबल है हमारे पास में. एंड वी आर एबल टू सी कि कितने लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है या किस किसका डेटा हमारे पास आ गया है.
1: ठीक है.
2: So this will then form the mother data for all other whatever policies we are going to make.
1: ठीक है. तो ये जो सेंटर है सारी सारी चीजों का, जहां पर सारा डेटा कलेक्ट होता है. ठीक है. और भी बातें हैं हमारे पास करने के लिए, और सेंसस 2027 से लेकर सारे सवाल हमारे पास, हम जानेंगे. आपके अगर कोई सवाल हैं उसके जवाब भी हमारे पास यहां मिलेंगे, हमारे गेस्ट आपको उसका जवाब देंगे. बात कर रहे हैं हम सेंसस 2027 की आशियाना में, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर. आप हैं मेरे साथ शालिनी, और हमारे साथ तीन स्पेशल गेस्ट हैं आज. चैतन्य प्रसाद है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, और साथ में है रंजना देसवाल, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस

Compliance Officer, District Central, and Reggie B, Deputy Director, Directorate of Census Operations, Delhi. ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: My dears, you are on Akashwani Rainbow 102.6 with me, Shalini, on Ashiana. We are talking about Census 2027. जी, और हमारे साथ यहाँ पर आज तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं. चैतन्य प्रसाद है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट. साथ में है रंजना देसवाल, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, एंड RGP डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली. हमने अभी बहुत सारी बातें की और इससे पहले हम और चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपने लिसनर से कहना चाहूंगी, अगर आपके कोई भी सवाल हैं सेंसस से जुड़े हुए, जनगणना से जुड़े हुए 2027 की, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं. 9868107070 है नंबर, 9868107070. जी रेजी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सारा जो डेटा है जो कलेक्ट हो रहा है, अगर पब्लिक उसका एक्सेस चाहे तो किस तरह से ले सकती है?
1: मैडम, पहली बात है, आपको बताना चाहता है सेंसस एक्ट के अंतर्गत इंडिविजुअल डाटा का एक्सेस किसी को नहीं दिया जाएगा. इवन सेंसस एक्ट ये इंश्योर करता है जो इंडिविजुअल डाटा है, किसी भी इंडिविजुअल डाटा है, हम किसी को शेयर नहीं करेंगे. इवन द कोर्ट जो इंडियन एविडेंस का उसके अंदर भी मांगेगा तो हम उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. बिकॉज सेंसस एक्ट उसका प्रोटेक्शन दे रहा है, पब्लिक को अश्योरेंस दे रहा है, इस भरोसे पे हम जो ठीक तरीके से डाटा कलेक्ट कर पाए. लेकिन इसका एग्रीगेट जो फॉर्म है, मतलब टोटल कितना मेल्स है, टोटल कितना फीमेल्स है, कितना घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, कितना घर पे टॉयलेट फैसिलिटीज है, दिस जो टेबल्स है, हम स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्म है, हम उसको पब्लिश करेंगे. ये हमारा पॉलिसी प्लानिंग पर्पस के लिए, कई तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गया, ये अपना पॉलिसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है.
0: ठीक है चैतन्य जी, आप बताएं कि क्या, क्योंकि हर कोई इससे अवेयर नहीं है, बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट का यूज थोड़ा जानते हैं थोड़ा नहीं जानते हैं, रूरल एरियाज में तो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए इसको एक्सेस कर पाना. तो क्या अगर वो जानना चाहें तो कोई ट्यूटोरियल या कोई एक्सप्लेनर वीडियो अवेलेबल है साइट पर हमारे सेंसस?
2: यस मैम, हम काफी सारे IEC प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आई मीन लोग तक पहुंचाने के लिए. एक तो इन्यूमरेटर आपके घर पे आ रहे हैं, मेनली ये जो इंटरनेट की एंड ये टेक्नोलॉजिकल यूज की सवाल आई है, दैट इज मोर एट द एंड ऑफ एन्यूमरेटर्स. उनके लिए हम एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दिया गया है, एंड वी आर ऑल्सो चूजिंग एन्यूमरेटर्स ऑन द बेस ऑफ देयर स्किल फ्रॉम द पूल दैट इज गिवन.
0: ठीक है,
2: बाकी लोगों को हम रिजर्व में रखे हुए, एंड मेनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजन्स, जिनका मतलब टेक्नोलॉजिकली दे आर कंफर्टेबल, वी हैव एंकरेज देम रादर टू फिल द ऑप्शन थ्रू सेल्फ एन्यूमरेशन. जिनका नहीं है, आई मीन एन्यूमरेटर वैसे ही उनके घर तक आएंगे,
0: उस टाइम बस
2: थ्रू वर्बली मतलब इन्फॉर्मेशन पूछ के बताएंगे. बट इसमें दोनों तरफ की है, एक जो एन्यूमरेटर जो सवाल पूछ रहे हैं उनका सही जवाब सिटीजन्स को देना है, एट द सेम टाइम जो सिटीजन्स जो भी जवाब दे रहे हैं एन्यूमरेटर को भी वो सही तरह से ही फिल करना है.
0: नहीं तो
2: ऑन बोथ द वेज.
0: हम यूजुअली सिटीजन को
2: आई मीन लाइक ना कि वी पुट द ओनस ऑन देम, बट द ओनस इज आल्सो ऑन द एन्यूमरेटर्स, जो बोले वही लिखे, कुछ अपने हिसाब से ना लिखे.
0: ट्रू. आपसे पूछना चाहूंगी मैं रंजना जी, क्या सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई टोल फ्री नंबर है जिस पर अगर कोई कंप्लेंट हो या कोई किसी तरह की क्वेरी हो आप बताएं, या आप कोई भी बता सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है. जी,
1: टोल फ्री नंबर 1855 इज द नंबर. सो वो कोई भी लोकेशन से वो डायल करेगा तो वो लोकेशन से जो यू आर रेफरेंसिंग किया हुआ है उस पर्टिकुलर स्टेट का DCO मतलब डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन का कॉल सेंटर में वो कॉल पहुंच जाएगा, उधर से पब्लिक रिलेटेड कोई भी जो सवाल का जवाब मिल जाएगा.
0: ठीक है, और क्या कोई वेबसाइट है, लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है डिटेल में, बताएं हमें कि क्या वेबसाइट है.

0: उसको वो वहां पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं और सारी डिटेल्स किस तरह से प्रोसेस शुरू होगा?
1: मैडम पब्लिक के लिए कोई ऐसा वेबसाइट है जो लॉगिन करने का सुविधा नहीं है, बट एक्चुअली सेंसस इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन है हमारे जो जो जो ओ आर जी का ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल इंडिया का वेबसाइट है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा है हमारा सी एम एम एस पोर्टल का एड्रेस यही है, सेंसस डॉट जी ओ वी डॉट इन है,
0: जी
1: ये इसी पे मिल जाएगा। सेल्फ एन्यूमरेशन का जोड़ा हुआ सारा जानकारी है sc.census.gov.in है,
0: जी
1: उसमें मिल जाएगा।
0: चलिए बहुत शुक्रिया, आगे हम जारी रखेंगे अपनी चर्चा को, लेकिन उससे पहले यहां पर अपने लिसनर से कहना चाहेंगे कोई भी सवाल हो तो हम तक भेज दीजिए आप। 9868107070 है हमारा नंबर और मेरा नाम है शालिनी। यहां पर जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आते हैं लौटकर करेंगे ढेर सारी चर्चा। और आपको बता दें कि हमारे साथ तीन खास मेहमान है आज स्टूडियो में बात करने के लिए सेंसस 2027 को लेकर, यानी कि जनगणना 2027 को लेकर। हमारे गेस्ट के नाम है चैतन्य प्रसाद, है हमारे साथ आईएएस डीएम एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, साथ में है रंजना देसवाल आईएएस डीएम एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और साथ में है रीजी बी डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं एक बार फिर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Welcome back, dears. You are on Akashvani Rainbow 102.6 with me, Shalini. Your show चल रहा है आशियाना. आशियाना में आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 को लेकर, यानी कि जनगणना 2027 को लेकर, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, काफी पहले हो चुकी है, और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में वक्त लगेगा और बहुत सारी मेहनत लगने वाली है, और आपका सहयोग भी हमें इसमें चाहिए. हमारे साथ यहां इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे तीन खास मेहमान. चैतन्य प्रसाद हैं, साथ में IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, और साथ में है रंजना देशवाल, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और साथ में है रेजी पी, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली. आपका एक बार फिर से स्वागत है. आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को. मैं आपसे पूछना चाहूंगी चैतन्य जी कि मान लीजिए किसी ने 15 डे की जो हमारी ये सेल्फ एन्यूमरेशन की जो विंडो है उसको वो नहीं कंप्लीट कर पाए उस प्रोसेस को, तो फिर क्या उनके लिए ऑप्शन है?
1: मैम, उनके लिए जो एन्यूमरेटर्स एनलिस्टेड हाउसिंग ब्लॉक्स का, वो आप उनके घर विजिट करेंगे, वही सवाल जो भी हाउसिंग के बारे में है वो पूछे जाएंगे, एंड उनसे पर्सनली मिलके वो शीट फिल की जाएगी. एंड अगर हाउस लॉक मिला तो 3 बार विजिट होगी.
0: ठीक है,
1: तो सारे सिटीजन को ये भी ध्यान रखना है कि मतलब एन्यूमरेटर उनके घर आएंगे.
0: जी, मैं इससे जुड़ा एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो हाउस लॉक वाली सिचुएशन है ये हो ही ना, इसको अवॉइड करने के लिए क्या कुछ है हमारे पास ऐसा रास्ता?
1: यूजुअली वी आर एनकरेजिंग द एन्यूमरेटर्स टू स्टार्ट द वर्क अर्ली इन द डे टाइम, वन टू आई मीन टू रीच द पीपल, ताकि लोग तक पहुंचे, एंड दूसरा टू बीट द हीट वेव ऑल्सो.
0: ठीक है,
1: एंड डू इट इन समटाइम लेट इन द इवनिंग एंड यूटिलाइज द वीकेंड्स फॉर दिस पर्पस.

0: फाइन, लेकिन क्या कोई नोटिफिकेशन उससे पहले भेजा जा सकता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि एन्यूमरेटर्स आने वाले हैं हमारे घर पे, तो हमें जाना नहीं चाहिए?
1: मोस्टली एन्यूमरेटर्स मैम वी हैव चूजन फ्रॉम लोकली ओनली,
0: अच्छा, ओके,
1: तो दे आर डेजिग्नेटिंग सम आई मीन डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स ओनली जिस
0: जी.
1: तरह से, बिकॉज यूजुअली उधर का ही टीचर्स, स्कूल के टीचर्स ना आई मीन जो
0: जी,
1: इलाके में रहते हैं
0: हैट्स
1: वही
0: ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ
1: वही
0: टू देम,
1: एन्यूमरेटर की काम कर रहे हैं.
0: राइट.
1: सो सम वे मैकेनिज्म इज डिजाइंड एट लोकल लेवल ओनली टू लेट नो द पीपल और द आई मीन इन चार्ज ऑफ RWA. वी आर एंकरेजिंग टू यूटिलाइज दोज मीन्स रादर देन सेंट्रली डिजिग्नेटिंग
0: ठीक
1: समथिंग
0: है,
1: ना विच कैन नॉट बी फीजिबल.
0: ठीक है. रंजना जी, आप बताएं कि अगर किसी तरह का कोई इश्यू आता है सारे प्रोसीजर में, मान लीजिए फॉर्म फिल करते वक्त या एन्यूमरेटर्स वहां पर हैं लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कोई समस्या आ रही है, तो उसकी कहां पर शिकायत कर सकते हैं या अपनी बात कहां तक पहुंचा सकते हैं, कैसे?
2: हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियांस कमिटी बनी हुई है सेंसस के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ADM, और वो वहां आके कंप्लेंट कर सकते हैं कि अपना जो भी कोई इश्यू है.
0: ठीक है. रेजी जी, आप बताएं कि इतनी सारी अलग अलग, हमारा जो देश है वो भाषाई विविधता और बहुत तरह की विविधताओं से जो भरा हुआ है, तो ये खूबसूरती भी है, लेकिन कई बार जब फील्ड वर्क किया जाता है और इतने बड़े लेवल पर किया जाता है तो बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं इसको लेकर, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस तो सबको नहीं आती हैं, तो इसको कैसे टैकल करते हैं?
3: मैडम, ये ओल्ड इंडिया में हमारा जो सेंसस है अलग अलग लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है उसी पे किया जाएगा. तो
0: ठीक है.
3: जो हमने जो मोबाइल ऐप डिसेंड किया है वो सारा लैंग्वेज में, अराउंड 16 लैंग्वेज में इसमें डिसेंड किया हुआ है. तो इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उतना ही लैंग्वेज में प्रिंट हो जाता है, इवन जो ये सारा चीज से देखते हुए, बिकॉज ये जो मास ऑल इंडिया ऑपरेशन है, पान इंडिया ऑपरेशन है, इसको लैंग्वेज को ध्यान रखना बहुत ही जो आवश्यक है. बिकॉज पान इंडिया ऑपरेशन में जो लोकल पीपल को अगर जो आम जनता से डेटा इकट्ठा करना है
0: जी,
3: तो उसको लोकल लैंग्वेज का यूज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है.
0: ठीक है,
3: इसीलिए सेंसस में ये जो हर रीजन का लोकल लैंग्वेज को प्रावधान दिया जाए.
0: ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है. और एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी चैतन्य जी, कि NRIs के केस में, क्योंकि यहाँ के सिटीजन हैं और बाहर भी उन्होंने सिटीजनशिप ली हुई होती है, या किसी पर्पज से काम को लेकर या किसी और सिलसिले में वो कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए बाहर विदेशों में रह रहे हैं जाकर, या विदेश से कोई यहां भारत में आकर रह रहा है कुछ समय के लिए, उसको किस तरह से काउंट किया जाएगा सेंसस में?
1: मैम, अभी जो फेज चल रही है वो बस हाउस लिस्टिंग का फेज है, तो ये 1 महीना चलेगी.
0: ठीक
1: उनके
0: है,
1: बाद ये सारे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन दैट विल बी इन द सेकेंड फेज इन द
0: ठीक है,
1: नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन द ईयर February 2027.
0: ठीक है,
1: हाँ,
0: ठीक
1: उस
0: है,
1: वक्त ये सारा देखा जाएगा. रिजी जी, आप इस पे ज्यादा
3: यस
1: बता
0: जी,
1: सकते
0: जी
1: हैं.
0: बताएं.
3: एक्चुअली सेंसस में सिटीजनशिप का कोई जो क्राइटेरिया है ही नहीं है,
0: ठीक है,
3: जो कई लोग पब्लिक का भी फियर आम लोग तक पहुंचा हुआ है.
0: हुँ.
3: तो पब्लिक का फियर यही है, वोटर आईडी कार्ड जो वोटरशिप है वो लूज हो जाएगा सेंसस में, नाम नहीं आएगा, ऐसा इस तरीके से है. बट ऐसा कुछ इसमें इंटरलिंक कनेक्शन नहीं है.
0: ठीक है,
3: तो इसमें क्या है, कोई भी इंडिया में अगर फॉरनर्स है उसका अगर उनको डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं है
0: ठीक
3: तो
0: है,
3: वी हैव टू काउंट दम हियर. अगर
0: हुँ.
3: हमारा जो नागरिक है वो जो भी है वो फॉरेन कंट्री में रहता है
0: हुँ.
3: उनका अभी जो सेंसस में गिनती नहीं होता है, तो
0: ठीक
3: इस
0: है.
3: हिसाब से है.
0: रंजना जी, आप माइग्रेंट पॉपुलेशन को हम कैसे डील करेंगे यहां पर? उनके अंदर काफी तरह के, अलग अलग तरह के भय, मिथ्स, जो भी कह लें आप, होते हैं, तो उन क्या उनके जो वहम है उन्हें दूर करें थोड़ा सा.
2: सो सेंसस इज बेसिकली फॉर द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ अ प्लेस, चाहे आप टेनेंट रहें या आप हाउस ओनर हैं. जो मूलतः जितनी ज्यादातर समय जहां आप बिता रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वहां पे आपका सेंसस किया जा रहा है. सो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन, इफ यू आर सेइंग, इनफैक्ट इन दिल्ली वी हैव 5 लाख पीपल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली NCR एवरी डे फॉर वर्क. सो दे आर रिजाइडिंग इन NCR, वहां पे उनकी सेंसस एक्टिविटीज होंगी.
0: ठीक
2: और
0: है.
2: जो हमारे यहाँ लोग रह रहे हैं और ज्यादातर यहाँ रहते हैं और छुट्टियां बिताने बाहर जाते हैं 3 महीने के लिए,
0: जी
2: उनका भी सेंसस यही होगा.
0: जी बिल्कुल. चलिए, बहुत देर से हम यहाँ पर चर्चा करें, मुझे लगता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो गया, ले लेना चाहिए हमें. आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं आशियाना, मैं हूं आपके साथ शालिनी, और मेरे साथ यहां पर 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं. हम चर्चा कर रहे हैं सेंसस 2027 को लेकर, यानी कि जनगणना 2027 को लेकर. हमारे साथ हैं चैतन्य प्रसाद, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ, और साथ में है रंजना देसवाल, IASDM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। रेजी बी है

साथ डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। आपके भी कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 9868107070 पर। आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, आपको ही मचाएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: बिल्कुल, इसी रंगीले देश के बहुत सारे तमाम रंगों को समेट कर हम यहाँ पर लाए हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर यू विद मी शालिनी और शो चल रहा है आशियाना। और इन सारे रंगों को मिलाने की जो जद्दोजहद चल रही है ना, वो हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं सेंसेस 2027 में, क्योंकि यहां पर कोशिश है कि आपके विकास को किस तरह से आप तक पहुंचाया जाए, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप जनगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारे साथ यहां पर इस विषय पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं हमारे तीन खास मेहमान। चैतन्य प्रसाद है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, एंड रंजना देसवाल, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। रेजी भी है हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। जी, हमने बात करी अभी NRI और माइग्रेंट पॉपुलेशन की। अब हम आते हैं कि जो भी मान लीजिए कि कोई घर का मुखिया है, जैसे कोई एक ही है जो फॉर्म फिल कर सकता है, ऐसा है क्या? मान लीजिए घर का मुखिया नहीं है वहां पर किसी भी कारण से, तो कौन ऐसा शख्स है जो उसके बाद फॉर्म फिल कर सकता है
1: सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए?
0: जी,
1: तो सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए कोई भी मेंबर है अपना कोई भी मोबाइल नंबर यूज करके रजिस्टर करके अपना फिल कर सकता है। ये जरूरी नहीं है हेड ऑफ द हाउस होल्ड ही ये काम करे, कोई भी जो मैच्योर्ड बंदा है तो वो कर सकता है काम। तो उसमें जो अपना मोबाइल नंबर डाल के, एक मोबाइल नंबर पे एक ही घर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग है, उनका जो लोकेशन है सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर जो सेलेक्ट कर रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर हो गया तो

0: किराया रजिस्टर करेंगे उसका,
1: ठीक
0: मतलब
1: है।
0: रजिस्ट्रेशन मतलब उसका ना मोबाइल नंबर डाल के वो अपना हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, मतलब हाउस जो जो सेंसस हाउस है, दो फिजिकल एंटिटी है, उसमें कौन यूज कर रहा है वो रजिस्टर कर सकता है,
1: इसमें
0: रजिस्टर।
1: डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, लोग बहुत
0: क्यों
1: सारे डर जाते हैं कि हमारी सारी प्रॉपर्टी
0: ना
1: का
0: ना,
1: जो
0: इसमें कोई
1: डिटेल
0: डरने का कोई
1: है
0: जरूरत
1: वो
0: नहीं है।
1: आ रही है जी। आपसे मैं पूछना चाहूंगी चैतन्य जी कि अगर फॉर्म फिल करते हैं और कुछ कमियां रह जाती हैं उसमें फॉर्म फिल करते वक्त, तो क्या बाद में अपडेट की जा सकती हैं ऑनलाइन या
0: ऑनलाइन
1: ऑफलाइन भी?
0: नहीं, ऑनलाइन मैम सारे कॉलम्स फिल करने के बाद ही सबमिट करने का ऑप्शन आता है,
1: ठीक है, मतलब उससे पहले
0: सो
1: आप नहीं आगे
0: उससे
1: बढ़
0: पहले
1: सकते हैं।
0: मतलब आगे बढ़ नहीं सकते।
1: ऑल राइट।
0: एट द सेम टाइम जब इन्यूमरेटर आएंगे, एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ हाउस लिस्टिंग, वो तो बेसिक सवाल ही है एक्चुअली,
1: ठीक है।
0: टॉयलेट है या नहीं, आई मीन लाइक ना आपका पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है नहीं, आपके घर की कंडीशन कैसा है,
1: ठीक है,
0: वो एज सच मतलब पूछ के पता लग जाएगी इन्यूमरेटर को
1: बिल्कुल।
0: भी।
1: आपसे जानना चाहूंगी मैं रंजना जी कि अगर मान लीजिए, हालांकि ऐसा हमें लगता तो नहीं है और ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन अगर कोई जो एन्यूमरेटर है वो मिसबिहेव करते हैं किसी भी कंडीशन में, या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है इस तरह की किसी भी घर में, तो उस केस में क्या किया जाएगा, कैसे टैकल किया जाएगा उसको?
2: एक्चुअली उल्टा देखा गया है कि एन्यूमरेटर्स तो दे आर डूइंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी,
1: यस यस
2: इसलिए दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे आर
1: जी
2: अंडर द एक्ट नॉमिनेटेड टू परफॉर्म दिस ड्यूटी।
1: जी
2: तो मिसबिहेव जो होता है वो पब्लिक की तरफ से होता
1: जी
2: है, बिकॉज
1: मैं माफी
2: उनका
1: चाहूंगी, मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम एक तरफ की बात रखेंगे तो लोगों को क्वेश्चन होता है कि सिर्फ ऐसा पब्लिक ही नहीं करती, ऐसा ऑफिसर्स की तरफ से भी हो सकता है, तो जस्ट इन दैट केस।
2: देन यू कैन कॉल द पुलिस,
1: ओके
2: एंड बिकॉज वी हैव टू कॉल द पुलिस क्योंकि पब्लिक मिसबिहेव कर रही है हमारे एन्यूमरेटर्स के साथ
1: ठीक
2: में,
1: है ठीक है
2: दिन का नींद खराब हो रहा है उनका, इसलिए इवन दो आर एन्यूमरेटर्स आर गोइंग एट 4 PM, लेकिन
1: राइट
2: ये है कि दोपहर की गर्मी वाली जो अभी समर वेकेशंस का नींद खराब हो रहा है, इसलिए पीपल डोंट वॉन्ट टू गेट डिस्टर्ब, देर एज इट इज देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू गिव अस दिस इन्फॉर्मेशन।
1: जी, आप अपनी नींद खराब नहीं कर सकते, और देखिए यहाँ पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं सेंसस को लेकर कितने वो सतर्क हैं, कितने ज्यादा वो डेडिकेटेड हैं कि वो पूरा पूरा दिन इतनी तपती हुई धूप में भटकते हैं और आपके पास आते हैं ताकि आप तक विकास को पहुंचाया जा सके, तो आप इतना तो काम कर ही सकते हैं कि उनका अच्छे से वेलकम कर लें और उनके साथ में बदमिजाजी जो है वो ना करें। और इसके अलावा मैं क्या कहूंगी, और आप ही बताएं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट, आप कुछ कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड?
0: देखिए इसमें क्या है, जो जो इंसिडेंस है जो भी है दोनों तरह से हो सकता है,
1: जी
0: बट इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर घर पे पब्लिक को भी कोई भी तरीके से शक है ये रियली सेंसस की तरफ से आया हुआ है, तो उनके लिए उनका आईडी कार्ड में QR कोड दिया हुआ है, दे कैन स्कैन एंड वेरीफाई, हमारा साइट में उनका नाम वगैरह दिखाई देगा,
1: ठीक
0: तो
1: है
0: प्रॉपर है, ये सारा चीज पब्लिक को कर सकता है।
1: जी
0: तो पब्लिक से ये अनुरोध है जितना कोऑपरेट कर सकता है, बिकॉज क्लाइमेट भी हमारा बहुत अडोस चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो जितना कोऑपरेट कर सकता है, लेकिन अपना सुरक्षा भी देखिए, ये हमारा तरफ से कोई भी मोबाइल OTP या आधार कार्ड का जो जांच है, कोई भी डॉक्यूमेंट का जांच है, इस तरीके से कोई भी डिमांड नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई कर रहा है तो आप उसी को लेके कंसर्न्ड DM ऑफिस है या कंसर्न्ड चार्ज ऑफिसर है तो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, यानी कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबली जो है वो इस काम को करिए क्योंकि ये आप ही के लिए किया जा रहा है। और मैं अपने लिसनर्स से कहना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो 9868107070 पर हमें पहुंचा सकते हैं। और आज आपके लिए मैं बता दूं कि इतनी सारी बातें हैं ना यहां पर कि हमें शायद समय कम पड़ जाए, तो आशियाना में आप सुन रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 को लेकर, और हमारे साथ जो यहां पर गेस्ट हैं वो पूरी डिटेल में जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हैं चैतन्य प्रसाद, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, और रंजना देसवाल हैं हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और रीजी बी हैं हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे, उसके बाद आएंगे वापस और ढेर सारी बातें यहां पर करने के लिए हैं, ढेर सारे सवाल और फिर उसके जवाब। स्टे ट्यून्ड।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PMSuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर। जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था।

0: हंसे संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप हैं हमारे साथ। मेरा नाम है शालिनी और आप सुन रहे हैं आशियाना। आशियाना में आज हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 को लेकर, यानी कि जनगणना 2027 को लेकर। यदि आपके भी कोई सवाल है उससे जुड़े हुए तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 9868107070 है नंबर, 9868107070। चलिए अब आगे हम चर्चा को बढ़ा लेते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ तीन खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। चैतन्य प्रसाद हैं हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, और रंजना देसवाल हैं हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और रेजी बी हैं हमारे साथ, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। जी अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि डेटा फिल करने के बाद क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं रेपिटिशन हो डेटा का, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं?
1: जो डेटा रेपिटिशन होने का तो चांस ही बहुत कम होता है, बिकॉज हमने जो HLBC होता है, मतलब जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, उसमें ये एक एन्यूमरेटर का वर्कलोड है लगभग 200 घर का, 182-200 घर का जो वर्कलोड दिया जाता है। पहले तीन दिन वो अपना पूरा जो बाउंड्री आइडेंटिफाई करेंगे, साथ साथ जो जो बिल्डिंग है और जो हाउसेस है उसके अंदर कितना लोग रहता है, कितना परिवार है, इसका सारा जो जांच करके उनका एक नक्शा बनाएंगे।
0: ठीक है,
1: तो इसके बाद ही वो मोबाइल ऐप के थ्रू डेटा कलेक्शन का काम शुरू करता है। इस स्थिति में, परिस्थिति में जो डुप्लीकेट होना या और किसी को मिस होने का संभावना बहुत ही कम है।
0: जी तो। जी चैतन्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रेपिटेशन की बात हमने कर ली, अब अगर आप हमें बताएं कि कोई एन्यूमिनेटर आता है तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह के OTP या कोई ID वो डिमांड करते हैं, और अगर करते हैं तो वो करनी चाहिए या नहीं?
2: नहीं मैम, उल्टा सिटीजन एक्चुअली ना एन्यूमिनेटर से पूछ सकते हैं अपने ओरिजिनल अपॉइंटमेंट स्लिप एंड ID कार्ड एंड QR कोड से वो चेक कर सकते हैं।
0: ठीक है,
2: अपॉइंटमेंट ना मतलब वो सही एन्यूमिनेटर है या नहीं, द ओनर्स इज ऑन द एन्यूमिनेटर टू प्रूव that he or she is the right person appointed for this job.
0: ठीक है,
2: rather on the other way round, बस डेटा पूछ सकते हैं, कोई ID कार्ड पूछने का कोई आवश्यकता है नहीं।
0: अभी कहाँ कहाँ हमारा सेल्फ एन्यूमरेशन जो है वो किस स्टेट में पूरा हो चुका है, और कहाँ बाकी रह गया है, और जहाँ बाकी है उनके लिए आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं?
1: मैडम, बहुत सारा स्टेटों में अभी सेल्फ एन्यूमरेशन का पीरियड कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक स्टेट है जो अभी आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए जो सेल्फ एन्यूमरेशन उन्हीं इलाकों में जो ओपन हो जाएगा HL लॉक पीरियड का 15 दिन पहले, तो उसी के लिए तो मेरा जो रिक्वेस्ट है सभी से, मैक्सिमम सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं जो

0: हो गए वो कर दीजिए,
1: ठीक है।
0: बिकॉज अपना डाटा खुद भरिए तो उसपे जो है ना डाटा का ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाएगा, तो ऊपर से एन्यूमरेटर का भी जो उसमें सहाय हो जाएगा, तो वो सेल्फ एन्यूमरेशन है जितना मैक्सिमम कर सकता है कर दिए। एक ये जो मेरे को स्पेशली बोलना है इसमें, जो अपना लोकेशन जो डिजिटल मैप के ऊपर जो तय कर रहा है वो जो एक्यूरेटली तय कर लीजिए, बिकॉज आपका एसी आईडी उसी एचएलबी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए,
1: एंड
0: ताकि
1: हाउ, यस यस प्लीज कंटिन्यू।
0: हाँ ताकि जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन जो एसी पोर्टल में जो भर गया तो एन्यूमरेटर को फेच कर पाएंगे
1: ठीक है
0: प्रॉपरली।
1: रंजना जी, आप हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, फॉर्म सबमिशन?
2: सो इन केस ऑफ दिल्ली द डेडलाइन इज 14th June।
1: ठीक है, ओके ओके।
2: फॉर ऑल इंडिया इट इज सितंबर, बट फॉर अस इट इज जून।
1: ठीक है, और अगर हम अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, हालांकि इतना डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों को शायद जानकारी मिल जाए तो अच्छा है, तो किस आर्टिकल के अंडर आता है ये सारा जो हमारा प्रोविजन है?
0: इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 246 आर्टिकल 246 है, अंडर यूनियन लिस्ट में सेंसस को लिस्ट किया गया है,
1: ठीक
0: तो
1: है
0: सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू द सेंसस एक्टिविटीज।
1: ठीक है। और अभी हमने बात करी अलग अलग स्टेट्स की, यूटीज की अगर हम बात करें और स्नो बाउंड एरियाज की बात करें स्पेशली अगर हम, तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ प्लेसेस हैं और इसके अलावा हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहां क्या सीन है, वहां क्या किस तरह का प्रोसीजर है, क्या कुछ खास है, अलग है या सेम है?
0: हाँ, स्नो बाउंड एरिया के लिए तो हमारा जो कुछ प्रोसीजर अलग है, बिकॉज जो हमारा फरवरी में सेकंड जो फेस किया जाएगा उस टाइम में उधर पूरी तरह से स्नो बाउंड होगा,
1: ठीक
0: जो
1: है
0: लोगों का मूवमेंट है बहुत ही डिफिकल्ट होता है,
1: ठीक है।
0: इसीलिए उनका जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जो सेकंड फेस है जो सितंबर के बाद किया जाएगा।
1: ठीक है, और अभी हमारे पास और भी सवाल बचे हुए हैं, हालांकि इस वक्त हमें अब इजाजत धीरे धीरे बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है, तो हमें जल्दी इसे कंप्लीट करना होगा। अभी यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लौटेंगे वापस। अगर आपके भी कोई सवाल है तो 9868107070 पर हमें पहुंचा दीजिए। मैं लिसनर से कह रही हूं अपने, आप सुन रहे हैं आशियाना आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी, और हमारे साथ है तीन खास मेहमान हमारे। आज सेंसस 2027 पर हम चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य प्रसाद है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, और रंजना देसवाल है हमारे साथ, IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और साथ में है रीजी बी डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6। आते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: जी बिल्कुल, चले चलो चले चलो, यही कह रहे हैं हमारे सेंसस ऑफिसर्स, इन्यूमरेटर्स कह रहे हैं कि बढ़े चलिए, इस जो हमारा ये अभियान चल रहा है इसमें भागीदारी अपनी निभाइए, अपना कर्तव्य निभाइए और सेंसस 2027 को सफल बनाइए। और आज यहां आशियाना में हम बात कर रहे हैं सेंसस 2027 की ही, जनगणना 2027 की। आपके साथ हूं मैं शालिनी, 102.6 सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो। हमारे साथ हैं खास मेहमान तीन जो हमें इस विषय पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, और चैतन्य प्रसाद हैं हमारे साथ IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट। रंजना देसवाल हैं हमारे साथ IAS DM एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। और साथ में है रेजी बी, डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस दिल्ली। जी, इतनी सारी हमने चर्चा कर ली है, बहुत सारी बातें जान ली हैं। अब आखिर मतलब समय जो है जल्दी भागा जा रहा है, तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे से सवाल कर लेती हूँ। इस पूरे प्रोसीजर में आपको कभी सुनने में आया कि इस तरह की मिसकंसेप्शंस या मिथ्स या फिर डर लोगों के बीच में है, कुछ आपको ऐसी चीजें रिसीव हुई हैं?
1: यस मैडम, एक्चुअली ये जो मिसकंसेप्शन है, मिस जो डर फैला जा रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा सोसाइटी में आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। आपको पता है अच्छी चीज के लिए भी सोशल मीडिया बहुत,
0: प्रोस एंड कॉन्स दोनों के,
1: प्रोस एंड कॉन्स आपको पता ही है। तो ये एक्चुअली आजकल देखे जा रहे हैं लोगों को, सेंसस को सिटीजनशिप के जुड़े जा रहे हैं, और वोटर लिस्ट से जुड़े जा रहे हैं, और मकान का जो ओनरशिप से जुड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें कोई तरीके से सच्चाई नहीं है। तो सेंसस से लेके कोई भी इस तरीके से जो इश्यूज में कोई जो रिलेशनशिप नहीं है। तो हमारा जो मेन मकसद है, हमारा कंट्री में कितना लोग रहता है, उनका क्या परिस्थिति है, ये सब जानना है। इस डेटा को हमारा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिवली यूज करना है, यही जो सेंसस का मेन एम है।
0: बिल्कुल, अगर इन सब तरह की भ्रांतियों को दूर हटाना है, भगाना है और लोगों को सही जानकारी पहुंचानी है, तो उनसे क्या अपील है आपकी कि वो न भटकें, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
2: मैम, बेसिकली सेंसस इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन। बेसिकली हमारा जो भी स्कीम पॉलिसी डिजाइन किए जा रहे हैं सबके लिए, टेक एग्जांपल इवन द फूड सिक्योरिटी एक्ट, उनके लिए मतलब हर पॉलिसी में हमें मतलब गिना जाता है कौन बेनिफिशियरी है, वो बेनिफिशियरी हम सेंसस से जुड़े जाते हैं। तो जितना हम फोर्थकमिंग रहेंगे, हमारा टेलर्ड पॉलिसी उतना अच्छे से गवर्नमेंट को बनाने के मौका सब लोग के पास ही है।
0: बिल्कुल, तो लिसनर से मेरा यही, जी जी,
2: दिस इज द मेन गोल ऑफ सेंसस। आजकल हम सब जानते हैं व्हाट द सोशल मीडिया कंपनीज बाय इज फॉर डेटा, डेटा इज अ न्यू ऑयल, सो लाइक दैट दिस इज द डेटा दैट गवर्नमेंट नीड्स फ्रॉम द सिटीजंस टू एनेबल टेलर मेड पॉलिसीज फॉर इट सिटीजनरी।
0: जी, और सिटीजन्स का भी जो एक ड्यूटी बनती है, अगर उन्हें अपने अधिकार चाहिए तो कर्तव्य भी निभाने ही होंगे, और उनको चाहिए कि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली दें ताकि उन तक सही योजनाओं का लाभ पहुंच सके। ठीक है, आपकी तरफ आती हूँ रंजना जी, आप बताएं कि किस तरह का पब्लिक रिएक्शन अब तक आपको मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, दोनों ही रिएक्शन भी और रिस्पॉन्स भी अच्छा, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है? आई थिंक नेगेटिव तो नहीं ही होगा, क्या है बताएं प्लीज।
3: I would say response is 90% positive. लोग पहले से भी बहुत, हमने पब्लिसिटी भी किया है और लोगों को जानकारी भी है, पीपल आर मोर अवेयर दीज डेज, तो दे आर कोऑपरेटिंग।
0: ठीक है,
3: रिपीटेड रिक्वेस्ट हैव हेल्प्ड, हम लोग ही सबसे अनुरोध करते रहे हैं बहुत समय से, तो उसका

0: हमें नतीजा नजर आ रहा है. पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम. सो दैट एज चैतन्य सेड अर्लियर, दिस इज फ्यूअल फॉर आवर पॉलिसीज.
1: राइट,
0: जो ये डेटा मिलेगा उससे आगे मुझे कहाँ कहाँ हमारे एडवर्टाइजमेंट में आपको हमेशा प्रगति और विकास दिखता है. तो ये ही इसके लिए ये आवश्यकता है कि ये डेटा हमें मिले.
1: बिल्कुल.
0: और भ्रांति के बारे में आप कह रही थी, किसी को कोई आईडी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई आधार आपसे मांगे नहीं देना है, ओटीपी नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है. ओनली इन्फॉर्मेशन देनी है, करेक्ट देनी है, वर्बल इन्फॉर्मेशन देना है.
1: जी. और अगर कोई डरा धमकाकर या किसी भी अलग तरीके से उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो कहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एक बार फिर बता दें.
0: डीएम के हरेक डीएम ऑफिस में एक ग्रीवियांस कमिटी सेटअप है एडीएम के अंडर, वहां जाके वो लोग अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और दे कैन कॉल द पुलिस इफ देयर इज एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन.
1: ऑल राइट, थैंक यू सो मच. आपकी तरफ आना चाहूंगी, फटाफट से हमें जल्दी जल्दी से क्विक अपना रिस्पॉन्स दे दीजिए. चलते हुए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे ऑडियंसेस को, लिसनर्स को, कि उन्हें क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बता दें उन्हें सेंसस को लेकर.
2: ओके, सेंसस में मेरा तो पहले अपील यही है, सभी सेंसस को तरफ से आप सहयोग दे दे, अच्छे इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. दैट इज माय रिक्वेस्ट.
1: ऑलराइट, चैतन्य जी,
3: हम सभी से अनुरोध यही है टू बी फोर्थ कमिंग, टू गिव डेटा व्हाट इज सॉर्ट बाय द एन्यूमरेटर्स, टू हेल्प गवर्नमेंट इन मेकिंग दिस एक्सरसाइज अ बिग सक्सेस.
1: जी, मैं भी आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो कुछ भी आपने सुना ना उसे फॉलो करिए, ये आपके लिए ही, आपके फायदे के लिए. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें इतनी जानकारी देने के लिए. बहुत मजा आया मुझे इस सेशन में, मुझे खुद भी बहुत सारी जानकारियां मिली. आई होप हमारे लिसनर्स ने तो बहुत इंजॉय किया होगा. ठीक है, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे थे आशियाना, और मैं और अपने गेस्ट के साथ मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूं. हमारे साथ गेस्ट रहे हैं चैतन्य प्रसाद, आईएएस डीएम एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, रंजना देसवाल, आईएएस डीएम एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और साथ में रहे हैं रेजी बी, डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन दिल्ली, जिन्होंने हमें जनगणना के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी. चलते चलते ये खास गीत आपके लिए.

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर, और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। आज का विषय है सिर की चोट, कारण, उपचार और बचाव, यानी हेड इंजरीज, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। सिर पर लगी चोट कभी मामूली लग सकती है, लेकिन कई बार ये गंभीर रूप भी ले सकती है। गिरने, सड़क दुर्घटना, खेलकूद या किसी अचानक हादसे में सिर की चोट आम बात है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी होता है। आज हम जानेंगे कि सिर की चोट कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इससे बचाव कैसे संभव है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, यशोदा मेडिसिटी, न्यू दिल्ली। आप इससे पहले लगभग 3 दशक तक प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, एम्स, न्यू दिल्ली भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी।
2: हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप News on AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर की चोट यानी हेड इंजरीज, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि सिर की चोट, हेड इंजरी किस किस प्रकार की हो सकती है।
3: सबसे पहले तो मैं फिर से शिल्पा जी आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं अपने सारे श्रोतागण को भी इस प्रोग्राम को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं। आपने पूछा हेड इंजरी क्या होती है। हम इसे दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक साधारण भाषा में और हम दूसरी मेडिकल भाषा में हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं। साधारण भाषा में कोई भी चोट जब सिर में लगती है, चाहे वो स्कैल्प में हो या कि बाहरी परत होती है, या फिर स्कल में हो या फिर अंदर ब्रेन में हो, तो कोई भी चोट इसमें लगती है तो हम इसे कह सकते हैं कि हेड इंजरी का कंपोनेंट है। मेडिकल भाषा में हम इसे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी सीवियरिटी कितनी ज्यादा है, मात्रा कितनी गहरी है, इस हिसाब से हम इन्हें डिवाइड करते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, अक्सर हेड इंजरीज के केसेस का आमतौर पर क्या आंकड़ा रहता है और कौन कौन से एज ग्रुप या सिचुएशंस में ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं?
3: ये प्रश्न बहुत जरूरी है। ये प्रश्न इसलिए जरूरी है, जब तक हमें हमारे देश में हेड इंजरी के प्रॉब्लम के बारे में, इसकी गहराई के बारे में, इसके आंकड़े के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सच में देखा जाए तो हमारे देश में, दुनिया में जितने भी ज्यादा हेड इंजरी एक्सीडेंट्स होती हैं, डेथ्स होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमारे देश में, हमारे भारत में होती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे अगर मैं ये कहूँ कि ये एक एपिडेमिक है, एक तरीके की महामारी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये देखा गया है कि हर साल हमारे देश में लगभग 15 से 20 लाख लोग हेड इंजरी से ग्रसित होते हैं, और इस 15 से 20 लाख के आंकड़े को अगर हम फर्दर डिसेक्ट करें तो हम देखते हैं कि हर रोज लगभग 4000 हेड इंजरीज होती हैं, हर घंटे 2000 और हर मिनट 3 हेड इंजरीज होती हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आपको हैरानी होगी कि इस वक्त 3 हेड इंजरीज हो चुके हैं, और दुख की बात यह है कि हर साल इस हेड इंजरी की मात्रा हमारे देश में 6-8% बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से ये एक तरीके की महामारी है। प्रॉब्लम ये है कि ये हेड इंजरी किन में होती है। ये हेड इंजरी अक्सर यंग एज, 20 से 40 साल के नौजवानों और नवयुवतियों में होती है। तो इस वजह से ये एक ऐसे प्रोडक्टिव एज होती है जहां पर हेड इंजरी की वजह से ना केवल वो इंसान बल्कि उसका पूरा फैमिली अफेक्ट होता है। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो लगभग एक साल में 2 लाख के आसपास हेड इंजरीज से डेथ होती हैं, और हर दिन लगभग 400 डेथ्स होती हैं। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में हेड इंजरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे देश में सबसे ज्यादा है।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये यंग एज में या इसमें ज्यादा होती हैं, लेकिन

0: इसके क्या कारण है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: जी, मैं विजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर
0: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार जी।
1: सर ये जैसे कोई कुश्ती उश्ती में या बॉक्सिंग में सर जैसे लग जाते हैं मुक्के उक्के, जैसे कंकशन सा हो जाता है,
2: बिल्कुल
1: तो सर ये कितना खतरनाक है और कितने समय के बाद हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए?
2: अच्छा, आपने बताया आपका नाम विजय है,
1: हाँ जी हाँ जी।
2: आप बॉक्सर हैं?
1: सर खेलता हूँ मैं
2: अच्छा,
1: कुश्ती
2: वेरी
1: वगैरह
2: गुड
1: में।
2: वेरी गुड। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जितने भी हमारी गेम्स होती हैं, खासकर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में हेड इंजरी बहुत कॉमन चीज है। आपने सुना होगा मोहम्मद अली के बारे में, है ना? बहुत अच्छे बॉक्सर थे, तो अपनी सारी लाइफ उन्होंने बॉक्सिंग करी, बाद में उन्हें पार्किंसन डिजीज हो गई थी। होता क्या था कि बॉक्सिंग में आप सब जानते हैं, उस टाइम लोग बिना किसी स्पोर्टिंग और सेफ्टी गियर के बॉक्सिंग करते थे, तो सिर में लगातार चोट लगा करती थी। उस चोट के लगते लगते, बार बार लगते लगते उन्हें दिमाग के कुछ पोर्शन में डैमेज हो गई और उसकी वजह से उन्हें पार्किंसन की डिजीज हो गई। तो ये जरूरी है कि जब हम बॉक्सिंग करते हैं या कोई भी ऐसे कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स करते हैं, तो जितने भी प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं वो जरूर पहने, और अगर चोट लगती है तो उसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अभी हम आगे बात करेंगे कि जिसकी वजह से चलते हमें केयरफुल रहना चाहिए और जरूरत पड़े तो एक मेडिकल हेल्प और कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, हम कैसे पहचाने अगर हम चाहे ड्राइव कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चोट लग गई है, तो हम कैसे पहचाने कि ये चोट सामान्य है या गंभीर है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें?
2: हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर चोट लग जाती है, घर में बैठे हैं, सिर किसी कोने से लग गई, अब क्या करें? या फिर मान लीजिए कोई गेम्स खेल रहे हैं, या फिर कोई बाइक चला रहे हैं, या कोई भी ऐसे साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस चोट में कौन सी चोट ऐसी होती है जिसके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमें मेडिकल ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन की जरूरत तो नहीं है। देखिए, कोई भी चोट लगती है, उस चोट लगने के बाद अगर पेशेंट कॉन्शियस नेस लूज करता है, बेहोश हो जाता है, चोट के पश्चात वॉमिटिंग्स होती हैं, या चोट लगने के बाद दौरे पड़ते हैं, या चोट लगने के बाद काफी देर तक, लगभग आधा घंटा तक इंसान को होश में नहीं रहता, उसकी याददाश्त नहीं रहती कि क्या हो गया था मुझे, या चोट लगने के बाद शरीर के किसी अंगों में किसी तरीके की कमजोरी, जिसे हम फोकल डेफिसिट्स कहते हैं, या फिर मान लीजिए नाक से CSF हम कहते हैं, ब्रेन का एक वाटरी फ्लूड लीक करता है, या फिर सीवियर ट्रॉमा लगी है चेहरे में, फेस में, और किसी पेशेंट में अगर जिसे हम प्यूपिल्स कहते हैं वहां पर एसिमेट्री आती है, या कोई पेशेंट चोट लगने के आधे घंटे बाद भी होश में नहीं आता है, तो अच्छा है कि किसी मेडिकल कंसल्टेंट से या किसी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह कर लें।
0: इसके बारे में हम आगे भी और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: ये गाना रुक जाना नहीं तू कभी हार के, ये हमें मैसेज देता है कि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़े। और ये सॉन्ग आज का हमारे डॉक्टर साहब अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हैं, उनकी पसंद का है ये गाना। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: हेलो।
2: हाँ जी,
0: नमस्कार, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
1: तो पहले तो एंकर मैम को नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और राजेंद्र कुमार डॉक्टर साहब को, राजेंद्र सिंह का नमस्कार।
2: अच्छा, आप भी राजेंद्र हैं? नमस्कार जी।
1: जी सर, एक दफा से मेरा नाम भी राजेंद्र है सर।
2: अच्छा, अच्छा।
1: तो सर मेरा पहला सवाल तो ये है आपसे प्लीज, कि किसी पेशेंट को या शख्स को कैसे पता चले कि उसे ब्रेन फीवर है, ब्रेन फॉग है, या उसके दिमाग तक जो है ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि मेरे इन दिनों मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे फ्रिज कूलिंग मांगता है ना, उस तरीके से अगर मैं फ्रिज सिर को ठंडे पानी से धोऊं, आंखों हाथ मुंह को ठंडा कपड़ा सिर पे बांधू तो दिमाग काम करता है, और अगर वो कपड़ा सूख जाए तो फिर पानी सूख जाए फिर वही प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि मुझे स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। एक सवाल तो मेरा ये है, 89-90 है मेरी बाई हाथ, वो सॉरी किसी फ्रेंड ने मेरे बाई हाथ के ऊपर जो है 8 फुट जो है वो मार दिया था, 16 पाउंड का गोला। तो उस वक्त जो है वो वहाँ पर एक गोला टाइप का बन गया था, पर तब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम बाई हाथ पे बॉल लगी, तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 2004-05 मेरी सिर के पीछे वाले भाग में एक बॉल आके लगी, रोहिणी में कहीं खड़ा था इस टीचर के साथ अपने, तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। तो मैं जाना चाह रहा हूँ कि पुरानी चोट उभर के आई है या कुछ हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी सर।
2: अच्छा, आपने काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। एक तो आपने कहा कि कुछ ब्रेन फीवर या ब्रेन फॉग है ना, तो आपके ब्रेन में ब्लड पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? तो देखिए, ये जो आप जो चीज़ें पूछ रहे हैं इसको हम पूरे डिटेल में तो नहीं समझ सकते इतने से छोटे से वार्तालाप में, लेकिन जहां तक ब्रेन में ब्लड पहुंचने की बात है, इसमें आप निश्चिंत रहिए, जब आप हमसे बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब ना केवल आपके ब्रेन में ब्लड जा रही है बल्कि आप हर चीज़ सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। ब्रेन फॉग कभी कभी ऐसे कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए इस वक्त मान लीजिए हम हेड इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो चोट लग गई सिर में, तो एक तरीके से जैसे कनकशन बोलते हैं, जैसे पहले श्रोता ने कहा था, थोड़ी देर के लिए जिसे हम कहते हैं ना कि सिर में दिन में तारे नजर आ गए, अचानक से आपके ब्रेन का सोचना, आपका फंक्शन करना थोड़ी देर के लिए स्टन हो गया, आपको याद नहीं रहता कुछ, तो उस तरीके की चीजों को हम फिलहाल एक तरीके से ब्रेन फॉग कह सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अपने आप नॉर्मल आ जाती है। तो ब्रेन फीवर वाली ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ब्रेन फीवर टोटली अलग कंडीशन होती है। आपको अगर सिर में आप कहते हैं कि ठंडे पानी से कपड़ा या कोई टाइट बांधे तो कुछ फायदा होता है, कुछ ठीक लगता है, तो हो सकता है आपको कोई ब्लड प्रेशर या कोई इससे ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक बार किसी डॉक्टर से बात करके, उनसे कंसल्ट करके इन्वेस्टिगेशन या जांच जो भी कर लेते हैं वो करवा लीजिए। और रही बात आपकी कोई बहुत पुरानी इंजरी जो आई के आसपास हिट हुई थी या सिर में लगी थी, उससे इतने टाइम बाद कोई ऐसी कोई वजह जनरली होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई चोट लगी हो रिसेंट में, कुछ हफ्ते या 1-2 या 3 महीने पहले चोट लगी हो, फिर उस

0: के बाद आपको ये तकलीफें हो या किसी भी पेशेंट को, तो एक कंडीशन होती है कि ब्रेन के अंदर सबड्यूरल हेमरेज होती है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ब्लड कलेक्ट होता है, और जब उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर इस तरीके की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी हालात में आप एक बार डॉक्टर के साथ किसी न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, वो देखेंगे कि और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस हिसाब से हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़े। ठीक है
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज भी हमारे पास, यह है सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से, लिखते हैं सर नमस्कार जी, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जी, हमारे जानने वाले 2011 से कोमा में है सर, उनका घर बिल्कुल बर्बाद हो गया है, क्या उम्मीद है उनका, कुछ हो सकता है, सब जगह दिखा चुके हैं। और फिर आगे लिखते हैं सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का आपका।
0: सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शायद सहानुभूति कहूँ, मुझे हिंदी बहुत तरीके से मालूम नहीं, मुझे माफ करना, मैं आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। हम न्यूरोसर्जन्स अक्सर ऐसे कंडीशंस देखते हैं जहां पर, जिससे मैंने शुरू में कहा था, यंग नौजवान लड़के 20 30 40 साल के लड़के, उनके जब एक्सीडेंट हो जाती है तो ना केवल वो फैमिली, ना केवल वो पेशेंट, बल्कि उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, बच्चे और जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं, सभी को बहुत बड़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। अब रही बात 2011 की इंजरी है, तब से लेके अगर वो कोमा में है, तो कोमा, हालांकि मैं एग्जैक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि कोमा एग्जैक्टली क्या है, हम मेडिकल टर्म में अलग अलग तरीके से इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, पर मैं समझता हूं कि शायद अभी भी उन्हें केयर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे हालत में पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 2007 में जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह हैं, उनके सुपुत्र का ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने इतना महान कार्य किया कि इस तरीके से जिन भी पेशेंट्स को हेड इंजरी होती है और उसके बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है, तो इन सब पेशेंट्स के लिए उन्होंने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे जोधपुर में है, हमारे दिल्ली में भी है, लाजपत नगर में, नोएडा में है, पटना में है, और ऐसे कई तमाम सेंटर्स में उन्होंने ऐसे सेंटर्स खोले हैं जहां पर ऐसे पेशेंट्स को, जिनको न्यूरो रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है चोट लगने के बाद, जो कोमा या सेमी कोमा में होते हैं, या जिनको इस तरीके से हेल्प की जरूरत पड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, तो उनको केयर करने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार अगर आपके आसपास, जैसे मान लीजिए आप नोएडा में हैं, तो नोएडा में भी ये फैसिलिटी है, इधर से हमारे लाजपत नगर में भी ये फैसिलिटी है, तो उस फैसिलिटी का जरूर फायदा उठाएं और वहां पर एक बार न्यूरोसर्जन पूरे डिटेल्स से देखेंगे तो एग्जैक्टली क्या उन्हें किस तरीके से रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं
1: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: मैं एक सवाल पूछना सर ना
0: जी।
2: सर मरीज को कोमे में जाने की स्थिति कब आती है सर? अब मैं एम्स में जब आपके लोग हर दिन जो है प्रेजेंट करते हैं ना
0: जी जी,
2: तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कई बार सन 98 में मैं एम्स में कई बार गया, तो वहाँ सीढ़ी में भी चढ़ने में भी मतलब इतना भीड़ हो जाती थी, और लिफ्ट में भी इतना भीड़ हो जाती थी, लेकिन अब स्थिति क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन आपका जो कार्यक्रम है यह हर दिन अच्छा चल रहा है, बढ़िया है
0: जी।
2: लेकिन मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ ना, कोमे में जाने की स्थिति कब होती है सर, बस यही पूछना।
0: सबसे पहले तो रघुवीर जी धन्यवाद फोन करने के लिए
2: जी सर।
0: आप उत्तराखंड से हैं, तो मैं अगर आप बुरा न माने तो पहाड़ी कह सकता हूँ।
2: कुछ नहीं,
0: बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी पहाड़ी हूँ, मैं हिमाचल से हूँ।
2: अच्छा, थैंक यू सर।
0: तो मैं लगभग 3 दशक तक एम्स में रहा, तो अच्छा लगता है। तो रही बात कोमा की, देखिये जब भी सिर में चोट लगती है तो कितनी सीरियस और सीवियर इंजरी हुई है उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कोमा में जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा, सिर में सबसे बाहर स्किन होती है, फिर उसके नीचे हड्डी होती है जिसे हम स्कल कहते हैं, फिर उसके अंदर कुछ ब्रेन के बाहर कुछ परतें होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, तो सबसे अंदर ब्रेन होता है, तो सबसे अंदर ब्रेन का भी कुछ पोर्शन जो सबसे डीप होता है, जब उनमें डैमेज होती है या उनमें चोट लगती है या उनमें दबाव होता है, तब पेशेंट जो है बेहोश होता है, और वो दबाव बहुत लंबे टाइम तक रहा हो, डैमेज हो गया हो परमानेंट, तब पेशेंट कोमा में जाता है। तो कोमा जो है
2: सर, वो मशीन अपने आप काम करता है डॉक्टर साहब?
0: कौन सी मशीन?
2: जो कोमा में जो डालते हैं मरीज को, तो
0: अच्छा,
2: अपने आप काम करता है।
0: आप वेंटिलेटर

0: की बात करते हैं,
1: नहीं, जब हम कोमा में डालते हैं मरीज को, अपने आप काम करता है वो, मतलब
2: मतलब जो वो कॉमा में जिसने ड्यूरेशन के लिए है तो वो कैसे चल रहा है, मतलब कैसे जितनी देर सरवाइव कर रहा
0: आप,
2: है?
0: आपका मतलब कोई मरीज कोमा में चला गया तो उसके अंदर की मशीन कैसे चलती है, ये कहना चाहते हैं?
1: बस मतलब अपने आप, मतलब उसको इम्प्रूव करता है, मतलब अपने आप
0: हाँ
1: ही करता है मशीन
0: हाँ
1: इम्प्रूव।
0: तो जो उस इंसान का जो अंदर की कुछ मैकेनिज्म ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स को कंट्रोल में रखती हैं, उन्हें अलाइव रखती हैं, लेकिन इंजरी कितनी भी है वो उस पर डिपेंड करता है। कई बार इंजरी इतनी गहरी होती है कि हमें पेशेंट्स को बाहर से, चाहे उन्हें सांस लेने की हो, चाहे कोई दवा की हो, ब्लड प्रेशर की जरूरत हो, सपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमें मान लीजिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर इन सब की जरूरत पड़ती है, हमें देना पड़ता है, तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत सीरियस इंजरी है। लेकिन कोई इंसान अगर मान लीजिए बिना किसी सपोर्ट के अपने बेसिक लाइफ को कंट्रोल कर सकता, स्पोर्ट में रख सकता है, तो वो सीवियरिटी इंजरी की थोड़ी कम होती है। तो अक्सर देखा जाता है कि लगभग आप ये सोचे कि 6 महीने से लगकर 2 साल तक कुछ ना कुछ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की आशा हमेशा रहती है।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हेड इंजरीज कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, तो इस पर अभी हम आपसे जानेंगे कि इसके सबसे सामान्य कारण क्या हैं, कॉजेज क्या हैं। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हेलो,
2: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: श्याम सुंदर राम जिलंधर।
2: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: डॉक्टर साहब और 77
2: अच्छा जी,
3: उम्र 8 साल से मैं पार्किंसन की दवाई ले रहा हूँ।
2: सर आपकी आवाज है ना कट रही है, तो आप
0: पार्किंसन की दवाई ले रहे हैं?
3: पार्किंसन की बोल रहे हैं, मुझे डॉक्टर ने यही बोला है।
0: अच्छा जी,
3: ना हाँ जी, 8 साल हो गया अब मुझे, अब हाथों में कंपन कंपन बस इतना बता दें, इलाज मेरा सही कर रहा है, हाथ का मेरे कम कामते हैं बस,
0: हाथ कामते हैं।
3: हाँ
0: अच्छा, आप जलंधर से कॉल कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम वैसे हेड इंजरी पे है, पर आपने आपके प्रश्न को हम अगर समझ सके हैं तो आपने ये कहा कि आपके हाथों में ट्रेमर्स है और आपका पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस हुआ है ना? तो हाँ, तो पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस हुआ है, तो देखिए शुरू शुरू में मेडिसिन चलती हैं और मेडिकेशन से काफी हद तक सारी चीजें कंट्रोल रहती हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करें, तो मेडिकेशन से अगर बेनिफिट होता है तो वो सही रहता है। और पार्किंसन डिजीज में एक सर्जरी की भी पूरी हमारे पास स्टैंडर्ड, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी होती है जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, तो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है उससे। तो पहले आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए।
2: तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है डॉक्टर साहब, तो इसके सबसे सामान्य कारण हेड इंजरीज के, सिर की चोट के क्या रहते हैं?
0: तो ये हेड इंजरी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिए जब हम हेड इंजरी की बात करते हैं तो कौन कौन इस हेड इंजरी में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो जिस इंसान को चोट लगती है, फिर दूसरी बात होती है कि वो किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, और तीसरी चीज है कि हमारी रोड्स। तो हेड इंजरी की सारी वजह ड्राइवर्स में, व्हीकल में और रोड्स में है। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करें तो इस वक्त हम मेनली इसी पर फोकस कर रहे हैं, बाकी और कोई कारण होते हैं जैसे किसी हाइट से गिर गए या किसी गेम्स में हेड इंजरी हो गई, वो अलग बात है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो लगभग 60 से 80% केसेस ऑफ हेड इंजरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ही होती है। तो सबसे पहले बात आती है ड्राइवर्स की। तो ड्राइवर्स की जब बात आती है हेड इंजरी के कॉज के बारे में, तो हम समझ सकते हैं कि अगर ड्राइवर सही नहीं हो तो हेड इंजरी के कॉजेज बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि कौन ड्राइव करता है, क्या वो सही तरीके से ड्राइविंग के लिए एक्सपर्ट है, क्या उन्होंने लाइसेंस सही तरीके से लिया। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास लाइसेंस भी है, आपको ड्राइविंग भी आती है, तो आप कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे आप रूल्स फॉलो करते हैं, क्या आप लेन ड्राइविंग करते हैं, क्या आप सीट बेल्ट पहन के रखते हैं, अगर आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो क्या आप हेलमेट पहनते हैं, क्या आपका हेलमेट सही मेक का है, क्या आप हेलमेट सिर में रखने के बाद अच्छे से अपने नेक से स्ट्रेप करते हैं, क्या आप ड्रिंकिंग और ड्राइविंग करते हैं, या फिर आप रॉन्ग साइड में अक्सर हम देखते हैं लोग ड्राइव करते हैं, या फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि आज के तारीख में लोग ड्राइव करते हैं मगर साथ में मोबाइल में बातें भी कर रहे हैं और मोबाइल में टेक्स्टिंग भी कर रहे हैं। ये सब चीजें बहुत डेंजरस चीजें हैं। तो इसके अलावा जैसे हमारे रोड्स हैं, हमारी रोड्स भी अच्छी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारे रोड्स पर स्पेसिफाइड होना चाहिए कि रोड्स में ऐसा ना हो कि कोई एनिमल्स आ रहे हो, टू व्हीलर्स, फास्ट लेन, स्लो लेन, ये सब चीज़ों की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी

0: को होनी चाहिए। तो इसके अलावा व्हीकल्स की क्वालिटी जैसे एयर बैग, सीट बेल्ट पहनना, ये सब चीजें, इन सब चीजों के अगर हम ठीक से पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स और हेड इंजरी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
1: यानी हमें सही से ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपना भी प्रिकॉशन ले सके। अपने प्रिकॉशंस लेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और अपना बचाव कर सकेंगे। इस पर हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@daily@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए, तो एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र और शिल्पा मैम को इस विषय को लाने के लिए थैंक्स। डॉक्टर साहब, यंग बच्चे बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं और उनके सिर में चोट लग जाती है, और उस समय क्या उपचार होना चाहिए, और बच्चों को अपनी तरफ से एक डॉक्टर के नाते समझा दें। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
2: नमस्कार नरदेव जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक यंग बच्चा बाइक ड्राइव कर रहा है लेकिन हेलमेट नहीं पहन रहा है। तो इसके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा तमाम उन बच्चों को। अगर आपने मेरे प्रोग्राम को सुना होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक श्रोता ने कहा था कि एक यंग लड़का जिसे एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, तब से लेकर लगभग 15 साल में अभी भी कोमा में है। तो उनके सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटस है, कितनी प्रॉब्लम होती है आप समझ सकते हैं। तो हमारे बच्चों को कोई भी काम करते हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे जितने भी हमारे जो इसके सूत्रधार हैं, बच्चों के स्कूल करिकुलम में एक तरीके से ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि बच्चे जो है इसके दुष्परिणाम के बारे में जान सके। रही बात ट्रीटमेंट की कि उस वक्त क्या करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त बच्चे की हालत क्या है, कितनी गहरी चोट लगी है। जैसे हमने कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें मालूम लगता है कि हमें पता लगता है कि ये शायद सीरियस हेड इंजरी हो सकती है, जैसे बेहोश हो जाना, उल्टी हो जाना, या फिर नाक से कोई CSF का आना, या कोई दौरे पड़ना, या फिर ड्राउजी हो जाना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई किसी ऐसी जगह पर है, कोई हिल स्टेशन पे जा रहा है, या कहीं रास्ते में है, कहीं दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो सबसे पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करे, या कोई दे रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करे, उसको क्या दे?
2: तो ये हेड इंजरी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सिर्फ जरूरी नहीं कि रोड्स में और सिटीज में ही हो। आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, दूर दराज के एरिया में हैं, इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी हमारे लीडरान हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाए। और हमारे प्रोग्राम में, खासकर स्कूल के बच्चों में, हम जितनी जल्दी इस तरीके के नॉलेज इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकें, इसके रिलेटेड अवेयरनेस फैला सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा था, पीछे हमारे जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह जी ने जो एक न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया है, तो वो लोग सिर्फ ना केवल ये काम करते हैं बल्कि वो इस अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाने के लिए सारे हिंदुस्तान में टाइम टाइम पर प्रोग्राम करते रहते हैं। तो हमारे लीडरान को, हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को, और हमारे जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनको इस तरीके के प्रोग्राम को लेके जितने भी पब्लिक हैं, चाहे पुलिस वाले हों या कोई कॉमन पब्लिक हो, उन सब चीज़ों को कोई भी इंजरी होती है, एक्सीडेंट होती है, तो फर्स्ट एड कैसे दिया जाना चाहिए, ये एक बहुत सिंपल सी साधारण सी बात है। पब्लिक को इसके बारे में अवेयर कराना चाहिए ताकि मान लीजिए एक गाड़ी का कहीं पर दूर दराज एरिया में एक्सीडेंट हो गया और आसपास के लोकल के लोग टू सम एक्सटेंट, मान लीजिए उनको इसके बारे में मालूम है कि कैसे मरीजों को किसी पेशेंट को किस तरीके से सेफ वहाँ से एक्सट्रिकेट किया जाए, निकाला जाए, और फर्स्ट एड कैसे दिया जाए। तो ये सब चीज़ें एक कॉमन सी साधारण सी बातें हैं जो एक जनरल पब्लिक को आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस पर विचार करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कई बार होता है कि चोट लग गई, अगर गिर गए या कहीं पर भी चोट लगे, लगता है कि ठीक है, लेकिन कई बार उसके आफ्टर इफेक्ट्स लगते हैं, या फिर लगता है कि अंदरूनी चोट है, तो हमें कैसे पता लगेगा और उस केसेस में हमें क्या करना चाहिए?
2: जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई ऐसे कोई चोट लगती है सिर में, तो दो चीजें आती हैं हमारे दिमाग में, क्या ये साधारण चोट है या फिर हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जहां तक अगर डॉक्टर या कोई भी मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो कंसल्ट करने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमें लगता है कि हो सकता है कि दिमाग में गहरी चोट लगी हो, या चोट लगने

0: घटना हो तो ऐसे हालत में हमें तुरंत बिना किसी देरी किए न्यूरो साइंसिस से रिलेटेड कोई भी सेंटर हो तो वहां पर जरूर हमें जाना चाहिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: जी नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी मैं राजकुमार छावला से बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: मेरी प्रॉब्लम ये है जी, मेरे को चोट तो वैसे कई साल पहले लगी थी मैम, आज से करीब करीब 20 साल पहले लगी थी। और मेरे को ऐसा लगता है जी, जैसे उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया जी, एज मेरी नहीं थी, कम मतलब ज्यादा नहीं थी। अब मेरे को थोड़ा भूलने की बीमारी और सिर में कभी कभी चक्कर आना और नींद की कमी ऐसा महसूस होता है जी, और एक घबराहट भी हो जाती है जी। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, आप जो बता रहे हो सर, वो मेरे दिमाग का भी उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह कुछ किया था जी। तो उन्होंने बताया भैया अभी तो ठीक है, सर ठीक चल रहा है आपका, लेकिन थोड़ा सा भूलने की बहुत ज्यादा तकलीफ है मेरे को, और डर है जी अंदर से। तो ये क्या उसी का नतीजा है सर, क्या चोट का ये?
0: जैसे आपने कहा था ये चोट आपको लगभग 20 साल पहले लगी,
2: जी सर।
0: और जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसे लगता है कि ये कोई माइल्ड हेड इंजरी या माइनर चीज रही होगी, तो उस वक्त कोई कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। तो लगभग 20 साल के बाद इस तरीके की प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चक्कर है, या कोई नींद से रिलेटेड है, तो उस चोट से इसका कोई रिलेशन हो इसकी संभावना बहुत बहुत कम है। हो सकता है ये और कोई प्रॉब्लम्स हो, मान लीजिए कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, या वजन ज्यादा है, या फिर आपका प्रोफेशन कोई ऐसा हो उससे रिलेटेड हो सकता है। चोट से इसका रिलेशन होने की संभावना बहुत कम है। और मोर ओवर आपने किसी दूसरे किसी डॉक्टर से इसका कंसल्ट कर लिया, उन्होंने देख लिया, आपको बता दिया है कि ऐसे कोई कारण या वजह उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक मैं उनकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी चोट का आज के तारीख में इतने देर बाद इस तरीके के प्रॉब्लम्स और भी किसी कारणों से हो सकती है, उसकी वजह से नहीं होगी, चोट की वजह से नहीं होगी।
2: और सर जैसे कि अब दोनों हाथों में झनझनाहट और सुनपन सा आ जाता है भी अभी
0: वो झंझनाहट और सुनपन जो होता है इस एज में, जैसे मैं समझ सकता हूँ शायद आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी, उसके
2: हाँ
0: आसपास
2: जी
0: होगी,
2: 60 होगी।
0: तो बिल्कुल, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है इस एज के साथ। सर्वाइकल डिस्क में थोड़ी डिजनरेशन होकर नसों में दबाव पड़ता है, तो ये टिपिकल सिम्टम्स आपके उसके हैं। तो आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करवा लीजिए, और गर्दन से रिलेटेड नसों की जांच के लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से बात कर सकते हैं। आपको शायद सर्वाइकल MRI वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। आपका हेड इंजरी से इससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए।
2: और ये हेड इंजरी से ये भी हो सकता है सर, भावुकता, एक भावुक की तरह होता है मेरा, कोई बात ऐसी हो जाए तो आंखों में आंसू आ जाना, घबरा जाना।
0: इतने इतने सालों और इतने देर बाद इससे रिलेशन नहीं होना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे कि हेड इंजरी का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट भी किए जाते हैं?
0: तो देखिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी जहां पर अगर हमें लगे कि पेशेंट को कहीं सीरियस हेड इंजरी तो नहीं है, तो पेशेंट्स को थोड़ा हायर सेंटर में रेफर किया जा सकता है। तो वहां पर जब डॉक्टर्स देखते हैं तो उनको वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस डेफिनेटली करते हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है सीटी स्कैन। तो आज के तारीख में सीटी स्कैन से हमारी सारी चीज़ें एक बार में हो जाती हैं, लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट में सारी जांचें हो जाती है, सिर का, गर्दन का, छाती का, ये सब तरीके की इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी कोई हेड इंजरी या कोई भी इंजरी होती है तो जो फर्स्ट आर होती है उसे हम गोल्डन आर कहते हैं। मतलब चोट लगने के बाद जो पहला 60 मिनट्स होती हैं उसमें अगर पेशेंट्स को तुरंत रेफर किया जाए और ट्रीटमेंट मिले तो ऐसे लोगों की बचने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो जब ये फर्स्ट आर की गोल्डन आर की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को सिर में हल्की सी चोट लगे और फर्स्ट आर में लोग इधर उधर भागने लगे, ऐसी बात नहीं है। वो जो सीरियस हेड इंजरी होती है, पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस है, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट आर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर डिपेंडिंग अपॉन क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सरे करना है या फिर सीटी स्कैन करना है, तो वो सब चीजें, वो सब इन्वेस्टिगेशन होती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे कि कई बार होता है कि इंसिडेंट हो गया, तो अगर मेजर होता है तो क्या ट्रीटमेंट की जाती है, माइनर होता है तो क्या ट्रीटमेंट की जाती है?
0: हाँ जी, तो पेशेंट जब हॉस्पिटल आते हैं तो उसके बाद सबसे पहले न्यूरोसर्जन पेशेंट को इवेल्युएट करता है, और पेशेंट को जनरली वो न्यूरोसाइंसिस के टर्म्स के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर हेड इंजरी डिस्क्राइब करता है कि पेशेंट किस ग्रुप में है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी का

0: वजन लेते हैं तो हम कहते हैं 30 किलो 40 किलो 50 किलो, तो उस तरीके से जब हेड इंजरी की मात्रा होती है तो हम उसके लिए एक स्केल यूज करते हैं, उसे हम GCS कहते हैं, मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। तो उसमें हम पेशेंट्स को पॉइंट्स देते हैं, सबसे कम पॉइंट्स होता है 3 और सबसे ज्यादा पॉइंट्स होती है 15। तो इस किसी पेशेंट में कितने पॉइंट्स बनते हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। तो माइल्ड पेशेंट्स में, जिनमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस बिल्कुल ठीक रहती है, उनके 15 में से 15 नंबर्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन, मान लीजिए कोई ज्यादा चोट नहीं लग रही, कोई फ्रैक्चर के चांसेस नहीं है, तो सिंपल NLJ6 मतलब दर्द की दवाई, अगर कोई चोट कहीं पर टांके लगने की जरूरत हो तो वैसे करके भेज सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर है या किसी सिर के अंदर ब्रेन में डैमेज नजर आती है और ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट नजर आता है, तो उसकी क्या साइज है उस हिसाब से न्यूरोसर्जन डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन करिए या फिर उनको ऑब्जर्व किया जाए, तो उस हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट चलती है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो जैसे कि आपका ऑपरेशन हो गया या सर्जरी हो गई, तो ये किस किस केसेस में करी जाती है और इसके बाद रिहैबिलिटेशन में कितना समय लगता है?
0: हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा तो 3 चरण होते हैं किसी भी हेड इंजरी को। अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को सीरियस हेड इंजरी है, तो पहला चरण होता है जैसे प्री हॉस्पिटल केयर, जहां पर इंजरी हुई वहां पर कोई भी स्टैंडर्ड्स बाय स्टैंडर्ड्स, अक्सर हमारे यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो पेशेंट को उठाते हैं या लेके हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो पहले उनको ट्रेंड होना चाहिए, बहुत सारी चीजें वो वहां पर कर सकते हैं जिसकी चलते पेशेंट को फर्दर इंजरी के चांसेस कम होते हैं। तो गोल्डन आवर में पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तो हॉस्पिटल में पहुंचने के पश्चात जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मान लीजिए पेशेंट को ऑपरेशन की डिसीजन होता है तो उसके कुछ वजह होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेन में, जैसे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कहते हैं, ब्रेन की कुछ झिल्ली होती है, उसके बाहर क्लॉट है या उसके अंदर क्लॉट है या ब्रेन ही डैमेज हो गया, तो ऐसे हालत में क्लॉट्स को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे हम क्रेनियोटमी कहते हैं, स्कल खोल के उस क्लॉट को बाहर निकाला जाता है। कई बार ब्रेन में चोट लगने के बाद सूजिश आती है, तो उस सूजिश को एकोमोडेट करने के लिए हमें ब्रेन में और जगह बनानी पड़ती है, तो हम उसे ड्यूराप्लास्टी कहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक न्यूरोसर्जन करता है।
1: तो क्या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है?
0: अब जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेशन जरूर होती हैं। अब जब भी हेड इंजरी होती है, उस प्रॉब्लम्स के या कॉम्प्लिकेशन के दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कि जब चोट किसी को लग गई तो लग गई, ब्रेन डैमेज हो गया तो हो गया, तो उस चीज को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि चोट लगने के बाद अगर जल्दी से पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट आवर या गोल्डन आवर में, तो डॉक्टर्स कुछ ऐसे चीजें करते हैं, मेडिसिन देते हैं ताकि फर्दर सेकेंडरी इंजरी ब्रेन में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्रेन के अंदर किसी को बहुत बड़ा क्लॉट है, तो उस क्लॉट की वजह से बाकी के नॉर्मल ब्रेन में प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से नॉर्मल ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, तो जरूरी है कि तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है उस क्लॉट को बाहर निकाला जाए। तो ये प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी को प्रिवेंट करना, प्राइमरी इंजरी तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ अपने प्रोग्राम्स के थ्रू इंजरी ही ना हो, लेकिन एक बार हो गई तो सेकेंडरी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स का रोल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कहां पर पेशेंट को इंजरी हुई है, उस तरीके से पेशेंट्स को फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी के मोटर एरिया में, दिमाग के ऐसे हिस्से जहां बॉडी का कंट्रोल होता हो, तो वो डैमेज हो गया तो आदमी को पैरालिसिस हो सकता है, तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर राजेंद्र एंड मैडम गुप्ता, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस या एंजाइटी हो तो इमीडिएटली माइंड कैसे काम कर सकते हैं टू कम्पोज वन सेल्फ? शिवम कनेक्टेड फ्रॉम जर्मनी।
0: नमस्कार शिवम जी, क्या टाइम है अभी जर्मनी में?
1: ये मैसेज है हमारे पास।
0: हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी तो कैसे अपने आप को कंपोज करें। तो आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपने ऐसे सिचुएशंस फेस किए होंगे। देखिए, इसका सबका अपना अपना एक तरीका होता है, तो इसके लिए हम सिंपल अगर हमारे अपने पुराने योगिक या वैदिक स्टाइल में जाएं तो वहां पर कुछ चीजें कही गई हैं, वही फॉलो करना है, मेरे ख्याल से वही सबसे बेस्ट चीज है। कुछ देर के लिए जैसे आप लंबी लंबी सांस लीजिए, 5 गहरी लंबी सांसें लीजिए, 1 से 10 गिनिए और किसी ऐसे इंसान को याद कीजिए जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो चाहे आपकी फैमिली हो सकती है या आपके बच्चे हो सकते हैं, तो आई एम श्योर कुछ देर में, कुछ सेकंडों में, कुछ मिनट में आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी बहुत लेवल तक कम हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वो अक्सर गिर जाते हैं। तो जब भी गिर जाए लगता है, माँ बाप को डर लगता है कहीं उनके सिर

0: पे चोट तो नहीं लग गई, तो क्या हर बार डॉक्टर को कंसल्ट करें या कुछ ऐसे स्पेशल सिम्टम्स हैं कि हाँ जब हमें लगे कि हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और कई बार होता है कि हम कुछ घरेलू उपचार भी देने लगते हैं कि हल्दी वाला दूध दे दिया कुछ इस तरह से, तो ये कितना सही है?
1: हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर बार छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ लक्षण, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे मान लीजिए चोट लगने के बाद बेहोश हो जाते हैं या दौरे पड़ सकते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ें होती हैं तब तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज मान लीजिए खेलते वक्त किसी को हल्की सी चोट लगी, छोटा सा अगर स्किन में कहीं पर स्कैल्प में कहीं हल्का सा कट लग गया और पेशेंट वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खा पी रहा है, चल फिर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को अगर इस तरीके की दूसरी तरीके की सिम्टम, जैसे मैंने कहा, अगर उस तरीके की बात होती है तो फिर आपको केयरफुल रहना चाहिए, तो मेडिकल कंसल्टेशन फिर कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हेड इंजरीज पे, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर, तो जैसे कि अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज जो हमें अपने पास रखनी चाहिए, अगर कोई गिर गया या किसी के चोट लग गई तो हम इमिडिएटली उसको पानी दें या उसके कोई कुछ लगा दें, मतलब हल्दी या लोग कुछ कहते थे ऐसे लगा दें, मतलब इमिडिएटली हम क्या करें, जो चीज हमें अपने पास हमेशा कैरी करनी चाहिए बाय द टाइम हम डॉक्टर तक या हॉस्पिटल तक रीच करें?
1: सबसे पहले तो साइकिलिंग करते वक्त ये सोच के कि हमें चोट लगे और हमें क्या कैरी करना चाहिए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब साइकिलिंग करते हैं या भी कोई बाइक चलाते हैं तो जैसे साइकिलिंग के लिए भी हेलमेट्स रिकमेंडेड है, नी गार्ड हो गए या एल्बो गार्ड हो गए, हाथ में ग्लव्स हो गए, तो इन सब चीज का होना बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा किसी भी नॉर्मल पब्लिक को कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज लेकर या रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूर ये जरूर है कि एक पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर शुरू से स्कूल टाइम में ही हम सब लोगों को ये सब एक चैप्टर या कोई इस तरीके से प्रोग्राम्स होते रहें तो लोग पब्लिक अवेयर रहें कि भाई ये चीज़ हो गई है तो इस सिम्टम्स के चलते अब हमें आगे क्या करना चाहिए, बस इतनी सी नॉलेज, इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि कोई पेशेंट या कोई नॉर्मल इंसान कहीं चलते हुए बेहोश हो गया तो कोई भी राहगीर चलता हुआ आके CPR करना शुरू कर देता है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि देखिए मीडिया ने इस चीज़ को ऐसा फैलाया कि सारे पब्लिक को अल्टीमेटली इससे हेल्प होता है। तो इसी तरीके से अगर हेड इंजरी के अवेयरनेस को भी अगर हम हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रोग्राम्स के माध्यम से फैलाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक बेसिक लेवल की नॉलेज आ जाएगी, तो हम सबको इन सब प्रश्न के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा।
0: डॉक्टर साहब, अक्सर कई बार होता है कि हमें हेड इंजरी हो गई है, ठीक है, उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ, लगता है ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है अच्छा ये हो रहा है, तो हो सकता है जब चोट लगी थी उसकी वजह से हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कितने समय तक हो सकता है, उसके बाद नहीं होता? क्योंकि अक्सर अभी जैसे कॉल्स भी हमारे पास आई तो कई सालों तक उनको लगता है कि तब लगी थी तो शायद उसका अब इम्पैक्ट हो रहा है।
1: हाँ, ये क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है कि जिसके बारे में अक्सर जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कुछ साल पहले हुआ था, ये तो शायद मुझे लगता है उसकी वजह से हुआ हो, तो इसका क्लियर आंसर देना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा है कि जैसे माइल्ड हेड इंजरी होता है, पहले कहा जाता था कि माइल्ड हेड इंजरी मतलब पेशेंट होश में है, ऐसे कोई मेजर बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसे हो सकती हैं जो कि इवन पेशेंट अगर माइल्ड हेड इंजरी थी तब भी हो सकती हैं बाद में कोरिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक से नींद नहीं आना, याददाश्त का ठीक से नहीं रहना या फिर चिड़चिड़ापन होना, इस तरीके की कुछ चीजें छोटी मोटी हो सकती हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि माइल्ड सी हेड इंजरी हुई थी कुछ साल पहले, उसके बाद अब और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज जो है वो कोरिलेट करने लगते हैं, वो जरूरी नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, शॉर्ट में आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को कि प्रिवेंशन के लिए वो क्या करें
1: इस पे? हाँ, जैसे मैंने कहा था कि एक हेड इंजरी एक एपिडेमिक की भांति है, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस, ये हमें हर लेवल पे फैलाना चाहिए, स्कूल से लेकर जनरल पब्लिक से लेकर हर ग्रुप में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑफिस में ये सब चीज का अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अगर हम इस अवेयरनेस को फैलाते हैं तो आई एम श्योर हमारे देश का एक जो हमारे ऊपर एक जो तमगा लगा हुआ है कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा हेड इंजरी होती है, तो ये तमगा हमसे हट जाएगा।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये है, इट्स एन एक्सीलेंट प्रोग्राम डॉक्टर अनिल कालरा, गुरुग्राम। वी लर्न बाय मॉक ड्रिल फॉर अर्थक्वेक वी मे फेस और नॉट इन आर लाइफ टाइम। वी ड्राइव 2-व्हीलर डेली, वी मस्ट वियर हेलमेट। तो ये भी एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें जब भी जाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं, चाहे हम बाइक चलाएं चाहे साइकिल चलाएं। तो डॉक्टर साहब, हाँ, जाते जाते हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं ये कहूँगा कि

0: जैसे कालरा जी ने कहा, जो भी श्रोता हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हमें किसी स्पेसिफिक ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है। जिस भी इंसान को इसके बारे में जरा भी नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, इसको फैला सकते हैं। एक दिन एक वक्त ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए किसी को कहीं भी चोट लगी हो तो आसपास जितने भी खड़े लोग हो, चाहे वो बाईस्टैंडर्स हो, पुलिस वाला हो, रिक्शे वाला हो, कोई भी हो, उन्हें मालूम है कि हमें क्या करना है। तो ये हमारा एक ड्रीम है ताकि हमारे हेड इंजरी के नंबर्स को और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकें।
1: तो श्रोताओं, सिर की चोट छोटी हो या बड़ी, सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। समय पर पहचान, सही उपचार और थोड़ी सी सावधानी जीवन को सुरक्षित बना सकती है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, यशोदा मेडिसिटी, न्यू दिल्ली। इससे पहले लगभग 3 दशक तक प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी एम्स न्यू दिल्ली भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, और साथ में अपने सारे हमारे चिंतन में श्रोता थे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही उपयोगी और जागरूकता से भरे कार्यक्रमों के लिए। साथ ही आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जाते जाते बस इतना कहूंगी, सावधानी ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही जीवन है। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूं अनुमति। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की।

0: दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाले याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ये मामला उठाया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। ट्विशा शर्मा 12 मई को कटारा हिल्स स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनके सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है ताकि युवाओं में इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। प्रेगाबालिन की बिक्री अब केवल पंजीकृत चिकित्सक से जारी वैध पर्चे के आधार पर ही की जा सकती है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए अगरतला रानी कमलापति स्पेशल रेलगाड़ी संख्या 01665 के नियमित संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी अब 11666 और 11665 अगरतला रानी कमलापति एक्सप्रेस के नाम से नियमित रूप से चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से सांसद विप्लव कुमार देव को इस संबंध में सूचित किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program. This is your RJ Chetan. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब हम जीवन में अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं. इसीलिए हमेशा याद रखिए कि मेहनत का साथ कभी मत छोड़िए. जिस दिन आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, उस दिन आप जरूर सफल होने की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. सक्सेस मंत्र और इस सार से जुड़ी ये एक प्रेरक कहानी हम आपको सुना रहे हैं. एक जंगल था जहां सुनहरे पंखों वाले बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी. वह पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को खाती थी, यही उसका प्रिय भोजन था. एक दिन वो भोजन की तलाश कर रही थी, तब उस चिड़िया की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी. उस व्यक्ति के हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था, जिसे लेकर वो जंगल से तेजी से गुजर रहा था. उसे इतनी जल्दबाजी में देख चिड़िया को हैरानी हुई. उस चिड़िया ने व्यक्ति से पूछा कि भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? किसी परेशानी में हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है. आज सुबह से ही मैं पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को इकट्ठा कर रहा था. इन्हें मैंने इस लकड़ी के बॉक्स में भरा हुआ है. इन्हें गांव के बाजार में बेचने जा रहा हूँ. इसके बदले में मुझे एक सुनहरा पंख मिलेगा. जल्दी जा रहा हूँ ताकि बाजार बंद न हो जाए. ये सुनकर चिड़िया को ख्याल आया कि उस व्यक्ति को सुनहरे पंख चाहिए और उसे खाने के लिए तने के कीड़े. एक दूसरे की आवश्यकता को पूरे करने के लिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. चिड़िया ने सोचा कि क्यों न वो इसे खुद का एक पंख देकर ये बॉक्स ले ले. ऐसे में उसे भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. चिड़िया ने उस व्यक्ति से कहा कि ये बॉक्स वो उसे दे दे, इसके बदले में वो उसे एक सुनहरा पंख दे देगा. वह व्यक्ति भी इस बात पर तैयार हो गया, क्योंकि उसे बाजार तक नहीं जाना पड़ा. चिड़िया ने उसे अपना एक पंख दिया और बॉक्स ले लिया. सिर्फ यही नहीं, उसने उस आदमी को रोज सुनहरा पंख देने का वादा किया और बदले में कीड़े लाने के लिए राजी कर लिया. इससे चिड़िया को बिना किसी मेहनत के रोजाना कीड़े मिलने लगे. वह रोज अपना एक पंख तोड़ती और कीड़े लेकर अपनी भूख मिटा लेती. लेकिन धीरे धीरे उसे उड़ने में परेशानी होने लगी, क्योंकि उसके पंख खत्म होने लगे थे. फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके सभी पंख खत्म हो गए. वे उड़ने में भी असमर्थ हो गई. पंख न मिलने पर उस आदमी ने उसके लिए कीड़े लाना बंद कर दिया. चिड़िया लाचार हो गई थी. वह खाना तलाशने में भी न जा सकती थी. कुछ ही दिनों में चिड़िया भूख प्यास से तड़प कर मर गई. तो दोस्तों, आपको ये मैसेज तो समझ में आया ही होगा. क्या सफलता का शॉर्टकट भी होता है? कैसे? होता तो है, लेकिन फिल्मों में. इसी कारण आज हर युवा बिना मेहनत करे रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है, जिस कारण उसको सामान्य कार्य करने का कोई रुचि नहीं रहता. ज्यादा फिल्म देखने के बाद हम जिंदगी में कुछ इन चीजों की उम्मीद करते हैं. अमीर लड़की को हमेशा प्यार हो जाएगा, जो कि इकलौती होगी, पढ़ी लिखी होगी, परी की तरह सुंदर भी होगी, तो शादी के बाद में अरबपति बन जाऊंगा, कोई रियलिटी शो जीतकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा. दो वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर न केवल दोस्तों में पॉपुलर होने के सपने, बल्कि ये उम्मीद करते हैं कुछ हफ्तों में मिलियन व्यूज आ जाएंगे. 500 रुपए शेयर बाजार में निवेश करके ख्वाब देखते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुनाऊंगा. किसी ने शेयर मार्केट के क्लासेस ज्वाइन कर ली थी. पता चला वो क्लासेस चलाने वाले सर खुद लॉस में है और वो अपना लॉस कवर करने के लिए क्लासेस चला रहे हैं. सोशल मीडिया पे काफी दिखावा चल रहा है. उनका लक्ष्य आपको आकर्षित करके कोर्स या कुछ प्रोडक्ट को बेचना है. ऐसे ही विचार आज के युवाओं को मानसिक तौर पे बर्बाद कर रहे हैं. आमतौर पर सफलता को पैसे से या भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है. अगर आपके पास पैसे हैं, आपका नाम है, तो आपको सफल व्यक्ति मान लिया जाता है. लेकिन यह सफलता की परिभाषा नहीं है, क्योंकि हर

हर व्यक्ति के अनुसार सफलता के मायने बदलते हैं। एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में है, एक विद्यार्थी की सफलता उसके पास होने में है, एक गरीब की सफलता खुद की भूख मिटाने में है, एक मरीज की सफलता उसके स्वस्थ होने में है। हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें सच्चा सुख देता है, यही सफलता कहलाता है। एक बार एक लड़का गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने दादी जी के पास गांव आया। एक दिन जब वह अपने दादी जी के साथ बिताता था तो उसने अपने दादी जी से एक सवाल पूछा कि सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस क्या है। इस पर दादी जी ने उसे पास ही की एक नर्सरी में जाकर वहां से दो पौधे खरीद लाने को कहा। उन्होंने एक पौधा घर के अंदर और एक पौधा घर के बाहर लगाने को कहा। उस लड़के ने ऐसा ही किया। बाद में दादी जी ने अपने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन पौधों में से सबसे अधिक सफल कौन होगा? लड़के ने जवाब दिया कि घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक खतरों से बचा रहेगा, जबकि बाहर जो पौधा लगाया गया है उसको काफी चीजों से खतरा है। दादी जी अपने पोतों की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों बाद लड़का वापस शहर चला गया। कुछ साल बाद जब वह लड़का वापस दादी जी से मिलने आया अपने गांव, तो उसने अपने दादी जी से पौधे के बारे में पूछा। दादी जी ने उसे घर के अंदर लगाया गया पौधा दिखाया। वो पौधा अब एक बहुत बड़ा पौधा बन चुका था। लड़के ने अपने दादी जी के ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यही पौधा ज्यादा सफल होगा, वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ? दादी जी उसे बाहर लेकर आई तो लड़का हैरान हो गया। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसने दादी जी से पूछा कि ये कैसे संभव है कि बाहर वाला पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और अंदर वाला पौधा उतना विकसित नहीं हो पाया, जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से सुरक्षित था। दादी जी ने उसे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल होती है। सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस यही है। कहानी का तर्क यही है कि मुश्किलों का सामना करने वाले को ही सफलता मिलती है। इसीलिए कहा गया है, लहरों से डरकर नदियां पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। With this wonderful motivational story, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मैं क्या जी सोने मकड़ो की हाल चाल है, ठीक ही होने। मेरा नाम है शालिनी और शो शुरू हो चुका है एल्फाजन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज करेंगे ढेर सारी बातें और आपके काम की बात ही होगी, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक तो बनता है ना। और मैं क्या, ए पुष्पा ये कपड़े धूप में मत सुखाओ रे, नहीं तो सूखेंगे नहीं, जल जाएंगे। सही कह रही हूँ मैं, जल ही जाएंगे, सूख कर एकदम कांटा हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी तेज कड़क धूप पड़ रही है और आप सूरज चाचू को क्या कोस रहे हैं, वो तो खुद जल बुनकर खाक हो चुके हैं। और आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने

क्लाइमेट चेंज पर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो ये हालत नहीं होती आज। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि जो प्रकृति आपको मुफ्त में इतनी सारी चीजें बांट रही है ना, उसने बांटी है, उसका आपने ना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रखी है, और इसलिए शायद ये हाल है। तो अगर आप प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो आपकी जिंदगी में चलचलाती धूप नहीं, घुंघरू बजेंगे।

घुंगरू तक तो ठीक है, लेकिन घर का फर्श मत तोड़ दीजिएगा, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। मैं कह जी आकाशमणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप। शालिनी कहते हैं मुझे और शो चल रहा है क्या? आप जानता, गॉड इट्स फ्राइडे।

और आज फ्राइडे के दिन हम बात कर रहे हैं एल्फोजन के इश्यूज की और उनके सॉल्यूशंस की। सिर्फ परेशानियों की बात नहीं करते हम, उनका इलाज भी कर देते हैं। चलिए बातें करते करते आपकी परेशानियों का इलाज ढूंढ ही लेंगे हम। तो जो सबसे पहला इशू एल्फोजन का आता है वो आता है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को लेकर। ना आप लगातार रील्स जो है स्क्रोल कर रहे होते हैं और पेरेंट्स जो है कहकर परेशान रहते हैं कि अरे बस करो बहुत हो गया, एक घंटा हो गया, दो घंटे। पर नहीं, आप कहते हैं एक ही आंख से तो देख रही हूँ मैं, क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने दो आंखें तो दी है, एक चली भी जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी मैं, पसंद नहीं आई मुझे आपकी ये बात। ध्यान रखिए, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए पेरेंट्स कर सकते हैं, गार्डियन कर सकते हैं क्या, वो ये सुन लीजिए कि आप ना बच्चों को गैजेट्स के बजाय अगर उनको आउटडोर या आउटडोर स्पोर्ट्स या पेंटिंग या डांस जैसी फिजिकल एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व करेंगे ना, तो उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा भी और वो अपने आप फोन से दूर हो जाएंगे। आपको बार बार उनसे कहना ही नहीं पड़ेगा, उनको खुद इतना इंटरेस्ट आएगा बाहर ना, वो सोशली एक्टिव हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो बस इतना ही है, और इसके अलावा यहाँ पर म्यूजिक का तड़का तो लग ही रहा है, तो आपको वो रिलैक्स तो मिलता ही रहेगा। अगली बात मैं आपको बताऊंगी क्या परेशानियां हैं, क्या इश्यूज हैं, और उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ये म्यूजिकल ट्रैक आपके लिए आ रहा है, सुनते जाइए। स्टे ट्यून्ड टू 102.6 विद मी शालिनी।

आपको गलत फहमी हुई है, आंख वाँख नहीं मारी जा रही है। मैं बता रही हूँ आपको क्या हुआ ना कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि पसीना आंख में चला गया और आंख अपने आप बंद हो गई है। मैं आपको ऐसी बातें बताती हूँ, बिल्कुल सच्ची बोलती हूँ। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं शो एल्फाजन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और साथ में हूँ मैं कौन, पहचान कान नहीं पहचान भाई, तुमने बता दी थी ना मैं किस लिए हूँ यहाँ पर, शालिनी कहते हैं मुझे। और मैं क्या कह रही हूँ आपसे आज, आपसे मैं बता रही हूँ कि एल्फाजन के इश्यूज क्या है और उनके सॉल्यूशंस क्या है। और ये कोई ऐसी कोरी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच में सॉल्यूशंस बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उन्हें ना अप्लाई करिएगा अपने ऊपर। तो हमारा जो दूसरा इश्यू आता है एल्फाजन का, वो ये है कि उनकी जो सोशल स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा उसमें लैक करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि फैमिली के साथ ना एक स्क्रीन फ्री भोजन या मील का टाइम बनाएं, जहां पर सब के सब फैमिली मेंबर्स साथ में बैठे हों और किसी के हाथ में मोबाइल ना हो। मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स की भी और घर के अदर मेंबर्स की भी, कि वो खुद भी ऐसा फॉलो करेंगे ना तभी अपने बच्चों को कह सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। और आपके बच्चों की आवाजें क्या आ रही हैं पीछे से कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है, मैं सच्ची बता रही हूँ, बस ना वाईफाई की तरह घर से बाहर निकलती है ना ट्रेन से बाहर हो जाता है। तो ब्रेन से बाहर जो हो जाता है ना, उसकी वाईफाई से निकलिए बाहर, घर से बाहर निकलिए और सोशल अपना जो स्टेटस है ना उसको स्ट्रांग करिए, लोगों से बात करिए। क्योंकि जब लोगों से बात करेंगे, थोड़ी गलतियां करेंगे, कुछ सीखेंगे, तभी तो आपका जो सोशल सर्कल है वो मजबूत होगा, है ना। चलिए, इतनी ज्ञान की बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसमें से आप अपनाएंगे कितना वो आपके ऊपर है। मेरे हाथ में क्या है वो मैं कर देती हूँ, आपके लिए एक गाना चला देती हूँ। और की स्टे ट्यून टू 102.6, यू विद मी शालिनी एल्फाजन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। You are listening.

एक बंधु एक सखा आपकी यहाँ पर भी बैठी हुई है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, जो बात कर रही है आपसे एल्फ जैन में, क्योंकि ये है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज स्पेशल शो है हमारा फ्राइडे का, और आज हम बात कर रहे हैं कि एल्फ जैन के इश्यूज एंड सॉल्यूशंस क्या हैं उसके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उनके अंदर ना इम्पेशंस होता है और शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ जरूरी नहीं कि अल्फा जेन में ही हो, बहुत सारे लोगों के इश्यूज हो सकते हैं, तो ये उनके भी काम आएगा। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ऐसा काम दें उन्हें, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, फैमिली मेंबर्स के लिए, या वो खुद भी अगर सुन रहे हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, स्वयं इलाज कर सकते हैं अपना वो। ठीक है, तो उनको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उनको समय लगे और मेहनत लगे, और उन्हें ना वेट करना पड़े, पेशेंटली उन्हें इंतजार करना पड़े उस चीज़ का आउटकम आने के लिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं, छोटे छोटे जब आप पेड़ों को पौधों को लगाएंगे ना, तो उनको जब ग्रो करते हुए आप देखेंगे पेशेंटली, आपको बहुत अच्छा लगेगा और पेशेंस आपका जो है लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो आप ना आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ अच्छा बनाना सीख सकते हैं, उसको बनाने में टाइम लगता है तो आपका पेशेंस यहाँ पर भी टेस्ट होता है, तो धीरे धीरे ना आप ये कला सीख जाएंगे। और यहाँ मैं जो पेशेंटली आपसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा रुक जाइए ना, चिल्ला रही हूँ, गाना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूँ, है हद ही हो गई है यार, बोलने नहीं देते मुझे।

ले ले, इतनी जोर से गाना नहीं चलाना, नहीं तो दीवारों पे क्रैक पड़ने लगे। मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, सब अंतर्यामी हूँ मैं। अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, आप तो कर पाएंगे नहीं। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूँ आपके साथ चालनी, और शो चल रहा है अल्फाजन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए।

0: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: विकसित

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ऑलराइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: समझ में आ गया या और समझाऊं मैं? लड़कियां लड़कों से क्यों नहीं होती? अब आप क्या चाहते हैं, पूरी दुनिया में बस एक ही तरह के लोग घूमे? फिर आप ही परेशान हो जाएंगे कि हाय रब्बा क्या हो गया, सारी तरह मेरे जैसे लोग घूम रहे हैं। तो ऐसी दुआ मांगी ही मत ना जिससे आप खुद परेशान हो जाए। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं अल्फा जन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एंड यू आर विद मी शालिनी। बात कर रहे हैं आज अल्फा जन के इश्यूज पर और उनके सॉल्यूशंस पर। तो उनका जो लैक ऑफ फोकस है ना, उसकी बात कर लेते हैं। पढ़ाई करते समय वो टीवी, मोबाइल और ज्यादातर अन्य गैजेट्स में वो लगे रहते हैं ना, जो उनको ना कमरे से दूर रखिए। और दूर रखने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, मैं जानती हूँ। जब किसी चीज की हमको लत लग जाती है ना, तो उसको छोड़ने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन पेरेंट्स के सपोर्ट से और आपकी जो विल पावर है उससे आप इस काम को कर पाएंगे। तो आप सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं उसमें काम करेगा ना पोमोडोरो टेक्निक काम करेगी। जैसे कि आप 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का पढ़ाई करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, जिससे क्या होगा ना, आप बोर नहीं होंगे, तो वो मोनोटोनस सी नहीं होगी लाइफ आपकी, तो आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों को डिजिटल नागरिकता यानी कि

डिजिटल सिटीजनशिप सिखा सकते हैं और पेरेंट्स इस काम में उनकी हेल्प कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए, जो आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं ना अभी पोमोडोरो वाला, उसके लिए थोड़ा सा एक बढ़िया सा स्वीट सा गाना चला सकते हैं। और क्या, इंजॉय करिए। स्टे ट्यून्ड टू 102.6, यू आर विद मी शालिनी ऑन एफएजेन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

0: सच्ची सोने लगते ने ना करे
1: ये तो ना आप उनके सामने ही कह रहे हैं, जब पीछे मुड़ते होंगे ना देख कहते हैं हद भी होगी यार, जब देखो तब नखरे दिखाती रहती है।
0: तो पकड़े ना जाए किसी दिन, ये बात याद रखिएगा।
1: Well, you are on Akashvani Rainbow 102.6 with me, Shalini, और शो चल रहा है Alpha Gen. Thank God it's Friday. और thank God इसीलिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं Alpha Gen के इश्यूज की और उनके सॉल्यूशंस की। तो इश्यू में अगर हम बात करें तो उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ की भी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, और सिर्फ उन्हीं के नहीं, आजकल अक्सर लोगों को इस तरह की परेशानियां देखी जा रही हैं, तो उनके लिए भी काम आ सकता है। खान पान का तो हम सभी ध्यान रखते हैं, तो हम सबको पता है हमको रखना ही चाहिए, और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आप बहुत ख्याल रखें, क्योंकि फिजिकल हेल्थ से ना मेंटल हेल्थ जो है आपकी वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी चलनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सब काम तो आप करेंगे, खान पान अच्छा रखेंगे, लेकिन और क्या करना है आपको, आपको

लोगों से जुड़ा रहना, अपनी फैमिली से जुड़ा रहना है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, हालांकि ऐसा आपको लगता है, अगर आप अपने मन से बात कहेंगे, दिल से, तो समझेंगे जरूर। लेकिन अगर ऐसा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या फिर आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं। कई बार ना बात करने से बातें हल हो जाती हैं, और छोटी सी बात होती है लेकिन हमको बड़ी लगती है, तो आप बात करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप एक बात और सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ ना कि एक बंदा ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं ना बहुत परेशान हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ के इशूज़ हो रहे हैं और ये वो ब्ला ब्ला। तो वो कहता है ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, गुब्बारे में इन सारी चिंताओं को भरकर उड़ा दूँ उन्हें। तो कहता है कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट कहता है, और वो जाने लगता है इतना कह के, तो बोलता है कि पर वो जो गुब्बारा उड़कर भरकर उड़ाएंगे ना, उसमें मेरी फीस के पैसे भी डाल दीजिएगा, मैं लपक लूंगा। तो ऐसा कहने की नौबत किसी को ना आए। अगर आप किसी की सर्विसेज ले रहे हैं ना, तो आपको उसकी फी भी पे करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ आपको कोई फी भी पे नहीं करनी है, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपके लिए बिल्कुल फ्री है एंटरटेनमेंट, और साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होर की चाहिए। दसो, चलो मत ही बताओ अभी, फिलहाल तो गाना सुन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है जी।

देसी गर्ल तो जो भी कहे, लेकिन ये गर्ल आपसे कहना चाहती है कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी यू आर, क्या नाम है मेरा भूल गए क्या आप? चलिए मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है शालिनी और आप सुन रहे हैं अल्फा जेन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और आज हम बात कर रहे हैं अल्फा जेन के इश्यूज की और उनके सॉल्यूशंस की। हमने ढेर सारी बातें करी और अब हम, क्योंकि जाने का समय हो रहा है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे अल्फा जेन है ना, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ज्यादा रीजनिंग उनको लगती है कि आप कोई भी बात उनसे कहें तो उनको लगता है कि उनका रीजन उनको पता होना चाहिए। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि है बस बान चल रही है आजकल, है मैं कह रही हूँ ना ऐसे होता है इतने सालों से, तो हम भी करते हैं तो तू भी कर, पर ऐसा नहीं चलता है। आपको बताना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो मानने से इनकार नहीं करते हैं, उनको बस जानना है कि जो वो कर रहे हैं वो क्यों करना है और वो करने का रीजन क्या है, उससे उन्हें क्या बेनिफिट होगा, और वो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो आपकी आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहे हैं या आपकी बात नहीं मान रहे, आपको उन्हें समझना पड़ेगा। थोड़े से डिफरेंट है वो, लेकिन गलत नहीं है वो। अगर आप उन्हें रीजन दे दे तो उसमें क्या बुराई है, वो आपकी बात शायद बहुत अच्छे से मान जाए और फिर उसे कभी ना भूले, है कि नहीं? सो अभी जाने का टाइम हो गया, इतनी सारी बातें करने के बाद जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ता ही ना, क्योंकि और भी तो और चीज यहाँ पर आएंगे, है कि नहीं? तो आप करिए उनका इंतजार और मैं आपसे लेती हूँ विदा। मैं जी अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिए, ते गाना सुनी जाए, ठीक है जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा

कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिनभर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और ये आ गई है सुषमा की वाणी आकाशवाणी पर रेनबो पर यानी 102.6 पर और इस वाणी के साथ रहेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स में एक

बिल्कुल आज मैं ऊपर आसमां नीचे, लेकिन आसमां की जो गर्मी है ना, ओ हो बेतहाशा दिल्ली वालों पर छाई हुई है। और दिल्ली में अर्बन हीट का जो संकट है बहुत तेजी से गहराता जा रहा है। अब देखिए, जो 43-44 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है।

है ना, और राजधानी का करीब 76% जो हिस्सा है वो लगातार तेज गर्मी की चपेट में आ गया है और कई इलाकों में तापमान 52 डिग्री जैसा ही महसूस हो रहा है सभी को। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE की एक नई रिपोर्ट में ये बात खुलासा हुई है, इस बात का खुलासा हुआ है और ये बताया जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि बढ़ती गर्मी अब सिर्फ मौसम की परेशानी नहीं रह गई बल्कि ये लोगों की सेहत, जीवन और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा खतरा बनती जा रही है। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है, सोचिए जरा। हम पेड़ लगाने पर बात करते हैं ना, करते हैं, करते कम हैं। अब गानों के जरिए बारिश की बात मैं कर सकती हूं, है ना। अगर हीट स्ट्रोक आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जरा सोचिए। बिल्कुल, अगर किसी को हीट स्ट्रोक आए तो तुरंत इमरजेंसी सेवा को कॉल करें या फिर मरीज को नजदीकी अस्पताल लेकर जरूर जाएं। सबसे पहले ठंडी वाली जगह पर लेकर जाएं उस मरीज को। आपकी अपनी जिंदगी है, आपको तो ख्याल रखना ही होगा दोस्त। सुन रहे हैं सुषमा के साथ सिटी लाइट्स और ये गाना बज रहा है आपके लिए फ्रॉम द मूवी फरीब।

0: बिल्कुल, बारिश तो जब होगी तब होगी, क्योंकि मॉनसून आने में अभी थोड़ा सा समय है। लेकिन आकाशवाणी मना रहा है अपने 90 वर्ष। बिल्कुल, अपने कार्यकाल के 90 वर्षों के उपलक्ष में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हर दिन एक नया एपिसोड। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी एट 90 एपिसोड नंबर 34।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात होगी नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के बारे में।

0: अगस्त 1956 को आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति और नाट्य कला घर घर पहुंचाने के लिए नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्लेज की ऐतिहासिक शुरुआत की। ये पहल उस गौरवशाली श्रृंखला का हिस्सा थी जिसके अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक और नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स जैसे सफल प्रयोग 1952 और 53 में पहले ही किए जा चुके थे। इस श्रृंखला का आधिकारिक शुभारंभ जुलाई 1956 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला नाटक प्रफुल्ला के प्रसारण के साथ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो नाटकों, ओपेरा और फीचर्स के माध्यम से विविधता में एकता की भावना को सशक्त करना था। तो श्रोताओ, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स अपनी दोस्त सुषमा के साथ। और सिटी लाइट्स में अगर सिटी की बात ना की जाए, ट्रैफिक की बात ना की जाए, तो फिर सिटी लाइट्स किस बात का। अब देखिए, आप बहुत सारे लोग निकल पड़े होंगे अपने अपने ऑफिस से सड़कों पर अपने घर की ओर, लेकिन रास्ते में कहां कहां ट्रैफिक है ये मैं बता देती हूं आपको। अगर आप जा रहे हैं साउथ दिल्ली की तरफ यानी कि सरोजनी नगर की तरफ, तो यहां थोड़ा सा हल्का सा ट्रैफिक आपको मिल सकता है। और हौसखास की तरफ, हौसखास से जा रहे हैं अगर आपको तो मीनार की तरफ, तो यहां भी हल्का सा ट्रैफिक मिलेगा आपको। ज्यादातर ये ट्रैफिक होता है जब आप हौसखास की जो रेड लाइट है वहां से जब अदचिनी से होते हुए सीधा निकलते हैं तो थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाता है। फिर चलिए दूसरी ओर चलते हैं महिपालपुर की तरफ, तो यहां पर भी थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक देखा जा सकता है। और दिल्ली में अगर सेंटर एरियाज की बात करें तो ये कहां पर है, ये है पहाड़गंज का एरिया। बिल्कुल बहुत अच्छा वाला ट्रैफिक होता है यहां पर, बहुत स्लो है ट्रैफिक। और रेड फोर्ट की तरफ भी ट्रैफिक है बिल्कुल। यहां तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा ट्रैफिक, क्योंकि अब या 24 तारीख के आसपास यहां पर रूट भी डायवर्जन आपको देखा जा सकता है, वो भी मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। सदर बाजार की तरफ भी ट्रैफिक है। अब देखिए आप कहां जाना चाहते हैं, जल्दी से देखिए अपना गूगल मैप और सोचिए ये मसक कली गीत के साथ कि आप चलिए किस गली, जरा ये तो बताइए। बता सकते हैं आप मुझे 9868107070 पर।

बिल्कुल मसकली मसकली गाने के साथ हमें बहुत सारे ऐसे पंछी भी नजर आ जाते हैं चिड़ियाघर में, जिन्हें इस तपिश में बहुत जरूरत होती है पानी के फवारे की, मतलब उन्हें भी तो चाहिए ठंडक। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चिड़ियाघर आए लोग, जब भालू के बाड़ा नंबर 4-5 और बंदर के बाड़ा 1-9-15 में जाते हैं तो उन्हें अलग ही नजारा देखने को मिलता है। कई बार उन्हें भालू और बंदर आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब पहली बार विदेशी पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए मिस्टिंग सिस्टम के इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, भालू और बंदर को फ्रूट आइसक्रीम देने से उनमें ठंडक के साथ साथ ताकत भी आ जाती है और बंदर आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं। गर्मी से बचाने के लिए इस साल भी 1 अप्रैल से वन्य जीवों के लिए इंतजाम किए गए हैं और बहुत अच्छे से इंतजाम चल रहा है यहाँ पर, और विशेषकर विदेशी पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। परंपरागत साधनों के अलावा मिस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, पक्षियों के बाड़े में फव्वारे लगाने की भी योजना हो रही है। तो इस तरह से अगर ऐसा होगा तो सोचिए, इंसान तो है ही, लेकिन ये तो बेजुबान है, ये तो कुछ नहीं बोलते कि इनको पानी चाहिए। आप तो देखिए बिंदास होकर बोल देते हो, कहीं भी उठ के चले जाओगे, एसी वाले रूम में सो सकते हो, है ना, आइसक्रीम खा सकते हो, लेकिन ये तो हम मानवों पर डिपेंड हैं, इसलिए इनकी केयर बहुत जरूरी है। अगर आपकी गर्मी भी पेट्स हैं तो उनका ध्यान रखिए।

मुझे खाने सिवन गोली, मैंने बोली योर वेरी जॉन मैनेजर कुछ ऊंचा सुनते हैं। हाँ मैंने मांगा नहीं खाना, तुम थोड़ी मुझे लगते हो लंगूरी, व्हाट्स हैपनिंग मैन। बोला मैडम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं नया हूँ एम्प्लॉई, मुझे नौकरी ना भाई, फिर भी मैं करूँगा। बोलिए बोलिए क्या आपको चाहिए।

Irgendwie

बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी मिलना ही चाहिए, पंछियों पर फवारे होने चाहिए, मिस्टिंग होना चाहिए, और आप पर भी बिल्कुल अपना ख्याल जरूर रखें। और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिन के समय 1 से लेकर कम से कम 4 बजे तक के बीच में जो टाइम होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है, उससे आपको अपने आप को बचाना है। बिल्कुल गॉगल्स लगाइए। अगर आप फीमेल हैं तो है ना, आपका स्टोल अपने बैग में रखते हो, उसे जरूर इस्तेमाल करिए। और हाँ, छतरी जरूर लेकर जाइए, और पानी की बोतल तो हमेशा आपके बैग में होनी ही चाहिए।

बिल्कुल, कयामत तक किसी का होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गाने जब बोलते हैं तो दिल की बात कह ही डालते हैं। अब आकाशवाणी भी अपने पूरे 90 वर्षों का जो सफर है उस पर इतने सारे कार्यक्रमों की सौगात आपके लिए लेकर आ ही रहा है, तो क्यों ना हम सुने अपनी आकाशवाणी का एक प्यारा सा गीत आपके लिए।

संगीत आपके लिए लेकर आ गई थी अपनी आकाशवाणी का। बिल्कुल, आकाशवाणी की जो परंपरा है इतनी पुरानी, 90 वर्ष होने जा रहे हैं और इसके लिए बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और बहुत से कार्यक्रम भी आकाशवाणी अपने लेकर आ रहे हैं अपनी श्रोताओं के लिए।

0: बिल्कुल, अपने लक्ष्य को आपको पहचान के रखना है। और आजकल के जो बच्चे हैं उनको मायोपिया की भी समस्या होती जा रही है, इस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है पहले।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार, आकाशवाणी दिल्ली, 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बनें। हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें।

0: विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं सुषमा को प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। हम बात कर रहे थे मायोपिया के। देखिए, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो जेनेटिक्स भी होती हैं, लेकिन कई बार क्या है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हमेशा बच्चे ज्यादातर मोबाइल पर, कंप्यूटर, टीवी या लैपटॉप पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, या फिर कई बार किताबों को बहुत पास रखकर भी पढ़ते हैं, उससे भी उनकी आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, जो कि एक मायोपिया का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। और इसके अलावा बच्चे कमरे में ही बैठे रहते हैं, प्राकृतिक रोशनी या धूप में पर्याप्त समय बिल्कुल नहीं बिताते, यानी कि बच्चे घर के अंदर अधिक रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज में कम शामिल होते हैं, और ऐसे ही बच्चे ज्यादातर मायोपिया का शिकार होने से पीछे नहीं होते, यानी उनमें ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और आंखों पर जोर पड़ना, यानी रोशनी जब आंखों पर या किताबों पर कम पड़ती है, यानी रूम में अगर रोशनी का पर्याप्त मैनेजमेंट नहीं है और बहुत जोर लगा के बच्चों को किताबों को पढ़ना पड़ रहा है, तो भी एक ये कारण हो सकता है। तो ऐसे में आपको विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक हेल्थ टिप है, बच्चों का ख्याल रखें, बहुत कुछ देखना है उन्हें इस दुनिया में, बहुत आगे की पढ़ाई करनी है, और ये छोटी उम्र से ही बच्चों की केयर हो जानी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, और केयर की जहाँ तक बात आ रही है, तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ बच्चों के पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों का जो डाइट होता है ना, उसे मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सुन रहे हैं ना आप जो मैं आपसे कह रही हूँ? बिल्कुल सुनिए आप।

बिल्कुल दीवाने की सुने ना सुने लेकिन मेरी जरूर सुने, क्योंकि मशीन में फोन नंबर डाल सीधे व्हाट्सएप पर आपको मिलने वाला है मेट्रो का टिकट। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट खरीदना अब और भी आसान होने जा रहा है। अब QR कोड वाला डिजिटल टिकट लेने के लिए किसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, DMRC ने स्टेशन पर सेल्फ सर्विस मोबाइल टिकटिंग कियोस्क शुरू किए हैं, जिनकी मदद से यात्री सीधे अपने व्हाट्सएप पर टिकट प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये जो सुविधा है केवल 12 मेट्रो स्टेशन पर शुरू की जा चुकी है। बिल्कुल, और ये जो कियोस्क हैं, ये जो टिकट वेंडिंग मशीन है उसके पास लगाए गए हैं। बिल्कुल ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है।

देखिए घरों में तो हम बहुत सारी बचत करने की कोशिश करते हैं, पैसे रुपयों की तो बचत करनी ही चाहिए आपको। अब बहुत सारी चीजों की बचत के लिए तो आपको पता ही है कि आपको पेट्रोल तो बचाना ही है, साथ ही साथ आपको बिजली भी बचानी चाहिए। देखिए तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने पावर मास्टर प्लान 2030 भी तैयार किया है। इस प्लान के तहत दिल्ली में पुराने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इस साल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 909 करोड़ और अगले साल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने पर 7,795 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब देखिए आपकी भलाई के लिए ये सब कुछ हो रहा है। बस इतना ही कहूंगी कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहें और गर्मी में तो बहुत राहत लेने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से हीट स्ट्रोक बढ़ रहा है उसमें आपको बहुत केयर करने की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रोग्राम है आपके लिए मैसेज मसाला मिक्स। मुक्ति आ गई है स्टूडियो में, मंद मंद मुस्कुरा रही है, मुझे देख रही है। सुषमा आ जाएगी और मैं आ चुकी हूँ, अब वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई देगी। तो मुक्ति के साथ आप रहिएगा, मैं सुषमा फिर मिलूंगी आपसे। टिल देन टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को

0: और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, हवाएं बहुत ही ज्यादा बेईमान हो रही हैं और इन सबसे कहीं ना कहीं हमें दूर रहने की जरूरत है। कहीं इसकी चपेट में अगर हम आ गए तो फिर हम बीमार हो सकते हैं और बाकी जो चीजें हैं उनका लुत्फ नहीं उठा सकते। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में, और आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूं। आकाशवाणी रेनबो 102.6 साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर देर किस बात की है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और एक सुंदर से खूबसूरत से के साथ करते हैं स्वागत। और फिर किस पे करेंगे आज खास विशेष चर्चा, बताएंगे। फिलहाल ये सॉन्ग आपके लिए।

बिल्कुल वादा आपसे भी रहा कि आपके जो भी मैसेजेस हम तक पहुंचेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, आपके अपनों तक जरूर पहुंच जाएंगे। और लेकिन उससे पहले हम जो विषय है आज के उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी को अपनी बात कहने का कोई सही समय होता है या जब दिल करे तब वो बात कह देनी चाहिए, आपको क्या लगता है? भाई आप हमें बता सकते हैं कि जब भी आप किसी को कोई बात कहना चाहते हैं तो कुछ आसपास देखते हैं, कुछ सोचते हैं उस बारे में, या फिर जब मन करता है उस बात को कह देते हैं कुछ सोचे समझे बिना, आपको क्या सही लगता है और क्यों ऐसा लगता है कि बस कह देनी चाहिए? बताइए 9868107070 पर अपनी बात, और मुक्ति तक पहुंच जाएंगे ये सभी मैसेजेस। और ठीक 7 बजे तक मैं आपके सभी मैसेजेस ऑन एयर जरूर करूंगी। अगर सही समय तक मेरे पास पहुंच गए तो आपको इसी विषय पर आज चर्चा करनी है, और इसी विषय पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजने हैं कि किसी को अपनी बात कहने का कोई सही समय होता है या जब दिल चाहे तब वो बात कह देनी चाहिए। सोचिए, थोड़ा विचार विमर्श कीजिए और गर्मा गर्मी में जवाब मत दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। मौसम गर्म हो या ना हो, तो मौसम है, बदलते रहेंगे, अभी कुछ है और अभी कुछ हो जाएगा, तो फिर उसमें अपना ध्यान ना लगाएं, मौसम बदलते रहेंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि समय जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है, सोच समझ कर ही कुछ कहना चाहिए या करना चाहिए? चलिए देखते हैं आप क्या कुछ बातें हमें बताते हैं, फिर मैं भी आपको जरूर बताऊंगी इस बारे में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और ट्रैक के साथ आपको जोड़े जाती हूँ।

और ये मैसेज हम तक पहुंचा है विनोद सप्रा का, दिल्ली 6 से ये मैसेज आया है और वो लिखते हैं कि बात हमेशा सोच समझ के बोलनी चाहिए क्योंकि तीर का घाव फिर भी भर जाता है पर जुबान का घाव कभी नहीं भरता, तो सोच समझ कर ही कहो। ये बात तो एकदम सही है और ये मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता का मैसेज आया, वो लिखते हैं हर बात कहने का एक समय होता है, एक मौका होता है, ऐसा नहीं है कि मुंहफट आदमी की तरह कोई भी बात कह दी। मान लिया कि सामने वाले के साथ दो चार व्यक्ति हैं तो उनके सामने तो वो बात कही नहीं जाएगी, बात कहने के लिए सामने वाले का मूड

एकांत देखा जाता है। पर ये बात तो है कि ऐसे ही कोई बात नहीं कही जाती, कभी ना कभी सोचना भी होता है। और ये है कि मैं यही कहना चाहूंगी आज के टॉपिक पर, वैसे तो हमें हमेशा अपनी बात कहने का सही टाइम पर ही सोच समझकर बोलनी चाहिए, क्योंकि हमें सामने वाले इंसान को भी देख लेना चाहिए कि हम सडनली अपने दिल की बात बोल देंगे और वो बुरा मान जाए, इसलिए सोचना बहुत ही जरूरी है पहले ही। अंशी शर्मा का हस्तिनापुर मेरठ से ये मैसेज आया है। और एक और बहुत खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचा था, तो चलिए ढूंढ ही लेंगे हम उसको। दिल जब चाहता है तभी कहना चाहिए, क्योंकि जब बात दिल में आती है वही सही समय है। किसका मैसेज है? वर्षा का मैसेज आया है हमें ये। और यही कहना है कि अपनी कोई भी बात कहने के लिए सामने वाले का मूड देखना ज़रूरी है। कभी भी गर्म जोशी में और जल्दबाजी में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। ये है नीलम स्वाति और किशु का रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से ये मैसेज। नरेंद्र सोनी का देवगढ़ पटियाला से मैसेज है कि हमारा मानना है हमेशा सोच समझ कर ठंडे दिमाग से ही रिएक्ट करना चाहिए, फास्ट ट्रैक नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही जवाब दें तो बेहतर होगा। ये है, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और साथ ही वो कहना चाहते हैं जो भी कहना है सच्चे साफ दिल से कह दीजिए, क्या समय का इंतजार में से क्या समय का इंतजार करना नहीं कर सकते, समय का इंतजार नहीं कर सकते या फिर सामने नहीं मिल सकते तो कॉल पर ही बात कह देनी चाहिए। ये भी सही बात है, कई बार समय ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बात कहना ज़रूरी होता है। और ये मैसेज है, सोच समझ के बोलनी चाहिए, यदि आपकी ज़बान के कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाले को भी दिक्कत होगी और ख़ुद को भी दिक्कत होगी, इसलिए हर बात सोच समझ कर ही बोलनी चाहिए और सही समय पर बोलनी चाहिए। सोनू का ये मैसेज हम तक पहुंचा है। किसी से अपनी बात कहने से पहले सामने वाले को मुड़ कर देखना चाहिए, नहीं तो मीटिंग में बॉस भी गुस्सा या नाराज़ हो जाता है, डांटते हुए कहता है पहले तुम्हें मेरी बात सुनना ज़रूरी नहीं है, मीटिंग है मंच नहीं होता है। ऐसा मेरा अनुभव कहता है, बोलने से पहले सही समय और खुद का दिमाग भी देख लेना चाहिए। अनिल शर्मा का सरिता विहार से मैसेज, भाई बॉस से तो कोई भी बात कहने से पहले समय लेना ही चाहिए, कुछ बातें दिल से निकलती हैं उन्हें देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त और समझदारी चाहिए, क्योंकि सही बात भी अगर गलत समय पर कही जाए तो उसका असर वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। मोहम्मद सरफराज आलम का दर्शना बाजार अररिया बिहार से मैसेज आया है। और ये है, गाँव से अगर बात दोस्तों को कहनी है, कुछ बतानी है तो बिना सोचे समझे कह दो और कभी भी कह सकते हैं। दूसरे किसी को कहना है तो आसपास देखना पड़ता है, स्थिति देखनी पड़ती है, सही समय का इंतजार करना पड़ता है, तभी कहना चाहिए। तो भाई मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं सोच समझ कर आप सारी बातें करते हैं। कोई ऐसा भी है जो बिना सोचे समझे बस कह देते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो भी आप हमें बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9868107070 पर। मुक्ति को है आपकी बातों का इंतजार, आपके मैसेजेस का इंतजार कि क्या किसी भी बात को कहने का कोई सही समय होता है या फिर जब दिल चाहे तब वो बात कह देनी चाहिए।

0: तो बहुत कुछ खास है आपके मैसेजेस में, और वही मैसेज पढ़ पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि वाकई में इतना सोच समझ लेते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सोचती समझती हूँ, बस कह देती हूँ। रजनी शर्मा का मैसेज आया बागपत से कि ये तो सच है कि सोच समझ कर ही बोलनी चाहिए, पर कभी कभी जवाब देना भी पड़ता है क्योंकि सामने वाला बोलता ही रहता है, तो उसे चुप करवाने के लिए आप भी बोलते ही रहते हैं। फिर ये है कि कोई भी बात कहने का हर समय सही नहीं होता है, सिचुएशन देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। दिनेश कुमार भंडारी का नेपाल से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। अपने दुख सुख सबके साथ शेयर नहीं करने चाहिए क्योंकि नमक तो सबके घर मिलता है पर मरहम किसी एक के ही घर मिलता है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का मैसेज आया है ये शांति नगर सोनीपत से, और ये है कि वीरू बख्शी का मैसेज है और वो लिखते हैं कि आप सच कह रहे हैं कि टॉपिक बहुत ही अच्छा है। यदि पहला इंसान ही गलत बोले और उसके न्यूज़ बहुत गलत हो तो कहाँ तक धैर्य रखा जाएगा, फिर उसका जवाब तो देना उचित ही होगा मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल, कई बार धैर्य नहीं रखना भी ज़रूरी होता है और कई बार बिना समय देखे कह देनी पड़ती हैं बातें। अगर खास हो तो कह देना चाहिए तुरंत, और अर्जेंट बात तुरंत कह देनी चाहिए। किसी का नुकसान हो इससे पहले बात कह दो, भरपाई हो जाती है। ये पश्चिम बंगाल से मैसेज हम तक पहुंचा है। कुरेश रिजवान का मैसेज आया जहांगीरपुरी से। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। कुछ बात कहने से पहले समय देख लेना चाहिए और कुछ बातों में नहीं देखना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं ना कि आप देखते हैं या नहीं देखते हैं। जब किसी को कुछ कहना होता है तो मैं समय का इंतज़ार करता हूँ, इससे मेरा काम आसानी से हो जाता है। कोई कहीं से थक कर आया है तो आप उसी समय उसे कुछ करने को कहें तो वो उत्तेजित हो जाता है, इसलिए थोड़ा सोचिए। रंजीत कुमार का बिहार से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के नाम पर कुछ भी बोल देना सही नहीं है, सोच समझ कर पोलाइटली ही अपनी बात बोलनी चाहिए। शैलजा का नीमराणा से ये मैसेज आया है, सही बात सही समय पर कहना जरूरी होता है। ये बात तो है। सिद्धार्थ का मैसेज है, अपनी बात को कहने का सबसे सही समय वही होता है जब आप शांत हो और सुनने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। ये सब सुनिश्चित करने के लिए सही पल का चुनाव करना बेहद आवश्यक है। जल्दबाजी में कही बातों का असर सामने वाले पर आपकी नकारात्मकता छवि को भी दर्शा सकता है, इसलिए सोच समझकर कही जाने वाली बातों का असर हमेशा ही लाभदायक परिणाम लिए होता है, हमारा तो यही मानना है। ये हमारे नियमित श्रोता हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू, मधु का मैसेज आया है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले से सही जवाब मिले, सही चीज़ें हों, तो फिर थोड़ा सा शांत होकर ही आपको बात कहनी चाहिए। यही बात भी मैंने रेडियो पर ही सुनी थी कि जुबान के अंदर अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है और ना चाहे तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, परंतु जीव है कि कुछ हजम नहीं होता, सब बातें कह देते हैं। और ऋतु का मैसेज है दिल्ली से, गोपाल पार्क से, कहती हैं कि कोई बात दिल में हो तो सामने वाले से कर दो, कई बार बहुत देर हो जाती है बात कह देने में, पता कह दो सामने वाले को भी खुशी होती है। सोनिया विहार से दिल्ली से मैसेज आया, मेरा कहना है जो भी बात हो बिना डरे कह दो, सिचुएशन के हिसाब से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सिचुएशन के हिसाब से बात करनी चाहिए, जो दिल में आए बस कह देना चाहिए। हमें भी यही लगता है, आपको भी लगता है, वाह क्या बात है, हम सब एक ही पेज पर हैं, हम सब एक ही किताब पर हैं। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सोच समझ कर कहना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं सोच समझ के नहीं कहना चाहिए। तो कोई अगर इसके बीच में किसी के पास किस्सा कहानी भी है इस बात को लेकर, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं क्यों कभी सही समय का इंतजार करना चाहिए या क्यों कभी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो बात आए दिल में कह देनी चाहिए। चलिए, इन्हीं सब के बीच में आप भी अगर नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि किसी भी बात को कहने का सही समय होता है या नहीं, या जब दिल चाहे कह देनी चाहिए। 9868107070 पर बता दीजिए अपनी बात और जुड़ जाइए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: मैं हूँ प्रगति
6: और मैं हूँ विकास,
7: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
8: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार,
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
5: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें।
10: जनगणना कार्य निदेशालय हरियाणा, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
11: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
12: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
13: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
12: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
13: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

हाँ बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और साथ ही साथ म्यूजिकली और दिल से दिल तक हम पहुंच रहे हैं सीधा आप तक। तो भाई आपके साथ बनी रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, तो हम आपसे दूर और आप हमसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन आपके जो खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं कि कोई भी बात कहने का कोई सही समय होता है या फिर नहीं, या जो भी बात दिल में आए बस कह देनी चाहिए, बोल देनी चाहिए, क्या है आपकी राय, जानना चाहते हैं आप इसे, और आपके व्हाट्सएप मैसेज जो हम तक पहुँच रहे हैं 9868107070 पर, अगर आपने अभी सुनना शुरू किया है तो 9868107070 पर अपनी बात हमें पहुंचा सकते हैं। जब कोई बात करनी हो तो पहले सामने वाले को देखिए वो किस हाल में है, बिना सोचे कोई बात ना करे जिससे सामने वाले को तकलीफ ना हो। यह है यूपी से हमें मैसेज आया है, फारूक अली खान, फैजी फराज फरहीन का मैसेज हम तक पहुंचा है, बहुत ही लंबा मैसेज हम तक पहुंचा है। शब्दों की कीमत सिर्फ उनके अर्थ से नहीं, उन्हें कहने के सही समय से तय होती है। जब कहने वाले के पास समझ और सुनने वाले के पास धैर्य हो तभी बात दिल तक पहुंचती है। भूख, गुस्सा, थकान और देर रात, ये चार हालात अक्सर रिश्तों में गलत फहमियां पैदा कर देते हैं, इसलिए ऐसे समय में खामोशी बेहतर होती है। तारीफ और शुक्रिया तुरंत कह देना चाहिए क्योंकि अच्छी बात में देर उसका असर कम कर देती है, लेकिन शिकायत, नाराजगी या गुस्से में बोले गए अक्सर शब्द जख्म दे जाते हैं, इसलिए उन्हें कहने से पहले थोड़ा ठहरना जरूरी है। जरूरी फैसले शांत और ताज़ा दिमाग से लो और माफ़ी मांगने में कभी देर मत करो। निजी बातें हमेशा अकेले में करो क्योंकि भीड़ में कही गई सलाह अक्सर तमाशा बन जाती है। याद रखो, रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, सही वक्त पर बोले गए शब्दों से मजबूत बनते हैं। ये मैसेज हमें आया है हांसी हरियाणा से, रामधारी आवाना का। भाई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिटेल में एकदम सही बात आपने हम तक पहुंचाई है, और ये है कि भाई मेरा नाम तो पढ़िए। सोनिया विहार से यश का मैसेज आया कि मेरा कहना है जो बात हो बिना डरे कह देनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से बात करनी चाहिए। और यह कि आजकल मैं न्यूज़ ऑन AIR पर आपका चैनल सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई शुक्रिया, आप सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़िए, और अगर आप सुन रहे हैं तो बताइए आपकी क्या राय है। और आज के टॉपिक पर मेरा मानना है कि सबकी बातें सुने ताकि उन्हें सम्मान मिल सके, बिना मांगे सलाह देने से बचे। देहरादून से आलोक पवार का और मिन्नी का ये मैसेज आया है। पर ये तो है कि सुननी तो ज़रूर चाहिए, सुनते नहीं हैं, सिर्फ कह देते हैं या कहते ही रहते हैं, ये इसी में कहीं ना कहीं हम जो है वो गलत हो जाते हैं। सोच समझ कर ही इंसान को बोलना चाहिए क्योंकि रिश्ता हो या दोस्ती तभी तो दूर तक चलती है। इंसान के बोल ही बात बनाते हैं और ख़राब करते हैं, इसलिए पहले सोचो फिर बोलना चाहिए अगर रिश्ता और दोस्ती पक्के रखने हैं तो। राजेश अनीता का मैसेज आया है मेरठ से, और यह है भुवनेश का मैसेज अशोक विहार से, लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू से दैट इज़ ट्रू दैट वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम टू से समथिंग टू एनीवन, बट इफ़ यू आर इन अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू हेल्प द फैमिली एंड फ्रेंड्स वी शुड टेल देम इंस्टेंटली, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। जी हाँ, कहीं ना कहीं देरी कुछ चीज़ें ख़राब कर देती हैं और कई बार देरी में कई चीज़ें सब चीज़ें आसान भी कर देती हैं। ये मैसेज आया है कि आज के टॉपिक के अनुसार कोई भी बात सोच समझ कर कहनी चाहिए, सुनने वाले को बात बुरी ना लगे, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपनी बुद्धिमानी यही है कि मेरा विचार भी यही है कि सोच समझ कर बात कहनी चाहिए। नियमित का मैसेज आया हर्षवर्धन का, मध्य प्रदेश से ये मैसेज आया। चलिए भाई, सोच समझ कर कितने लोग बात कहते हैं, नहीं करते हैं, तो अब तक अगर आपने सोच समझ कर किसी बात को नहीं कहा है तो मेरे ख्याल से आज के इस प्रोग्राम के बाद तो आप सोचेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, और जहां समझने की बात होगी वहां समझेंगे, जहां नहीं समझने की बात होगी वहां नहीं समझेंगे और बातों को कह देंगे। बस इसी में, प्यारी प्यारी बातों में, प्यारे प्यारे समय में हम भी अपनी बातें कही जा रहे हैं आपसे, आप हमें बताए जा रहे हैं शायद कब कौन सी बात हमारे दिल को लग जाए, और शायद यही वो सही समय है कि हम आपकी बात को समझें, आप हमारी बात को समझें।

ये मैसेज हम तक पहुंचाए, मेरे विचार से हर बात कहने का एक सही समय होता है। अगर सही समय और सही तरीके से बात कही जाए तो उसका असर दिल पर अच्छा पड़ता है और रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें देर किए बिना कह देना चाहिए, जैसे अपने मन की सच्ची भावनाएं या किसी की मदद से जुड़ी बात। इसीलिए समय, परिस्थिति और शब्द तीनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अमरिंदर सिंह का इंदौर से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। बोलने का सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है, महाभारत के विदुर की तरह। शिव शंकर शर्मा का मैसेज हमें आया है कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट न्यू दिल्ली से। माना कि समय का इंतजार करना चाहिए अपनी सही बात कहने का, लेकिन इंतजार ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। सिचुएशन देखकर बात कर लेनी चाहिए, सभी सही मन से, सच्चे दिल से। कंचन का मैसेज है सोनिया विहार दिल्ली से, और ये है कि डियर, हर बात और काम का समय निश्चित होता है, सो समय एंड दूसरों के मूड देखकर ही बात करनी चाहिए, और दूसरों की बात भी जरूर सुनो, कहो सोच समझ कर, और कहो कह भी दो, और साथ में दूसरों की सुन भी लेनी चाहिए। मिसेज धर्मबाठिया का रोहतक से मैसेज आया है, दिल में बात रखने से अच्छा है कि बोल दो, नहीं तो मन भारी हो जाता है। अच्छी प्यारी बातों के लिए समय का इंतजार मत करो, तुरंत बोल दो और फिर बेफिक्र हो के चैन से रात की नींद ले लेनी चाहिए। प्रवीण चौहान का मध्य प्रदेश से ये मैसेज आया है, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए, कहना चाहिए या नहीं तो फिर कहिए। हमें तो सोच समझ कर कहने की जरूरत नहीं है, हमें जो भी दिल करे बस लिख कर भेज दीजिए।

जी हाँ, हम आपके साथ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी बातों और जी हाँ हमारे बातों और किस्से जो चल रहे हैं ना यहाँ पे, वो बहुत ही यादगार और बहुत ही ज़्यादा बेहद जिसे कह सकते हैं कि ख़ास होने वाले हैं। तो फिर इन बातों को छोड़कर कहीं और क्यों जाना है, सिर्फ हमारे साथ बने रहना है लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए और 102.6 के ज़रिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं बिना सोच कर, तो उसके मन में कुछ ना कुछ तो होता है, फिर एक दूसरे के बारे में कुछ और भी बातें हम सोच लेते हैं। तो टाइम लेकर बात बोलनी चाहिए। दिशा का गाज़ियाबाद से मैसेज आया है, मोहम्मद इम्तियाज़ का मैसेज है, सलमा बेगम का जवाहर कैम से ये मैसेज है, बोलने का तो सही वक्त देखना चाहिए मगर सुनने वाले को भी उसकी भावनाओं को समझे, मगर ऐसा भी कुछ ना बोले कि बात का मतलब ही ना निकले और सॉन्ग उनको अच्छे लग रहे हैं। और ये साथ ही मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं लगातार, तो आपके सभी मैसेजेस हमने यहां पर ले लिए हैं लगभग। और मुझे ये लगता है कि कई बार अपने आप को, कई बार नहीं अक्सर अपने आप को एक्सप्रेस कर देना, अपनी बातों को कह देना ज़रूर चाहिए। हमें लगता है कि शायद सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा। मुझे ये लगता है कि अगर आपके दिमाग में ये बात है कि मुझे सामने वाले को कोई बात कहनी है, उन्हें बतानी है, शायद इससे मेरा बोझ हल्का होता है या मेरा दिमाग हल्का होता है या मेरी सोच सही होती है, तो आपको कह देनी चाहिए। कई बार बिना सोचे समझे भी थोड़ी समय लगता है, थोड़ी देर लगती है, अगर सामने वाले का जो स्थिति नहीं है बात को समझने, लेकिन कुछ समय बाद वो उस बात को ज़रूर समझते हैं और उस पर कहीं ना कहीं एक निर्णय भी लेते हैं, उस पर कहीं ना कहीं आपकी मदद भी कर देते हैं। तो एक्सप्रेस योर सेल्फ एवरी टाइम, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपने भी जो प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे हैं कि हाँ सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, सामने वाले को देख लेना चाहिए, लेकिन कुछ बातों के लिए मैं कहूँगी जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत तकलीफ में है, कोई आपको नहीं समझ रहा है या पता नहीं सामने वाला क्या समझेगा, वो क्या सोचेगा, मत सोचिए। आपको जो कहना है सिर्फ वो आप कह दीजिए। इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं अभी यहां से, जी हाँ, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स से विराम। मुक्ति मिलेगी आपको, ठीक, 8 से 9 मुक्ति, वैसे मुक्ति नहीं मिलने वाली आपकी, अर्जुदस मुक्ति सहनी मिलेगी आपसे 8 से 9 के प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में। तो म्यूजिक मस्ती के लिए रहिए एकदम तैयार। फिलहाल ये खूबसूरत ट्रैक आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी

राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Welcome back, everyone. This is FM Rainbow 102.6 MHz is the frequency. You are listening to Friday Fiesta with me, Lipika. American Music Awards will be held on Monday, 25th of May. This will be the 52nd edition of this award function. And guess who's going to make a special appearance? K-pop supergroup BTS. Yes, BTS will make a special appearance at the 52nd American Music Awards to be held on Monday, 25th of May. And the group also has three nominations. Artist of the Year, Song of Summer for their song Swim, released very recently. And they also have a nomination for Best K-pop Artist. They were favorite K-pop artist in 2022. We wish BTS all the best, and listeners, I'll bring you the results next Tuesday. Here's one of the older recordings with Coldplay, My Universe.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: Time to bring you the wrap-up track for the session of Friday Fiesta, everyone. Thank you so much for joining me. Have a peaceful Friday evening and a beautiful weekend ahead. I'm Lipi Kadas. I'll be back at 10:05 p.m. with one more session of Western music. Take good care of yourself.

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, और म्यूजिक मस्ती में मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। तो म्यूजिक की मस्ती रहने वाली है यहां पर 9 बजे तक, और प्रोग्राम का आगाज भी जब हमने कर दिया है खूबसूरत से गीत के साथ, तो फिर ये मस्ती कहीं रुकने वाली है ना जी? ना, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। हम और आप मस्त तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से थिरकेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और ऐश करेंगे। जी हाँ भाई, ऐश करनी है इस गर्मी में, तो फिर आपको जुड़े होना रहना होगा रेनबो के साथ में, 102.6 के साथ में। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि एक से बढ़कर एक ट्रैक आएंगे सीधा आप तक।

0: डांस बसंती।
1: हाँ बिल्कुल, डांस करना है। अब गर्मियों में जो पसीना बहता है ना, उसका अपना ही मज़ा है भाई। कितना भी ज़्यादा आप कह सकते हैं ना ऑयली अगर खा लेते हैं, और अगर पूरे दिन में एक घंटा ना ऐसे 40 मिनट भी अगर आप उसमें अपना पसीना बहा देते हैं ना अच्छे से पूरी बॉडी का, तो बस आप समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा स्वस्थ कोई नहीं है। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ ज़रूर रहेंगे। आपको देखकर कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो ज़रूर आएगी, तो फिर देर किस बात की। अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी आप जागरूक कर सकते हैं। बस यही तो चाहते हैं हमारा।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.care.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या

0: फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूं आपके साथ, आपके आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, और म्यूजिक की मस्ती जारी रहेगी यहां पर खास आपके लिए।

यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है इस सफ़र में, बहुत कुछ खो जाता है इस सफ़र में, लेकिन जो कुछ मिल जाता है उसे याद रखिए, और जो फिर खो जाता है वो सुनहरी यादें बनकर हमारे साथ में रहता है। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला जारी है आपके लिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी।

ये आप भी हमें बहुत बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मन करता है कि आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे, और ये साथ हमेशा बना भी रहेगा क्योंकि आकाशवाणी रेनबो 102.0 हमेशा आपके साथ है। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती बस यहीं तक नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है आपके लिए। फिलहाल मैं आगे आने वाले प्रोग्रामों के बारे में आपको बता देती हूँ। 9 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही विकास कौशिक के साथ, और फिर आप सुनेंगे 10 बजे वीकेंडर लिपिका के साथ, और उसके बाद 11 बजे रहेंगे रंगे महफिल में विकास आपके साथ में। तो मुक्ति कहेगी आपसे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए, आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक खास ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए।

करेक्ट, मैं यही हूँ आकाशवाणी रेनबो पर, जिसे आप सुनते हैं दिल्ली एनसीआर में हमारे एकदम फिक्स पते पर यानी 102.6 पर, और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में हम आपको मिलते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर। तो जहां भी जैसे भी आप हमें सुन रहे हैं, चाहे आप हमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कहीं भी किसी भी कोने में आप हमें सुन रहे हो इंटरनेट के माध्यम से यानी हमारी न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से, तो भाई जैसे भी जिस भी माध्यम से यहाँ पर बैठकर आप हमें सुन रहे हैं या लेट कर आप हमें सुन रहे हैं, तो आपसे बस यही कहना है कि आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, जो है आपकी याद आती रही। और जब भी आपकी याद आती रही तो हमने आपको बहुत मिस किया ऑब्वियसली जब आपकी याद आएगी तो हम आपको मिस करेंगे, जब आपको मिस करेंगे तो बहाना ढूंढेंगे आपसे मिलने आने का। और देखिए ऊपर वाले ने मेहरबानी की और आज आपको मुझे हम दोनों को कोई मिल गया। अरे जादू भी मिल गया और मुझे आप और आपको मैं मिल गया।

और मैंने आपको अपना नाम तो बताया ही नहीं, मेरा नाम विकास है और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी की रेनबो पर। प्रोग्राम लेकर आया हूँ आपकी याद आती रही। स्टे ट्यून्ड टिल 10 मेरे साथ यहीं पर।

अरे कोई कौन है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ. वो मेरे मैं ही हूँ. मेरा नाम विकास है. आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो पर. प्रोग्राम लेकर आया हूँ मैं, आपकी याद आती रही. और ये वही जगह है जहाँ हम दोनों आपको मिल रहे हैं, जिसे आप कहते हैं आकाशवाणी का रेनबो. मैंने बताया था ना अभी. हाँ, और मैं बार बार बताता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा, ताकि आपको एकदम रजिस्टर हो जाए. क्योंकि ये वही जगह है जहाँ हर रोज क्षमा जलती है और कोई ना कोई एक खुश नसीब शख्सियत यहाँ आकर आपसे मिलती है. वैसे हम हफ्ता भर क्या, कई बार तो महीनों इंतज़ार करते हैं कि कब आएगा वो लम्हा कि हम आपके साथ बैठेंगे, कुछ अपनी कहेंगे और कुछ आपकी बिना कही आपकी सुन लेंगे. और फिर आपके दिल से निकली बातों को हो सकता है कि हम हज़ारों लाखों दिनों तक पहुंचा भी दें. है ना? तो ये वही जगह है जनाब, जहां बातों ही बातों में कई दर्द कह दिए जाते हैं, कई खामोशों के एहसासों को भी जुबा दे दी जाती है. और इसलिए हम आते हैं यहाँ आपसे मिलने, आपके उन्हीं एहसासों को जुबा देने जिन्हें आप उनसे कभी कह ही नहीं पाए, जिसकी याद आपको आज भी आती है. हाय, स्माइल आ गई चेहरे पर, उनका नाम आती है ना. अरे नाम तो मैंने लिया ही नहीं, फिर भी आ गई. यही तो है मोहब्बत. कुछ कहना है ना उसके लिए तो कहिएगा ज़रूर. ठीक है, पता आपको पता है कैसे कहते हैं. और साथ में ही हम ये भी आपको बता दें कि हम आपका हाल हो सकता है कि सबको बता भी दें, और क्या पता आपका हाल उन्हें भी पता चल जाए जिन्हें आप कहना चाहते हैं कि आपकी याद आती रही. ओए होए, कोई कह रहा है कि उसे आज भी याद आती है वो लड़की जो सबसे अलग थी, है और रहेगी.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें। वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति

0: और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

भाई मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि इस भयंकर वाली गर्मी में भी ना आपकी जो मोहब्बत है जो हमारी इस वक्त हमारे मैसेज के स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो समझिए कि एकदम बरखा के छींटों की तरह है। आनंद आ रहा है, एकदम आनंद की बयार बह रही है स्क्रीन की तरह पर आपकी मोहब्बत को देख के। सचमुच आप इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं हमारे प्रोग्राम को, इतना मिस भी करते हैं हमें, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब दिल की गहराइयों से कह रहे हैं इस बात को कि हमें ईश्वर की कृपा है हम पर कि हम आप हमसे इतना प्यार करते हैं। पंकज जी कह रहे हैं अमरावती महाराज से कि आपकी याद आती रही प्रोग्राम, बहुत मज़ा आ रहा है सुनकर और गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, नाइस प्लेलिस्ट, ऐसा हमारी एक और श्रोता कह रही हैं। साथ में हमें कहा है किसने, हम आपको बता देते हैं, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फरहान, फराज फरहीन, फरहान फारी, अताहिरा, सब कह रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है उनको प्रोग्राम सुनकर, हमें भी आप साथ बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है। और सच मुझे बताएं कि आपकी मोहब्बत, आपका यह प्यार, आपकी मुस्कुराहट है कि इसके बारे में यही कह सकते हैं कि तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है, तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है। और लोग पूछते हैं कि आपकी दवा का नाम क्या है, तो भाई हम तो यही कहेंगे कि हम में हमारे लिए तो दवा और दुआ सब यही है कि आपके साथ सोबत मिले, आपकी मोहब्बत मिले, आपका प्यार मिले और आपका जो इंटरटेनमेंट है हम करते रहें, आपको आनंदित करते रहें, यही हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये बात मैं भी नहीं, अकेला नहीं कह रहा हूँ, उदित नारायण जी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। सुनिए,

लेकिन जरा सोचिए कि किसी के साथ मिलना, किसी से बातें करना, किसी को निहारना, किसी को देखते रहना, किसी के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, और उसके बाद उस लम्हे में अगर अचानक

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: साथियों, आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहां तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं।

भाई, रात का नशा हो या दिन की खुमारी हो, हर वक्त हर पहर हमें आपकी याद आती रही है, आती रहेगी। और ये तलब ऐसी है कि क्या करें, ये कभी मिटती नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तू ना करियो फिर भी इंतज़ार करेंगे हम, तू ना करियो फिर भी इंतज़ार करेंगे हम, तू ना करियो फिर भी तुझसे बहुत प्यार करेंगे हम। और हमारी मोहब्बत का ये भरोसा थोड़ा सा थो आपको भी निभाना पड़ेगा। अगले घंटे यानी अगले घंटे के बाद रात 11 से 12 के बीच में हम आपसे फिर मिलेंगे और सजाएंगे आप और हम मिलकर अपनी रंगे महफिल। तो मुलाकात होगी यहीं आकाशवाणी के रेनबो पर। तब तक के लिए विकास आपसे ले रहा है विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि आपको मेरी और मुझे आपकी याद आती रही है, आती रहेगी। और इस प्रोग्राम में अब मुलाकात नहीं होगी, लेकिन रात को 11 बजे मैंने कहा ना, रंगे महफिल मिलकर सजाएंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्नि वन कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे त्वरित तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनस और

डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 4 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिलों की बात करने, महफिलों की बात करने के लिए ही तो हमने सजाई है ये रंग की महफिल जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त। कहाँ, अगर याद नहीं है आपको तो मैं याद दिला देता हूँ, अजी आप सुन रहे हैं इसे यहाँ।
1: FM Rainbow 102.6।
0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और इसे आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में। और साथ ही हम आपको बता दें कि हमारा ये पता दिल्ली एनसीआर में है फिक्स, यानी 102.6, लेकिन हम मिलते हैं आपको देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से। तो आप हमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में किसी भी कोने में किसी भी वक्त सुन सकते हैं। तो जहां भी जैसे भी आप सुन रहे हैं, आपका रंग महफिल में इस्तकबाल। मेरा नाम विकास है और मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपसे मोहब्बत है हमारी गहरी, खास, बहुत ही ज़बरदस्त वाली। और इसी मोहब्बत की वजह से, आपकी इस जस्तजू की वजह से आए हैं हम आपसे मिलने, रंग महफिल सजाने आपके साथ।

उमराव जान और आशा जी की आवाज, दो ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारी यादों में बसे रहेंगे और इनका मुकाबला कहीं नहीं, कभी भी नहीं, है ना। एक आपको बात बताएं कि बदला बदला सा मिजाज है, क्या बात हो गई, शिकायत हमसे है कि किसी और से मुलाकात हो गई। वैसे कहीं तो मुलाकातों में भी अक्सर जिंदगी के जाने भी रंग होते हैं, कभी कुछ मीठी बातें भी होती हैं तो कभी खुल जाता है शिकायतों का पिटारा भी। हमारे बहुत सारे दोस्त हमें शिकायतें भी दे रहे हैं मैसेजेस पर कि आप हमारे मैसेजेस नहीं लेते, लेकिन हम आपको बता दें कि हर प्रोग्राम का एक सलीका होता है, हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में आपके मैसेजेस को थोड़ा आराम दें, लेकिन हाँ आपकी जो बातें हैं वो हम तक पहुँचती रहें तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। और ज़रूर थोड़ी कि आपकी सारी बातें मैं सबको बताऊँ, कुछ बातें मेरे लिए भी तो होती है, है ना। इसीलिए रंगे महफिल में एक रंग आपकी और मेरी दोस्ती का कुछ ऐसा भी है जो सबके लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए एक्सक्लूसिव है, है ना। तो फिलहाल मैं आपको एक बहुत बढ़िया हरिहरन साहब की गजल सुना रहा हूँ, लौट कर आएंगे तो करेंगे कुछ और खास बातें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी की रेनबो पर रंग महफिल, विकास है आज आपके साथ इस महफिल का एक रंग।

साथियों, आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहां तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने रखें।

इस गज़ल में जगजीत साहब ने बात तो बड़े मार्के की कही है कि धूप में निकलो, घटाओं को हटा कर देखो, और ज़िंदगी क्या कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये किताबों को हटा कर देखो, है ना। लेकिन मुश्किल ये है कि आजकल के मौसम में अगर आप धूप में निकलेंगे ना तो हीट स्ट्रोक का खतरा है। बच कर रहिए, संभल कर रहिए और सर को ढक कर चलिए, है ना। और साथ में ज़रूर ज़रूर ज़रूर याद रखें कि आपको अपनी ठंडी पानी की बॉटल जो है वो कैरी करनी है, उसको लेकर चलना है और बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट करते हुए पानी पीते रहना है, है ना। चाहे इस महफिल से लेकर उस महफिल तक कहीं भी जाएं, कोशिश कीजिए कि दोपहर 1 बजे से लेकर और तकरीबन 4 बजे तक बच कर चलें, धूप में ना निकलें, संभल कर रहें, अपना भी ख्याल रखें और ख़ासकर छोटे बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें कि वो गर्मियों की छुट्टियों में धूप में खेलने ना निकलें, ठीक है। और बाकी भी अगर आप किसी की सड़क चलते हुए मदद कर सकते हैं, उन्हें कुछ पानी दे सकते हैं या कुछ भी आप उनको उनका ख्याल रख सकते हैं किसी भी तरीके से, तो सोच कर देखिएगा। अगर अच्छा काम करते हैं तो दिल की बेकरारी बड़ी मिटती है, वरना इस दुनिया में तो बेकरारी ही बेकरारी है।

सचमुच यार ये इश्क बड़ी बीमारी है और बेकरारी ही बेकरारी है। आपके साथ भी जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता होगा ना, जब लगता होगा कि यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, लेकिन बड़ा मीठा एहसास है इश्क। जैसे हमारे कई सारे मित्र हैं, उनको हमसे हो जाता है, जो हमसे हमें देखते नहीं, हमें बस सुनते हैं, लेकिन उनके एहसास हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और सचमुच स्क्रीन एकदम लबालब हो जाती है आपकी मोहब्बत से। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, और धन्यवाद देता हूँ उन्हें, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना प्यार हमसे करते हैं। और बड़ी प्यारी सी बात एक दोस्त ने लिखकर भेजी है, वो तो आपको सुनानी ज़रूर है, कहनी ज़रूर है। बात कुछ यूँ कहते हैं वो कि आवाज़ सुनकर ही आपकी, आवाज़ सुनकर ही आपकी हमारा दिल मुस्कुराया है, माना कि देखा नहीं आपको, न छुआ है न पाया है, पर आपके इंतज़ार में हमें इबादत सा सुकून आया है। सचमुच हम भी ये मानते हैं कि आपको भले हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, लेकिन हम महसूस करते हैं कि आपके कान हमारी बातों पर रहते हैं, और हमारे एक एक शब्द से, हमारे एक एक अल्फाज से, हमारे एक एक गीत से, हमारे एक एक अंदाज से आप जुड़े रहते हैं, और हमारा एक ही मकसद है हर हाल में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना, भले ही आप हमें दिखाई दिए हों या ना दिए हों।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

0: मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

क्या बात है ये, मतलब जगजीत साहब का जादू है। बचपन में कब सुनी थी ये गजल, ये ऐसे दिमाग में असर कर गई है ना कि इसके साथ आप बहते चले जाते हैं, है ना, और ऐसा बहते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आपका बहुत वक्त कब चला गया। बड़ी लंबी है ये, तकरीबन 9 मिनट की है, लेकिन इसे सुनते रहिए, खो जाते हैं आप इसके भीतर, इसके जादू में खो जाते हैं। और देखिए, जादू में खोने का असर यह है कि वक्त के साथ बहते बहते बहते अब हम उस मुहाने पर आ गए हैं जब आपके और हमारी मुलाकात का वक्त

यहीं तक था ये इशारा, घड़ी ने हमें कर दिया है। तो आपको बता देते हैं भाई कि कभी जो ठहर के सुनोगे तुम ये शाम कहानी कहेगी मेरी, कभी जो ठहर के सुनोगे तुम तो ये शाम कहानी कहेगी मेरी, तुम्हारे करीब रहूं या ना रहूं हवाओं में खुशबू रहेगी मेरी। और अब इसी बात के साथ, इसी ख्याल के साथ, बड़े भारी मन से ही सही लेकिन आपको गुड बाय कहने का वक्त है ना, और ये भी कहने का वक्त है कि बस इस रंग महफिल में हमारी आपकी मुलाकात आज बस इतनी ही रही, लेकिन अगले हफ्ते उम्मीद है कि आपसे मिलने आएंगे। तो जब आपसे मिलने आएंगे तो खूब बतियाएंगे इस भरोसे के साथ, आई एम टेकिंग योर लीव, और आपकी और मेरी मोहब्बत की जो बातें हैं ज़्यादा किसी को कहिएगा नहीं, क्योंकि अगर बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और हंसते गाते मुस्कुराते सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, शब खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिनमें 1267 यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, कड़ी और समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 12:05 और 40 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं धड़कन फिल्म के इस गीत के साथ जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों 2005 में एक फिल्म आई थी पेज 3, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में थे कोंकणा सेन शर्मा, अतुल कुलकर्णी और संध्या मृदुल। आइए अब सुनवाते हैं आपको उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

दोस्तों, सन 2003 में एक आइकॉनिक बॉलीवुड टीनेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था इश्क विश्क। इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे शाहिद कपूर और अमृता राव। और इस फिल्म के वैसे तो काफ़ी गीत हिट हुए थे, लेकिन एक गीत ऐसा भी था जो काफ़ी हिट हुआ था। तो आइए सुनते हैं वही प्यारा सा गीत जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू और अलीशा चिनॉय ने।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: जीरो आर शो में आइए, अब आपको सुनवाते हैं कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में फिल्म

ये गीत था वेकअप सेट से, और अब आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया का ये गीत।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही का

0: आनी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वंश फिल्म में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम को।

0: 12:42 और 28 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना बिजारिया के साथ।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: लता मंगेशकर को लीजिए सुनिए वारिस फिल्म में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। मोर्मुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण ने पणजी गोवा में उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 का आयोजन किया। इसमें समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक बजकर 5 मिनट और 46 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु, तेरी
1: हाय।
0: तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल

0: इस यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

साथियों, आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहां तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने रखें।

याद से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने। हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

उन्हें राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ. सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के वे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और

0: और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मधुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जारी है कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की पहली भारत यात्रा शुरू करेंगे। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वे कोलकाता में मदर टेरेसा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो के विक्टोरिया मेमोरियल जाने की भी संभावना है। रविवार को श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। सोमवार को वे आगरा और जयपुर की यात्रा करेंगे और फिर मंगलवार सुबह नई दिल्ली लौटेंगे, जहां वे भारत द्वारा आयोजित क्वाड

देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसी बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: इस बीच दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंचेंगे। श्री रूबियो का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। वे कोलकाता में मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो का विक्टोरिया मेमोरियल जाने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो रविवार को विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर बाजार में पंप एंड डंप रैकेट चलाने के आरोप में कई अपंजीकृत फाइन इन्फ्लुएंसर और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश में जारी बाजार नियामक ने कहा है कि इन संचालकों ने स्मॉल और मिड कैप शेयरों को खरीदा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुझाव साझा करके कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और बाद में मुनाफे पर शेयर बेच दिए। इससे खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सेबी ने कहा कि आरोपियों ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में चल रहे इबोला के मौजूदा संक्रमण से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को अत्यंत उच्च कर दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदहनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 82 मामले और 7 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन संक्रमण के इससे कहीं अधिक व्यापक होने की संभावना है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।